107.7 MHz पर ये आकाशवाणी के FM प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। आज दिन शनिवार, आषाढ़ मास की छठी तिथि, शक संवत 1948, तदानुसार 27 जून 2026 है। प्रातः के 5:55 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

राम क्षण क्षण में श्याम। हो मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान, करना सबके कष्टों का निदान। तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन। हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प में तुम पधारो प्रभु।

नमस्कार श्रोताओं, एक नई सुबह, नई किरण और नई आशाओं के साथ आप सभी को सुमंगलम सुप्रभात। घड़ी की सुइयां बता रही हैं 6:01 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो। मैं हूं आपकी मित्र तरुश्री, आपके समक्ष उपस्थित हूं लेकर भक्ति और आध्यात्मिकता से सुगंधित आपका पसंदीदा कार्यक्रम पुष्पांजलि। और इस यात्रा का श्री गणेश करते हैं प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश के चरणों में वंदना के साथ।

प्रार्थना आत्मा की शक्ति है जो हर दर्द को सहने और हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है। ये वो पुल है जो हमें निराशा से आशा की ओर ले जाता है। हर सच्ची प्रार्थना हमारे जीवन में चमत्कार की शुरुआत कर सकती है। आइए इस भजन के माध्यम से हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें।

श्री राम का व्यक्तित्व सत्य की अडग शक्ति और त्याग का महासागर है। उनका दिव्य रूप केवल नेत्रों को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी प्रकाशित करता है। उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में भक्ति का भाव अर्पित करते हैं। आइए सुनते हैं ये मधुर भजन।

मन में आत्मबल का संचार होता है। आज इस पावन समय में हम उन्हीं पवन पुत्र के चरणों में अपनी श्रद्धा और प्रार्थना अर्पित करते हैं।

संकट मोचन महाबली हनुमान, जो स्वयं भक्ति और सेवा की पराकाष्ठा है, उनकी दृष्टि मात्र से भय का नाश होता है और उनके स्मरण मात्र से

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो और इस पर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं पुष्पांजलि मेरे यानी तरुश्री के साथ। न्याय के अधिपति और कर्मों के फलदाता शनि देव को साष्टांग नमन। वे न केवल दुखों के निवारक हैं बल्कि अनुशासित जीवन और धैर्य के प्रतीक भी हैं।

शनिदेव की शरण में जाने का अर्थ है अपने कर्मों के प्रति सचेत होना और जीवन के कठिन समय में भी अडिग रहना। आइए उन्हीं शांत और न्यायप्रिय देव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनका ध्यान और वंदन करें।

तो 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ ट्यून इन है आप दोस्तों। वक्त है सुबह के 7:58, तारीख 27 जून 2026, दिन शनिवार का, यानी वीकेंड की शुरुआत किसी खुशी से कम नहीं। और जिनको आज नहीं जाना है ऑफिस, उनकी भी खुशी सुबह से ही चेहरे पर नजर आ रही है। और रेनबो कानपुर दोस्तों सिटीज म्यूजिकल हार्टबीट जिंदगी की हर नई सुबह के साथ लेकर आती है खबरें, देश विदेश की, खेल जगत की ताजा अपडेट्स और आपके जानने लायक हर एक जरूरी खबर, वो भी मन को हैप्पी हैप्पी करने वाले गानों के साथ।

गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप 102.2 FM रेनबो कानपुर पर। और अब दोस्तों बता देते हैं आपको आज के सभी मुख्य कार्यक्रम।

तो भाई सुबह 8 बजे से समाचार प्रसारित किए जाएंगे, यानी इस प्रोग्राम के ठीक बाद और 8:30 से सजेगी सुरों की पुरानी महफिल। रसबहार प्रोग्राम 9 बजे से 9:00।

45 मिनट तक सुन सकेंगे आप, और विविधा में प्रोग्राम महफिल गजल सुनिएगा 9:45 से 10 बजे तक। दिन 11 बजे से हमनवा कार्यक्रम में आपसे मुखातिब होंगे आपके दो साथी आरजे वृंदा और वंदना। दिन में 3 बजे से सुनिएगा म्यूजिक आर और आपकी पसंद प्रोग्राम शाम 4 से 5 बजे तक। तो जी ये थी रूपरेखा एफएम रेनबो कानपुर से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की, और अब बढ़ते हैं आगे इस गीत के साथ। 102.2 एफएम रेनबो कानपुर पर आप सुन रहे हैं इस समय प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर।

बाद डियर लिसनर्स बहुत ही प्यारा सा ये सॉन्ग एंजॉय किया आपने फ्रॉम द मूवी फुकरे। दोस्तों, हमारी लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन्स लगे ही रहते हैं जिन्हें हम रोक नहीं सकते, बदल भी नहीं सकते, लेकिन हर मुश्किल से डटकर सामना करने के लिए हमारे पास जो हिम्मत होती है ना, वो आती है केवल और केवल हमारे विचारों से, हमारे थॉट से। जी हाँ, हमारे विचार ही हैं जो हमें दुनिया में अच्छी या बुरी पहचान दिलाते हैं, हमारे अंदर भरते हैं ऊर्जा। तो आइए सुनते हैं क्या है आज का विचार। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। क्या बात कही है दोस्तों, और इस बात को आज तक न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन का सिद्धांत बनाया होगा। कितनी सच्चाई है ना इस बात में, क्योंकि जब हम संघर्ष करके सफल होते हैं वही वक्त होता है असली सुकून का, असली राहत का। तो आज के इस मोटिवेशन को कीजिए मन में धारण और कस दीजिए संघर्ष की कसौटी पर खुद को निखर कर चमकने के लिए। 102.2 FM रेनबो कानपुर पर प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त गुड मॉर्निंग कानपुर, और आपके साथ मैं हूँ वंदना।

और दोस्तों बात करें अगर सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया की दुनिया में आज सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है अक्षय कुमार की नई फिल्म वेलकम टू द जंगल। इस फिल्म की वही शाहरुख खान का एक मज़ेदार जवाब फिर से वायरल हो गया है और ईशा देओल का मिसिंग लव वाला बयान भी लोगों के बीच चर्चा में है और क्रिकेटर आकाशदीप की शादी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। अक्षय कुमार की फिल्म जो वेलकम टू द जंगल सबसे ज्यादा चर्चा में है और एक्सपर्ट लोग फिल्म की कॉमेडी स्टार कास्ट और पहले दिन की कलेक्शन को लेकर लगातार पोस्ट कर रहे हैं।

कानपुर प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त 102.2 FM रेनबो कानपुर पर। दोस्तों आज है 27 जून और इस तारीख के साथ क्या क्या इंसिडेंट्स जुड़े हुए हैं जानने के लिए आइए अब चलते हैं लेकर आपको अतीत के गलियारे में। इस तारीख का भी अच्छा खासा महत्व है हमारे लिए। दरअसल 27 जून साल 1954 में दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस में शुरू हुआ था और इसके बाद 27 जून 1967 में दुनिया की सबसे पहली एटीएम मशीन लंदन में स्थापित की गई थी। बैंक का नाम था बार्कलीज बैंक। एमएसएमई को दोस्तों आज कौन नहीं जानता। जी हाँ, सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यमों के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए एमएसएमई डे भी आज ही यानी 27 जून को मनाया जाता है। हाँ, हमारे इतिहास, साहित्य, खेल और मनोरंजन सभी क्षेत्रों में 27 जून ने हमें बेशकीमती उपहार दिए हैं और ये उपहार कौन कौन से हैं बताऊंगी, लेकिन पहले आप एंजॉय करिए ये प्यारा सा गाना।

और पत्रकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ, जिनकी महान कृतियों में से एक है आनंद मठ, और आप ही हैं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचनाकार। और अब बात करें 27 जून साल 1939 की, जब भारतीय फिल्म जगत के बेहद लोकप्रिय संगीतकार आरडी बर्मन ने जन्म लिया। साल 1964 में जन्मी भारत की दिग्गज एथलीट पीटी उषा, प्यार से इन्हें हम पयोली और उड़न परी भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1980 के दशक में पयोली ट्रैक एंड फील्ड की क्वीन थी। अपने समय में एशियन गेम्स में कई गोल्ड मेडल्स जीतकर भारत का मान बढ़ाने वाली पीटी उषा वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत की प्रसिद्ध धावक परमजीत सिंह की बात, जिनका बर्थ हुआ 27 जून साल 1971 को। इन्होंने 1998 में 400 मीटर दौड़ में महान धावक मिल्खा सिंह का 38 साल पुराना रिकॉर्ड ब्रेक किया था। साथियों, अतीत के गलियारे में क्या कुछ बातें छुपी थी 27 जून की, आपसे शेयर किया हमने। और चलिए अब फिलहाल वर्तमान में तो फिलहाल हम जुड़े हुए हैं गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम से, तो चलिए थोड़ा सा म्यूजिकल हो जाया जाए।

102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं आप और चल रहा है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर। दोस्तों हम आपसे बता रहे थे कि हमारे इतिहास साहित्य खेल और मनोरंजन सभी क्षेत्रों में आज की तारीख यानी 27 जून ने हमें बेशकीमती उपहार दिए हैं और उसके बाद हमने आपको सुनवाया था ये गाना। तो अब हम आपको बताते हैं कि वो उपहार कौन कौन से हैं। साथियों साल 1838 में महान उपन्यासकार कवि

आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर 102.2 एफएम रेनबो कानपुर के संग। और यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम इन प्यारे प्यारे गीतों के साथ लेकर आते हैं खबरें आपके लिए, देश दुनिया की, शहर की और इधर उधर की। तो अब आपको बता दें देश दुनिया की कुछ बातें। तो जी, 35 देशों संग AI सेमीकंडक्टर के बुनियादी ढांचे पर काम करने जा रहा है अपना भारत, और ये फैसला हुआ अमेरिका में पैक्स सिलिका सम्मेलन में, जहां भारत ने AI अवसर पर संयुक्त घोषणा पत्र पर किए हैं हस्ताक्षर। जी हां, भारत समेत 35 देशों ने AI प्रौद्योगिकियों को गति देने के लिए विश्वसनीय और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास की अमेरिकी पहल का समर्थन करते हुए साझा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। और वॉशिंगटन में हुए दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में 35 देशों ने इस संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके विकासोन्मुखी और नवाचार समर्थक नियामकीय दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। साथियों, ये एक बुनियादी संरचना को विकसित करने की प्रतिबद्धता है जो आने वाली सदी की AI क्रांति को शक्ति प्रदान करने वाली है। और इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन, विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नागराज नायडू और भारतीय उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने किया।

0: पहला खुमार।
1: हाय, दिस इज उदित नारायण। यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।
2: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
3: हंड्रेड टू डॉट टू रेनबो कानपुर के संग इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर। और साथियों, अब आपको बता दें, अपने कानपुर यूनिवर्सिटी यानी छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से जुड़ी कुछ बातें। साथियों, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में छत्रपति शाहू जी महाराज शोध पीठ की स्थापना होने जा रही है। कुलपति ने पीठ के संचालन के लिए सदस्य स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है और ये टास्क फोर्स शोधपीठ की स्थापना, शोध गतिविधियों, शोध परियोजनाओं, प्रकाशनों, अभिलेख

और साथ ही साथ आपको बता दें कि छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लैंग्वेज ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया के अंतिम चरण की घोषणा कर दी है। भाषा संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषयों में MA पाठ्यक्रम है और स्नातक स्तर पर BA ऑनर्स हिंदी और अंग्रेजी तथा BA कॉम्बिनेशन हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और अन्य मानविकीय विषय में प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा फ्रेंच और जर्मन भाषा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही और आपको और एक न्यूज दे दें, रोजगारोन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट MBM ने नई पहल की है। उत्तर प्रदेश सरकार के एडवांस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत BCOM पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रेनबो कानपुर के संगे इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर।

आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम अपनी दोस्त वंदना के साथ। और दोस्तों, अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है, तो चलते चलते आपको जल्दी से बता देते हैं मौसम की खबर। तो साथियों, मॉनसून आने के संकेत मिलने लगे हैं। मॉनसून के संदेशवाहक बादल और नमी लेकर आने लगे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों में मॉनसून प्रदेश में प्रवेश कर जाएगा। इसके कानपुर परिक्षेत्र में समेत पूरे प्रदेश में फैलने में 1 सप्ताह का समय लग सकता है। और हवाओं का रुख अगर पॉजिटिव रहा तो मॉनसून की गति बढ़ भी सकती है। मॉनसून के आने तक लोगों को उमस भरी गर्मी और लू के थपेड़े भी झेलने पड़ सकते हैं। भाई, क्या किया जा सकता है, ये तो मौसम है, ये तो उसी की मर्जी कि उसे कैसे रहना है। फिलहाल आज का तापमान जो अनुमानित है वो है 41.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 28.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम। और दोस्तों, अब समय हो रहा है कि हम आपको ले चलें अपने अगले गीत और आखिरी गीत की तरफ। तो गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम को करती हूँ अब मैं वाइंड अप और आप सभी को सुनवाती हूँ ये प्रोग्राम का लास्ट गीत। और आप 8 बजे से सुनिएगा समाचार और 8:30 बजे से शामिल हो जाइएगा शुरू की पुरानी महफिल में। फिलहाल इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।

0: इफ्को और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
2: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना की प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमरीकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
3: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन

0: उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
2: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
3: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
5: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथी होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा, मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है।
7: देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है। भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड। मई

102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ ट्यून इन है आप दोस्तों। इस वक्त सुबह के 8:30 हो चुके हैं और ये समय होते ही हम लेकर आप पहुंचते हैं आपके लिए कार्यक्रम सुरों की पुरानी महफिल। आपके साथ इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और सुबह से आपके साथ हूं और रहूंगी 12 बजे तक हम नवा कार्यक्रम में। दोस्तों तो ट्यून इन रहिएगा हमारे साथ हमेशा और इस वक्त शुरू की पुरानी महफिल में लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत से पुराने गाने। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ये गाना।

साथियों, बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ शुरू हो चुका है आज का प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल। और ये गीत जो आप सुन रहे थे, दहलीज फिल्म का ये गीत हसन कमाल ने से लिखा, रवि ने संगीतबद्ध किया था और आशा भोसले के साथ ही आवाज़ थी महेंद्र कपूर की। आइए अब आपको सुनवाते हैं आनंद फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, गुलजार का लिखा ये गाना है और सलिल चौधरी का संगीत।

न जाने चांद कैसा होगा, ये गीत आपने सुना रॉकेट गर्ल फिल्म से। प्रेम धवन का ये गीत था, चित्रगुप्त का संगीत और आवाजें थी मुकेश और कमल बरूद की। और अब आपको सुनवा रहे हैं साथी फिल्म का गीत, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, नौशाद का संगीत है और सुमन कल्याणपुर के साथ आवाज है मुकेश की एक बार फिर से।

सुरों की पुरानी महफिल, ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर पर। दोस्तों, आप आए बाहर आई, आइए आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का गीत, आनंद बख्शी का लिखा हुआ और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज पर मोहम्मद रफी ने इसको गाया है।

साथियों, आप इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों की पुरानी महफिल, और अब इस कार्यक्रम का लास्ट सॉन्ग आप तक पहुंच रहा है। हसरत जयपुरी का लिखा हुआ शंकर जयकिशन का संगीत है और मन्ना डे के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ है। और फिलहाल जो गीत आप सुन रहे हैं सावन की घटा, इस फिल्म से हमने इसे लिया है। सच बिहारी के बोल हैं, उपेन अय्यर का संगीत और ये आवाज़ है महेंद्र कपूर की। मेरी प्यास शुरू की पुरानी महफिल प्रोग्राम में आप सुनिए ये प्यारा सा गाना और दीजिए इजाजत मुझे। मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम रसभार में सुबह 9 बजे।

102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ जुड़े हुए हैं आप डियर लिसनर्स। सुबह के 9 बज चुके हैं और प्रोग्राम रस बहार के साथ आ चुकी है आपकी दोस्त वंदना तिवारी। स्वीकारिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और अब शुरू हो रहा है कार्यक्रम रस बहार।

साथ ही नीले आकाश के नीचे हरी हरी धरती की गोद में लाखों करोड़ों तरह के जीव जंतु रहते हैं, उन्हीं के बीच हम इंसान भी रहते हैं। दोस्तों, इन जीव जंतुओं में से कई हमारे साथ फ्रेंडली हो जाते हैं इजिली, तो कुछ को काफ़ी वक्त लगता है। जिनके साथ हम या हमारे साथ जो जीव जंतु फ्रेंडली होते हैं, उनकी लगभग सभी बातें हम समय के साथ समझ लेते हैं। लेकिन हमारी प्रकृति में बहुत से ऐसे भी जीव हैं जिनकी अनेकों ऐसी अनोखी बातें हैं जो हम नहीं जानते। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ जीव जंतुओं की अनजानी और मज़ेदार बातों पर इस प्रोग्राम रसबहार में।

जी, ये छोटे छोटे जीव जंतु, ये बड़े बड़े जीव जंतु बहुत कभी कभी इतने प्यारे होते हैं कि सच में नैनो से बाण जैसा चला देते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं समुद्री जीव ऑक्टोपस की, जिसके शरीर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि होते हैं तीन तीन दिल, और जिसमें से दो दिल उसके गलफड़ों तक खून पहुंचाते हैं और तीसरा दिल पूरे शरीर में खून पहुंचाने का काम करता है। देखिए ना दोस्तों, हम इंसान एक दिल से ही इतना परेशान है कि संभाले नहीं संभलता, और इन जनाब ऑक्टोपस को देख लीजिए। खैर, और अब सुनिए, एक मासूम सा भोला भाला चेहरा लिए एक जानवर जिसे हम जिराफ कहते हैं, इसके बारे में। जिराफ की जीभ यानी जुबान बहुत लंबी होती है, लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर लंबी। अपनी जीभ से पेड़ों की ऊंची शाखाओं से पत्ते ये जनाब आसानी से तोड़कर खा सकते हैं। वैसे जुबान तो हम इंसानों की भी कम कमाल की नहीं होती, स्वाद चखने के काम तो आती ही है, और कभी कभी मिश्री घोलने तो कभी आग लगाने का काम भी करती है।

रस बहार प्रोग्राम आप सुन रहे हैं दोस्तों, मेरे यानी वंदना के साथ 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर। दोस्तों हम बातें कर रहे हैं प्रकृति के उन जीते जागते खिलौनों की जो हमारी पारिस्थितिकी का अहम हिस्सा हैं, यानी जीव जंतु। और दोस्तों इनकी कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम यूं ही नहीं जान सकते बिना किसी अध्ययन के। तो बता दूं आपको दोस्तों, डॉल्फिन समुद्र का सबसे मिलनसार जीव होती है जो समझदार और काफी चंचल भी होती है। ये तो हम देखते ही रहते हैं कई बार रील्स में, वीडियोस में। और वैज्ञानिकों की माने तो डॉल्फिन एक सीटी जैसी आवाज निकाल कर अपने साथियों को उनके नामों से पुकारते हैं और यही सीटी की अलग अलग आवाजें उन साथियों की पहचान होती हैं। यही बात करेंगे बुद्धिमान विशाल जानवर हाथी की, जो कि इतने भावुक होते हैं कि अपने परिवार के सदस्यों को वर्षों तक याद रखते हैं अगर वो उनसे बिछड़ जाएं, और इसके लिए वो दुख भी व्यक्त करते हैं। और हम इंसानों के साथ तो ये है ही फ्रेंडली। तो दोस्तों आपको बता दें, ये प्रोग्राम चल रहा है रसबहार 102.2 FM रेनबो कानपुर सिटीज म्यूजिकल हार्ट बीट पर।

0: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
0: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप, तो नोट कीजिए हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
0: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
2: पहला नशा, पहला खुमार।
3: हाय, दिस इज उदित नारायण, यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.

जुड़े हुए हैं आप इस वक्त 102.2 रेनबो कानपुर के संग, जहां आज कुछ ऐसी बातें हम कर रहे हैं प्रकृति के जीव जंतुओं की जो अचरज और मजे से भरी हुई हैं। तो साथियों, अब यहां आ रही हैं ठुमक ठुमक कर चलने वाली प्यारी क्यूट सी पेंगुइन। यहां हम इंसानों के साथ फ्रेंडली तो हो ही जाती है आसानी से, साथ ही पेंगुइन प्रजातियां अपने साथी के प्रति काफी वफादार होती हैं। और साथियों, वफादारी का ये प्रमाण ही है कि जीवन भर एक ही साथी के साथ रहती है पेंगुइन। और तो और, अपने साथी को प्रभावित करने के लिए पेंगुइन उन्हें सुंदर पत्थर उपहार में भी देती हैं। भाई वाह!

दस बहार प्रोग्राम में आज कुछ रोचक बातें हो रही हैं हमारी प्रकृति में रह रहे हमारे इकोसिस्टम के साथी प्यारे प्यारे जीव जंतुओं की। तो दोस्तों बताइए, क्या आप जानते हैं कुछ मेंढकों की दुनिया में ऐसी भी प्रजातियां हैं जो बर्फ में भी जीवित रह लेती हैं? और मेहनत कश चींटियां अपने पूरे जीवन काल में छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर आराम करती हैं, केवल सोती नहीं। और वहीं स्लॉथ नाम का जीव दुनिया का सबसे आलसी जीव होता है, जो दिन में लगभग 15 से 20 घंटे बस आराम ही करता है। इसे सुनकर ऐसा लगता है कि आलस का कोई ब्रांड एम्बेसडर होता तो शायद स्लॉथ ही होता।

साथियों आप इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम रस बहार 102.2 FM रेनबो कानपुर पर और आज इस प्रोग्राम को लेकर मैं हूं आपके साथ वंदना। साथियों हमारी इस धरती पर लाखों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, कुछ इतने छोटे कि आंखों से बमुश्किल ही दिखाई दें तो कुछ इतने विशालकाय कि उन्हें देखकर हम दंग रह जाएं। तो अब आपको बताती हूँ रंग बिरंगी खूबसूरत नाजुक सी तितली से जुड़ी बात, और वो बात ये कि तितलियों के स्वाद पहचानने वाले रिसेप्टर्स होते हैं उनके पैरों में। और हाँ, इसी से याद आई हनी बी यानी मधुमक्खी की, जो नाच नाच कर अपने साथियों को बताती है फूलों का पता। इमेजिन दिस, कैसे स्टेप्स होते होंगे, एक ट्राई हम भी मारें।

नहीं तो हो सकता है इसी तरह डांस पे चांस वो मधुमक्खी भी मारती हो और बता देती हो अपने साथियों को फूलों का पता। बहरहाल दोस्तों, जीव जंतुओं की रहस्यमयी और खूबसूरत दुनिया में घूमते फिरते हम अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं और ये दुनिया इतनी बड़ी है कि इसकी बातें महज कुछ ही समय में समेटना जरा मुश्किल होता है। और इसकी चलते चलते आपको बता दें कि सी हॉर्स नाम का जो समुद्री जीव है उसमें अपने बच्चे को जन्म देने का काम नर सी हॉर्स करता है, फीमेल या मादा नहीं। और हमारी प्यारी प्यारी गाय को भी अच्छे दोस्त बनाने बहुत पसंद होते हैं और वो उनमें से अपने पसंदीदा साथी के साथ रहना भी चाहती है। फिलहाल मैं इन अद्भुत कहानियों को यही विराम देती हूँ। प्रकृति की किताब में हर जीव एक अनोखा अध्याय है, बस जरूरत है उसे पढ़ने और समझने की। तो फिलहाल आप सुनिए ये प्यारा सा गीत और दीजिए मुझे इस प्रोग्राम रसबहार से इजाजत। नमस्कार।

0: पहला खुमार।
1: हाय, दिस इज उदित नारायण, यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।

102.2 FM रेनबो कानपुर पर इस वक्त ट्यून इन है आप दोस्तों, और ये वक्त है प्रोग्राम महफिले गज़ल का। तो आइए सबसे पहले आप सभी का करती हूँ स्वागत, और अब सुनवाते हैं आपको आज के इस प्रोग्राम की ये पहली और बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल, होश वालों को खबर क्या।

साथियों, ये गज़ल जो आपने सुनी इसे लिखा था कैफ़ी आज़मी ने और आवाज़ थी जगजीत सिंह की। और इससे पहले जो हमने आपको सरफरोश फिल्म से गज़ल सुनवाई थी वो कलाम था निदा फाजली का। आइए अब सुने जावेद अख्तर का कलाम, आवाज़ एक बार फिर से जगजीत सिंह की।

देश में पंचायत चुनावों में देरी और प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने वाले आदेश पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव सम्पन्न हो जाने चाहिए। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज से अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल वशिष्ठ कुंड वार्ड में नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन करेंगी, साथ ही अवध विश्वविद्यालय के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गौतमबुद्ध नगर में 2479 करोड़ रुपए की लागत वाली 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के 4थे संस्करण की कर्टन रेजर सेरेमनी में भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना समेत अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को टूल किट, सब्सिडी चेक और सहायता राशि का वितरण करेंगे। अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन बीआर अंबेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय भाटी को 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने बताया कि दिग्विजय भाटी के विरुद्ध कई मामलों में मुकदमे दर्ज हैं, जिनके आधार पर पुलिस ने जिलाधिकारी को संबंधित अधिनियम के तहत एक रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट पर विचार करने के बाद जिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। जौनपुर के प्रगतिशील किसान सूर्यभान यादव को उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी डॉ. सीमा सिंह राणा ने बताया कि सूर्यभान यादव ने 1 हेक्टेयर भूमि में आम की 140 प्रजातियों का मॉडल बाग विकसित किया है। इस बाग से प्रतिवर्ष लगभग 200 क्विंटल आम का उत्पादन होता है, जिससे उन्हें करीब 4 लाख रूपये वार्षिक का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी 3, 4 और 5 जुलाई को लखनऊ में आयोजित होने वाले आम महोत्सव में श्री यादव को यह सम्मान दिया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो, जिस पर अगला प्रोग्राम है सुगंध माटी की।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
4: भाई अब मैच का क्या होगा,
3: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
5: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं,
6: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
5: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
6: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-444-444।
7: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
8: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
9: राम राम भैया, प्रणाम श्रोता पंचन का। अंजू शुक्ला की ओर से 10:00 हो गया है स्टूडियो की घड़ी में मिनट 4 और आज है शनिचर यानी शनिवार और हम लेके आए गए कार्यक्रम सुगंध माटी की। तो भैया गर्मी इस पड़ती है कि बहाता है कुल पसीना पसीना, तो ऐसी गर्मी में न भूलत जाया पानी पीना। और हमरे सबके साथ अब यह कार्यक्रम में आए गए हैं आकाशवाणी में आवाजों की दुनिया के नगीना, अब जिनके रहा थे आप सबके इंतजार वहाँ हमारे सबके प्यारी बड़की जिज्जी नीना। राम राम जिज्जी।
10: राम राम अंजू बहनी, कैसी हो ये पहले बताओ कि नीक हो, इतनी गर्मी पड़ रही है।
9: अब जिज्जी का बताए, स्टूडियो में बैठी है, एसी कूलर सब चलता है तो नीके हो गए।
10: तो आयरन बाहर से घाम इतना कि पूछो ना, सूर्य लगा कि कपाले का बिल्कुल गर्माए दे हैं। और ऐसे जब कपाल गर्म हो जाए तो वजह के गुस्सा उत्साह आता है अंजू। और हमारे हाथ पर है सुरैया, कहे से सुगंध माटी के है तो हम सुरैया और अपन ने जो ने माटी के गिलास है, एक माटी कला मेला लगा रहा तो वहीं से लिया रहा है, तो यही में पानी यानी भर के लाए हैं। तुम खुशी हुई वही में नींबू निचोड़ के जरा सी वही ठंडी वाली मिश्री डाल के

0: हमरे खातिर बिलाए हों, जितने हमरे पंचे वंचे हन यार वार टेक्निकल स्टाफ है, हमरे जौन आवाज का पहुंचात है ऑन एयर करत है, और ये जौन हमरे छोट छोट ये मित्र हैं जो सवेरे सवेरे ड्यूटी पे आते हैं, इन सब का हम पिलाइबे सितन जी।
1: तो यही ले तो आपके कही तुम बड़की जी।
0: और ये हमका बहुत
1: ध्यान रखा तू सबका।
0: ये बताओ ये तुम का पहन के आई हो, पॉलिएस्टर वेस्टर ना पहनने का चाहिए जाने हो, बहुत घमा।
1: अरे नहीं जी, पॉलिएस्टर नहीं, काटन आटे
0: काटन सूती पतलून पहने हुई, जींस वींस ना चले
1: जी राय देती हूँ। अरे आज जब उन्हें सब पोल खोल दे,
0: सुनो सुनो ढीला ढीला कपड़ा लत्ता पहना करो। ये देखो हमका देखा कि माँ तुम हो समय जाओ, इस कुर्ता है और नीचे देखो घाघरा पहने।
1: जी ढील ढील कपड़ा तो हम पहन रही, लेकिन कबो कबो आज है शनिचर, आज छुट्टी उट्टी रही, हम कहे के हुए ना तो चला यही पहन लिए चली चली। लेकिन एक देखा गौनई ओनई तो बहुत बढ़िया इंतजाम करके आई यही, ऐसी ऐसी गौनई सुनोबे कि जो उन्हें जो उन गर्मी है आपके वो थोड़ी शीतलता पाए,
0: शीतलता पाए। तो जल्दी से इसको गौनई बजाओ कि इंद्रदेव प्रसन्न हो जाए, हमारी आवाज ब्रह्मांड तक जाए और झमाझम वर्षा होए। बच्ची
1: कोशिश तो ये है,
0: चलो चलो।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: देखा भैया बहनी, धरती पर पहली बारिश का बूंद पड़े का इंतजार तो सबे करता है, और जब धरती पे बारिश के पहली बूंद पड़े थे जो सोंधी सोंधी खुशबू महक आवा थे ना जीजी, बहुत निक लागत है।
3: अंजू जाने ये हम जो माटी के गिलास है और ये जो हम ये सब खरीद के लाए हैं, घड़ा घर में रखा है और ये जो सुराही हम ले के चले हैं ना, हमका ये सब बहुत निक लागत है। बचपन थे देखो जब गिलास से पानी पिया था तो की इतनी अच्छी सुगंध होती, इतनी अच्छी सुगंध होती की मन करा था सुगंध रहो सुगंध रहो, पानी से अच्छा तू की सुगंध लागती।
2: हाँ, स्वाद सुगंध और तीनों चीज
3: सेहत। और प्लास्टिक के देखो हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं, चाहे कितना अच्छा पानी हो कौनो ब्रांड के हो, हम ब्रांड वांड पे नहीं जाते हैं, बच्ची सेहत से बढ़ के कोई ब्रांड वांड नहीं।
2: सही कहे हो जी, सही कहे हो। और जौनी तरह गर्मी पड़ती है भाई, हाल बेहाल है मन इनका, तो ये कहा भैया की पानी उनी पियत रह जा, नींबू पानी पिया, छाछ दही पिया, माठा पिया और जो है सिकंजी बनावा, आम पना बनावा, बेले शरबत बनावा।
3: अरे बच्ची और है शरबत, खसखस के शरबत, गुलाब की पंखुड़ी के शरबत, और अगर खाए पिए के बहुत इच्छा हो तो बनाए लो बड़ा फुरौरी, उप तैरत थी पतला पतली छाछ मा बेसन की जो पकौड़ी वो डूबत थी ना, जो फूल फूल के कुप्पा हो जाती है, कितनी नीक लगा थी। उम्मा मसालो सारे डाल के खाओ नीचे तनिके, बिल्कुल मन मस्तिष्क चौने संतुलित हो जाते। छाछ मा बनायो बच्ची, बहुत गाढ़ी दही ना करे। अच्छा
2: ए तरह की बात कर बोलो तो प्रोग्राम छोड़ के चली जावे।
3: अरे हम
2: सवेरे से जाऊना है,
3: अरे हम तुम्हारे लिए खाए के लिए लाए हन, पता है का है?
2: हाँ जी जी।
3: वो घुइया का पत्ता होता है, वो के पतौड़ा बना था बहुत है नीक, सुबह सुबह सिलबट्टा पे पीसे नुरुद की दाल, रात में भिगोए दिया रहा और सुबह उठ के तड़की सवेरे 4 बजे से, तो हमरे मन से तो बोले का कर रही है, हमके नंजुआ आए कुछ लात वात है नहीं ना, कहा थी हम तो सुबह सुबह चले रहे ना, कुछ आयो तो लई के आयो, ऐसे खा लिया था ये तो स्टूडियो में नाम बैठे थे।
2: अरे नहीं जी जी, आपका प्रेम आटे हम जानित नहीं का इतना मया था सबका,
3: टमाटर नहीं।
2: अरे यही सब अच्छा आजकल की बेटी नहीं, अरे नहीं जानती ना।
3: अरे तो हम सिलबट्टा पीस रहे हैं कि हमारे बिटेवा देखा है कि महतारी कैसे पीस रही सिलबट्टा पी उरुद की दाल।
2: हाँ जी जी, हमहू सिलबट्टा धरी, लेकिन आजकल तो जो है इतना आलस, इतना आलस की, और सबसे ज्यादा कहा था कि टेम नहीं है, कौन निकालेगा, कौन धोएगा, कौन पीसेगा। अरे दैया टेम के बात छोड़ा, तू इतनी मेहनत और जो स्वाद आवत है सिलबट्टा चटनी में, वो जो ना मिक्सी मिक्सी में कहा है मिक्सी।
3: एक बात जान ले बंजू, ये सिलबट्टा जब तुम मतलब सिलपौनी करती हो ना शादी ब्याह में, तभी तुम जा रही हो शादी ब्याह में भी तो सिलपौनी होती, ये सब यही वजह पुरानी परंपरा रखी जात रही कि जौनी सर्वाइकल वर्वाइकल होत रहा ना, ये गर्दन वर्दन में घर फिरा रही वन फिरा रही, ये सब बिल्कुल चला जाये धीमे धीमे, छोट छोट आदत डालो, थोड़ी थोड़ी चटनी पीसो, थोड़ी थोड़ी दाल पीसो, बिड़ाही बनाओ तो थोड़ी थोड़ी पीसो, तो जिससे तुम्हारी आदत पड़ जाये। और जो हम लोग हट्टे कट्टे हुए गए ना
2: मशीन मशीन सारा काम तो मशीन से होते फटाफट।

0: है
1: आई तो बच्ची गर्मी बहुत हो रही, मशीन मशीन का काम इस्तेमाल करो, जैसे ये जो कूलर है, ये जो एसी है, ये सब मशीन है तो है, गर्मा थी धधक धधक के जो लावा निकाला थी गर्म, और सड़क पे आओ तो बच्ची चार व्हीलर चलत है जी के देखो वही के पास से मार मनाई आए के जो रोड रेस लगात है ना कि पूछा ना सबसे आगे निकले की जो है हॉर्न वारन बजाए की और जो धुआं छोड़ा थी
0: खड़ा रहा है तब की एसी चलत रहा है।
1: हाँ तो सबका बहुत ठंडाए का है, बच्ची रोक रोक के चलायो, तरह तरह के किस्सा सुने जा रहे हैं है ना,
0: बहुत
1: तो बहुत उपकरण जौन है सुविधा मतलब बताओ और इस्तेमाल करो, लेकिन यो नहीं कि के बगैर बिल्कुल लग, मतलब
0: बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखो और तनी तनी देर पे उसका बंद करो, सब चेक करत रहो। हाँ हाँ और सुनत रहा सुगंध माटी की, देखा बढ़िया गौ नहीं आती है।

0: सुनील जी, बिना एसी कूलर फ्रिज मिक्सी का काम है नहीं चलता है।
1: बताओ बहनी, कोई बात हुई कि एसी कूलर फ्रिज और जितने मतलब उपकरण हैं जो सुविधाजनक हैं, सब कुछ चलाए का है और इक्का केबल पे चलाए का, ये बताओ कोनो बात होती है? तो अगिया बगिया लागत ही शॉर्ट सर्किट होते
0: है। सही कहो जी।
1: देखो गर्मी पहले भी पड़त रही, गर्मी पड़ी और कहा जाए रहा की अब की तो देखो अलनीनो और सुपर अलनीनो की हो क्या शंका ही। वैसे तो मैंने देखो इंतजार कर रहा की 30 तारीख तक देखो मानसून आए जाए, लेकिन अंजू याद करो कि पहले देखो कि कितनी 3-4-6 बार आइस बरखा बूंदी और आंधी तूफान आता रहा है कि 4-6 दिन मई जून के महीना ऐसा बीतत रहा है कि मनाई का खूब अच्छा लगत रहा है। लेकिन अब की मनाई तरस का, सुबह सोए के उठे तड़के सवेरे जब उठा था तो सूर्यदेव मार अपन किरण जो उन्हें फैलाए के उग्र रूप धारण करके धरती का आइस चीना था, आइस चीना था। यही वो आजकल नाराज है, वो ये समय बादल के बीच में लुका छिपी नहीं खेल रहे। वो कह रहे जरा अपन पहले झाऊ से जाओ, झाऊ से जाओ धूप में ठीकते।
0: घूर घूर के देखा था उनका सबका सवेरन से है और देखा देखा 27 तारीख हो गया जून के। जी जून का महीना पूरा बीते वाला है, बीत गवा जून, नहीं नजर आवा मानसून।
1: हाँ मानसून कैसे नजर आई बच्ची, जब हम लोग सब मिलके प्रकृति के हिसाब से न चले तो मानसून ऐसे ही हमसे आंख मिचौली खेली, और जब प्रकृति के ऊपर मनाई निर्भर रहा थे तो फिर कहा है ऐसा पाजी पना कर रहे थे बच्ची।
0: सही बात यार, लेकिन अब जब समझावा तो कहा थे मनाई कि जो है गर्मी है, हाल बेहाल है, कैसे बिना एसी कूलर के काम है नहीं चलता है।
1: और एक बात,
0: कूलर तो तबो ठीक है, एसी खतरनाक है।
1: एसी खतरनाक, मनाई एकदम जैसे लगा था कि अपन शरीर के पीछे एसी लगाए क्योंकि बस नहीं चलता है, नहीं तो लगाए कि बिल्कुल चले। बताओ ऐसे कौन होता है? हम लोग तो देखो पेड़ की छाव में भी रह के खूब मजा मारे है ना, सिकड़ी खेलन, खूब चौखंटा खेलन। और
0: मौका मिल जाते तब हम सब जो उन्हें मौका नहीं छोड़ते।
1: अच्छा तुम चलो चल के तुम लंगड़ी टांग खेलते
0: और का
1: अच्छा टांग बन बचाए के
0: सिकड़ी बनाए ले कर बहुत मजबूत है जी। अच्छा ये बतावा ये जो ये सब खेल चक्री पीसा ये करा उस सब मतलब शरीर मजबूत रहा
1: रहा
0: है? हमका जो है मिली हमारे चाची है बहन,
1: अच्छा
0: 2 दिन पहले हाँ जानी की जो है आपकी हम बताए रहे बुध का आए रहे तो हम कह रहे भाई हम सनिचर का उबस सुगंध माटी की में, तो हमसे पूछी की आपकी क्या आवत है तोरे साथ, तो हम बताए हमारे जी आवत यहाँ तो जानती है तोरे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न भेज दी
1: का।
0: अरे उनके 2 पतोहिया आई है अब ही छुटके बेटवा बियाहवा करी है हाले में।
1: हाँ।
0: और जो उन्हें बड़की पतोहिया तो रही गांव देहात के लेकिन बड़ी सुघड़ है और जा तो मेहमान नवाजी करते बढ़िया बढ़िया बनाए खवावत है। और छोटकी पतोहिया जो उन्हें आएगा कारपोरेट वाली मतलब नौकरी चाकरी वाली है, अब जो उन्हें बड़ी बिपदम पड़ी है बड़ा सुंदर मकान सकान सब बनाए हैं पंडित जी। और जो उन्हें चाची कही कि जो हमसे पूछी कि अब तो पहले तो बहुत बढ़िया घर चलता रहा केटी पता हो रही बहुत ध्यान देते रही, छुटकई आई तो दोनों जनी में प्रसन्नताप हो लाग और कहा थे कि जो है वो छुटकई कहा थे कि हम काम नहीं करेंगे, मैं तो कमाती हूँ और जो है मैं नौकरी करूँ ऑफिस का काम करूँ कि घर का काम करूँ मेरे पास इतना वक्त नहीं है तो मैं काम वाम तो नहीं करूंगी। अब बड़की जनी जो करत रही और कहा थी कि ले भैया जब छुटकी नहीं करती है तो हम तो रही हम तो ही जेठान तो हमू ना करब। अब बेचारी चाची मोड़ पकड़ के बैठी यहाँ कहीं की बतावा जिस पूछू कौनो उपाय हो बताओ मैं का करी।
1: अरे अंजू बहनी देखो उपाय का है, घर परिवार ऐसे थोड़ी चलत है कि हम ही हन हम ऊ हन, घर परिवार तो एक दूसरे के स्नेह से नेह नाता से चलत है। अब देखो हम लोग भी हन तो का हम लोग उनके घर परिवार में सब जो मेहरिया है तो का नौकरी पैसा है का, लेकिन जब हम लोग कमनो जगह जात है ना तो ऐसा नहीं की दिखातन की हम फलनवा जगह काम करत है हमका सब है जो उन्हें लाइक करत है शेयर करत है और फेसबुक पर हमका जो उन्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखत है, तब हम जाए के बिल्कुल एक साधारण मेहरिया की तना सबके बीच में बैठा थन, कौनो दरी बिछाए के बैठा है जमीन पे तो वहीं बैठ जाए थन, कौनो खटिया पे बैठा है तो वहीं बैठ जाए थन, और जो माए मैं है ना ये सब कुछ नहीं ना, तो जो मेहरिया ये नौकरी वोकरी कर रही वो ही जान ले कि घर परिवार प्रेम मोहब्बत से चलत है, नौकरी के चोला गेट के बाहर गेट के अंदर उतार के तब गेट के बाहर आओ तब घर परिवार चलत है नीके तनीके, और नहीं तो फिर जो टंटा होता जो युद्ध होता महाभारत होती तो उनका जो है हंसी की हसारत एक शब्द है वही होत है।
0: बिल्कुल सही कहो जी,
1: जो प्रोग्राम जो प्रोग्राम सुन रही हूँ ध्यान पूर्वक सुन ले मेहरिया, नौकरी आप लोग करती हो यही वदे कि आज के समय में बिटेवन का बढ़ाई के लिए सरकार तरह तरह की योजना कर रही तरह तरह के काम कर रही कि कोनो तरीके लड़का लड़की में भेद न कीन जाए, छोट परिवार होए एक मतलब कहा जाए कि बराबरी के हिस्सा बराबरी के दर्जा, लेकिन वो कोई मतलब नहीं ना कि हम मनई जौन हम मेहरिया हैं भारत की वो अपन कर्तव्य भूल जाए। सही कहा कि नहीं?
0: बिल्कुल,
1: कहा
0: बिल्कुल सही कहा।
1: सब आना की एक बात कि सबका प्रेम मोहब्बत से रहेगा चाहिए और जो नौकरी करती हैं उनका भी जब आए जाए तो वो घर के काम में हाथ बटाए, और जो पहले से आई है बहुरिया जौन तुम्हारी रिश्तेदार की पतुया जो हाँ, पहले से आई हाँ, है हाँ, हाँ, जो सेवा भाव से सबकी सेवा करत जिठानी, हाँ तो उका भी प्रेम से कबो कोनो गिफ्ट लाए दे उपहार लाए दे, है ना, कोई पैर और गोड़ नहीं मलवाते लेकिन कबो कबो गोड़ के ऊपर हाथ रख ले हो, हाल चाल पूछ लो, जज्जी पूरा दिन तो लगी रहे हो और कैसी हो, तो देखो ये प्रेम से मनाई के दिल जीता जाता
0: है। बिल्कुल, आपसी तालमेल बहुत जरूरी
1: है। यही ने कहा जाता है कि जो उन मन से तू है उसके दिल कैसे जीता जाते, खिलाए खिलाए के बहरिया लोग जीतती है, खिलाए खिलाए के ऐसा की बिल्कुल तोंद वो निकलवा देती है, कंगन वंगन लूट लेती है,
0: मतलब दिल का रास्ता जब ना पेट से निकल के जाते पहुंचते हैं। हाँ,
1: तो ये घर की गाड़ी है और जिनके घर परिवार है सब प्रेम पूर्वक रहो, यही हमारी मंगल कामना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बहुत मिल गवा उत्तर।
0: हाँ भैया, इतना सुंदर उत्तर, अब ना समझ पाई है तो कब ना समझ पाई है, जाने रहा।
1: हम तुमका बताए कि अंजू बहनी हमरे तो घर परिवार में बहुत

0: कम लोग जानत हैं जहाँ हम जात हैं कि हम नौकरी करत हैं। हमारे आचार विचार व्यवहार ऐसे है कि हम जहाँ जाते हैं वही रल मिल जाते हैं।
1: बिल्कुल ऐसा हो इनके चाहिए।
0: बिल्कुल
1: चला बहुत सुंदर के ठीक कलसा गुठाई गीत सुनाओ थे। एक बात बात हो कलसा गुठाई हो
0: अच्छा
1: सुना सुना।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जी देखा कितनी सुंदर गाँव नहीं रही ना, कलसा गुठाई कितनी हाँ। सुंदर रस्म और भैया भौजाई के पूरे परिवार का आशीर्वाद देती हैं, बहिनी अरे बुआ हरे सब करती हैं। बिना परिवार के बिना सबके कैसे मजा आए भाई, कैसे हो ही सब?
3: अंजू बनी हम आपको बताई कि देखो ये कहा जाता है ना अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पावत है, वैसे घर परिवार की गाड़ी होती तब निके तनिके चला थी, जब घर परिवार एक साथ मिलजुल के रहते हैं। और जो टेबल जिनके ब्याह हो जाते हैं ना कबा कबा होती है तो उनके आदर सत्कार करे का चाहिए, दिल से करे का चाहिए, ये नहीं कि कब जाइए मन में बहुत महसूस के उनकी आदर कर रही है।

0: नहीं, हम आपको बताइए कि देखो ये कहा जाता है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पावत है। वैसे घर परिवार की गाड़ी होती तब निके तनिके चला थी, जब घर परिवार एक साथ मिलजुल के राहत है। और ये जो बिटेवर टेवर जिनके ब्याह हो जाते हैं ना, कब कब होती है, तो उनके आदर सत्कार करे का चाहिए और दिल से करे का चाहिए। ये ना ही कि कब जाइए कब जाइए, मन में बहुत महसूस महसूस के उनके आदर कर रही हो, पिलाए खिलाए रही हो, लेकिन अगर आदर न करियो तुम हो, कोई की बिटेवा हो, कोई की बहिया हो, और जाइयो तो तुम्हारी भौजाई ऐसे करे तो का लगी, कोई के दिल पे का गुजरी, बताओ।
1: और
0: ये बात देखा है, कभो कभो ऐसे भी होते कि अम्मा जो घर की बड़ी बुजुर्ग होती हैं, जो महतारी होती, उनके भी बड़ी भूमिका होती, अपन बिटेवा के आके तो इंतजार करती थी, लेकिन यहू नहीं सोचा थी कि बहुरिया जो है वो कभी कुछ दिन के लिए उके पीहर भेज दे। बात है कि नहीं ना?
1: बिल्कुल सही कहो, तो कहू के बिटिया ही भाई।
0: और का ये सब ताली देखो, दोनों हाथ से ताली बजाती, एक हाथ से ताली नहीं बजाती, देखो ये सब
1: यू कहती जो ना दोनों तरफ है भाई। ये कहती हम सब एक कार्यक्रम करते सुगंध माटी की, हम ही अंजू शुक्ला हमारे साथ यहाँ नीना सोनकर जी है 100.7 FM रेनबो पर, और वह कहती हमारे श्रोता पंच है जो भर भर के प्यार लुटावत है,
0: प्यार लुटावत है सुगंध माटी में। नीना जी का और अंजू दीदी का बहुत बड़ा प्यार, नमस्कार ग्राम पोस्ट ललुआ लखीमपुर खीरी से विजयपाल यादव उनकी मेहरिया, लेकिन बहुत नीक लाग रहा, आज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और जल्दी जल्दी में लेकिन जल्दी जल्दी लेकिन ईमेल, और कोनो गलती हो जाए तो हमका माफ करो, कुलदीप गुप्ता जी का भी पढ़ दे। कार्यक्रम के आगाज बहुत सुंदर भा, प्लास्टिक से दूरी बनाए के लिए सुंदर जानकारी मिली, हम बाहर निकलते हैं साथ ही मिट्टी के बर्तन में पानी भर के साथ ले जाए ऐसा कथन, और बारिश के आगमन से जुड़ा हुआ लोकगीत सुन के गौनाई मन बहुत अति प्रसन्न हुई गा, और आज हम टाइम निकलिए आपका मैसेज भेज दे। उधौली कहाँ? उधौली बाराबंकी उत्तर प्रदेश से कुलदीप गुप्ता भैया जो आए रहे,
1: बहुत धन्यवाद भैया,
0: स्थापना दिवस में नियमित श्रोता है। यन से हटिए तो वन मेल करिए, वन से हटिए तो पीसी पे मेल करिए,
1: विविध भारती FM रेनबो सब जगह।
0: देखो शैलेश कुमार है, लेकिन गर्मी बहुत है जिजी, हमारी माँ जी चली गई अपनी बहन के वन ब्याह माँ, आज हमारे पिताजी भी कहीं है पापा की आज खाना आप बना लो तो हमका गर्मी लाग रही, पापा हमारे कटहल की सब्जी रोटी चावल सब बनाई, नीना जिजी अंजू जिजी आपो खाए ले, और गर्मी बहुत लग रही, आइस लग रहा, नीना जिजी स्विमिंग पूल में पड़ा रही, बस बताओ भैया ये गर्मी उतारे के कौनो कारण है, मतलब एसी के लिए रोका गा, कूलर के लिए रोका गा,
1: तो स्विमिंग पूल
0: में। अब देखो यही के साथ एक छोटी सी जानकारी, जो घर परिवार में जैसे मनाई सब बिजी हो जाती है, मेरिया वरिया घर के मनाई वनाई, तो क्या करते हैं छोटे छोटे लड़का बच्चा अपनी टोली टीम बनाए के जाते हैं नगीचे जहाँ तालाब होए पोखर होए, वहां अपन गर्मी मिठाई के लिए चले जाते हैं, देखा देखा देखो कभी कभी खुशी के समय जो है मातम माँ बदल जाते हैं, वन जाके पता चला कि कोई मिल नहीं रहा, चप्पल किनारे पड़ी है, फिर ढूंढाइया शुरू होती, पता चला तुम नदियों में बही गए, तो ये सब भी देखो जाए रहे हो, अगर शादी ब्याह मत इके विशेष ध्यान रखो, लड़का बच्चन का अपनी आंखें तले रखो।
1: बिल्कुल, और देखा मनु भैया कहा था जी जी राम राम करे, और नानी की तरफ से भी प्रणाम, माटी सुगंध और दादी नानी का रिश्ता भारतीय संस्कृति में बचपन संस्कार प्रेम का सबसे खूबसूरत प्रतीक है, दादी नानी के हाथों की बनी सौंधी रोटी, मिट्टी घड़े का ठंडा पानी, माटी के चूल्हे पर पके खाने में जो प्रेम और सुगंध होती है वो आधुनिक मशीनों या होटलों में नहीं, और प्रोग्राम इतना सबका भावत है कि कुछ श्रोता अलार्म लगाए बैठा कि कहूं भुलाए ना जाए, अलार्म याद दिलाए देते कि गाँव में इस समय खेती बाड़ी काम चालू हुआ है तो बारिश हो जाए खेती लागत शुरू हो जाए। सही,
0: लेकिन देखो ये वकील अहमद जी हैं लेकिन गुड मॉर्निंग सुगंध माटी कार्यक्रम बहुत नीक लग रहा, अच्छा चल रहा, गौनाई अच्छी बज रही, इस समय सुबह से लगता है कि से दोपहर हुई गई, धूप बहुत तेज ही, इस समय हम का गर्मी बहुत हुई रही, मतलब हमारे मन गर्मी बहुत हुई रही। वकील अहमद मसूरी कटरा हथूरी जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, पिंकी रिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दीकी, अहमद नवाब, अरे भैया रिंकी पिंकी बहनी नमस्कार, कहे से कि बड़ा गुस्साए जाती हूँ कि हमारे पसंद के गीत बजाए दो। मोनुद्दीन अंसारी भी है गुड मॉर्निंग लिखी है, मैम हाउ आर यू, और आई एम उमरा अंसारी, और हजवा अंसारी श्रीनगर लखीमपुर खीरी से मेल कर रहे हैं, कार्यक्रम नीक लागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक कुमार भैया लिखे हैं, अशोक राज राम राम प्रताप रायपुर ओदारा मितौली लखीमपुर खीरी से, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, बलिस्टर चाचा अजय राज प्रदीप राज आशीष राज अंजू राज सब सुनता है इनके साथ।
0: और ये देखो पिंकी बारी है ये लेकिन राम राम और नदिया जंगल खेत खलिहान ये सब धरती की पहचान, प्रकृति के रखिया ध्यान तब खुशहाल रही संसार, आम तरबूज खरबूजा खावा दहिया के ठंडक पहुंचावा, दही छाछ और नींबू पानी ई सब हवन अमृत समान, ई सब हवा अमृत समान बच्ची ये लेखन है।

0: हाँ,
1: बासी
0: सही कह
1: तलत चीज ना खावा, ताजा भोजन रोज अपनावा, हर घड़ी पानी पीत रहिया, अपन सेहत के ध्यान रखियो। भैया बिल्कुल सही सही निके निके लिखे हो,
0: बहुत सुंदर। नीचे वीडियो
1: भेजी ना जाने का, वीडियो में रसगुल्ला तोड़ तोड़ दिखा रहे, रसगुल्ला
0: कुल्फी है,
1: आशा पांडे जी है, लेकिन बहुत नीक कार्यक्रम लग रहा और गाना बहुत अच्छा चल रहा है, स्पेशली कैसा कलसा गुल मतलब गुठाई गुठाई, ये सब बहुत देखो पुरानी पुरानी परंपरा ही, जब हम अपने पंचन का जोड़ा था ना, ये सब याद दिला था, तो उनका भी देखो अपन चीजें जो उन्हें स्मृति में जो है उनकी याद आए, लगा थी ऐसा लगा था कि जैसे कल की बात हो कि हमरे वन भी आई सोतरा, हमरे वन भी आई सोतरा,
0: सही बात
1: है। तो यही प्रेम मोहब्बत से घर की गाड़ी चले वधे, सुगंध माटी के कार्यक्रम होते। और अंजू भाई ने आपका बताई कि जब बचपन थे हम दिवाली वाली के मेला में जात रहे, तो वो जो चकिया चूल्हा रहा माटी के, हम जरूर तो लगत रहा कि अम्मा पकवान बन रहा। फिर थोड़े बड़े बहन तो जो बड़ी बड़ी हमारे घर में बहनिया लोग रही, तो बहनी लोग का करते रही, गुड्डा गुड़िया के ब्याह करत रही, और बड़े से परात माँ खूब नुकती बुंदिया खूब बनत रही, खस्ता कचौड़ी है और भुंजिया उंजिया खूब बनात रही, गलका वलका खूब नीके तनीके, तो लगत रहा कि आज गुड्डा गुड़िया के ब्याह है। बाद में समझ में आवा कि परंपरा इसलिए रखी जाती कि बटेवा लोग मानसिक रूप से हो जाए तैयार, यही सब होता है,
0: यही सब होता है। सहूर सिखाए दिन जाए, हाँ। देखा जो उन गवन ही सिखावत है सुनावत है ना, यूं कुछ यही तरह कहा गया है, नहीं हरे से सहूर सिख के आओ।
1: हाँ, का बात ही।
0: चला सुना सुना।

0: भैया सुगंध माटी के कार्यक्रम चलता है और देखा कितनी सुंदर बात कही दे है, नैहरे से सुखा सीख के आवा सहूर चिरई। चाहे जितना कमा धमा, चाहे जितने बड़ी डिग्री हासिल कर लिया, लेकिन अगर रोटी नहीं बनावे आवा तो भैया सब मेहनत बेकार, सारी डिग्री बेकार
1: सब
0: ना
1: बिल्कुल
0: का।
1: बिल्कुल अंजू बहनी जाने, यही हम गुड्डा गुड़िया की जो बात करे हैं, जो कचौड़ी उचौड़ी बनाई जात रही, वो सब हम लोग सब लोग मिल के हमारी बहनी लोग बनात रही, हम देखत रहे कि खूब बनाइन चुनाइन। तो इसे आदत पड़त रही कि रोटी उटी मतलब बेलना मनई का आ जाए, बिटेवन का मतलब अपन जाए ससुरे तो अपन नाम न धराए, है ना।
0: और
1: कभी
0: लेकिन
1: कभी
0: अब तो जिज्जी बेटवन का भी बहुत जरूरी हो गया है।
1: बटवन के भी जरूरी होगा, लेकिन ये बात जान लो कि बिटेवा जौन है वो घर परिवार वही संभलती है, काहे की बात है लड़का लड़की के बराबरी के सबकी बात होती, सबका सब कुछ आए का चाहिए। घर में अगर कोई

0: बुजुर्ग भी है उनका भी आयका चाहिए कि वक्त जरूरत मतलब ऐसा भी कभी कभी होता है कि अकेले पड़ गए बाहर के खाए से तो अच्छा है कि खिचड़ी तहरी कुछ बनाए के खाए लेन
1: हाँ,
0: नहीं तो मोट मोट रोटी चटनी बनाए लेन गोद लीन उम्मत से दो चम्मच डाल दी देसी घी कितना अच्छा नीक लगा
1: है ना। नहीं तो जो ना मोबाइल उठावा थे खट से टिक टिक टिक टिक ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं बाहर का खाना पीना ऊपर से मौसम में गर्मी में तो बिल्कुल नहीं कि जो ना बासी तेबासी कैसे आवता है कैसे बनावा जाता है। अपने सेहत का स्वास्थ्य का ध्यान रखे कुल इन्फेक्शन फिनफेक्शन फैला है हाँ तो यही लिए घरे ताजा ताजा जे अब मम्मी और दीदी अगर मान चली गई तो जो उन्हें जो उन बैठा साहब ज्यादा कुछ नहीं बना पाते नहीं हो एक चाहिए उन्हें चाहिए।
0: और ये देखो सब लिख रहे हैं सब मेल की सुगन माटी की बहुत सराहनीय लागत है हम सबका भावत है सब जने बड़ी ध्यान से सुना था वैसे भी हमारे ससरे माँ भी सब जने सुने लगे हैं परिवार में रातों में बादल आई सा लगत रहा की बाढ़ आए जाई लेकिन सुबह सूर्य देव ही हर तरफ जलवा बिखेरे ने आंचल सेठ खालिसपुर रायबरेली से लिखे ने।
1: और देखा सोनू परवाना भी लिखे हैं माटी खुशबू प्रोग्राम में आप सब राम राम आज ही प्रोग्राम सुने खातिर छोटे लाल शुक्ला जी भी सुने आए हैं इनके नाम ई खातिर लिख दे हैं क्योंकि मेल नहीं कर पावा था। अरे भैया शुक्लू जी सीख लिया मेल उल करे हैं राम राम आपका और कहा थे कॉल लग नहीं पावा था तो आज आपका प्रोग्राम बहुत ध्यान से सुना था जौन गाना आप बजावत हो उसके साथ साथ गुनगुनावत और बहुत ध्यान से सुनता है बहुत बहुत बढ़िया बस यही तरह सुनता।
0: और देखो ये ग्राम बमना तहसील सफीपुर उन्नाव से लिखे ने जिला उन्नाव से कि चंडीगढ़ से कार्यक्रम सुन रहे और बहुत अच्छा लग रहा झूम रहे नीक लग रहा सबकी बोली बहुत अच्छी लग रही गौनाई नीक नीक बाज रही और यहाँ चंडीगढ़ में भी ऐसा मजा दे रही कि जैसे हम अपनी अवधि मतलब क्षेत्र में बैठे हैं सीतापुर में लखनऊ में।
1: क्या बात रोशनी रावत आई है बस इस तरह सुनता तेज बहादुर यादव भैया जानती है इन्हू रायबरेली का है और गुरुग्राम में जब उन्हें काम धाम करे थे अपन हुआ से सुनता है राम राम कहे हाँ आपो को हमका कहा थे बहुत बेहतरीन शुरुआत भाई कार्यक्रम के बहुत नीक लगा था पहला गीत और नीना जिज्जी के बहुत बहुत स्वागत करे थे हम और कहा थे कि हमहू आए रहे अगले हफ्ता रायबरेली हमरे अपने मेहरारू और लड़का बच्चा का लाव है और हमका मिक्सी कूलर और फ्रिज मंगवाए तो पिया एसी लगवाए तो पिया एकदम नाचे वाले गीत गवनाई सुनवाए रही बहुत झमाझम गीतन के बारिश कह रही है दोनों जनी।
0: और देखो ये है गांव भानपुर हरुआ जिला लखीमपुर खीरी से मुनेश कुमार राज नीना दीदी अंजू बहिनी दोनों का नमस्कार कार्यक्रम बादशाह पुरानी याद भोर भय रेडियो बजा दीदी बहनी की बोली आई पुरानी याद ताजी भाई आंखिया भरी आई अलगे धरव सिलबट्टा अलगे धरव बिलना दीदी जिज्जी की मीठी बाणी से मन का जाय चहकना चूल्हा चौका छोड़ सखी सब कान लगाई जब बोली दी बहनी सारी दुनिया ठहर जाई बचपन की उगली सुमरन करती बुढ़िया दू बहनी की बोली बानी लगे जैसे ससुरिया।
1: क्या बात अच्छा सब जने कभी वही हो गए हैं सब
0: जुग जुग जियो दीदी जी जुग जुग जियो बहनी जी आपकी बोली में बसी है मिट्टी की महकार यही बहुत पुरानी यादन का ताजा कर दियो आज आप ऐसे ही देहात की खुशबू हम तक पहुंचात रहो और दोनों बहनी का राम राम आपके भाई मुनेश कुमार राज
1: राम राम भैया जियो भैया यही तरह सुनत रहो। और देखा वारिस अली खान भैया भी लिख दे हैं प्यार भरा सलाम और कहा थे आप दोनों सुगंध माटी की शो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप दोनों जब भी शो करते हैं कोई ना कोई संदेश जरूर होता है यानी आम के आम गुठलियों के दाम
0: आम से हमको याद आवा देखो आम जो है ओम प्रकाश कहीं से रखे क्या जिज्जी आपका
1: लाए नहीं
0: नहीं और मालूम का कहीं सब झूला से गए जिज्जी पानी नहीं बरसा तो आम जौन है वो झुलस गए और जो गुच्छा गुच्छा बाउर लगी रहे वो गरमाए के बिल्कुल झुलस गई सूख गई ऐसा प्रकृति के तांडव इस समय हम लोग देख रहे हैं कि भैया आम के तो अब नामा रहेगा है जो कुछ है उका भी जब खाए के पहले जौन है खूब नीके तनीके धो जो बाजार में है और उका थोड़ी देर नमक के पानी में गरम डाल दे जो पेस्टिसाइड वाइड होता है कार्बाइड में पकावा जाता है वो सब निकालना भी बहुत जरूरी होता है क्या वो भी शरीर के अंदर जाते है
1: ओके बाद फिर एकदम ठंडा कही के खाओ भैया गरम गरम बिल्कुल न खाओ
0: ठंडा करके ठंडा भाई देखो खसखस के पास रख दे मतलब खसखस के जो होती ना देखे हुई खसखस कैसा होता है जड़ी तरीका होता है और उका जो ने को पानी से भिगो के भिजोए भिजोए के वही के ऊपर आम धर दे और ढक दे उसे वो जो होता है माटी के वो जो तस्तरी टाइप की होता है वही ढक्कन ढकना टाइप के भी आते अब तो तरह तरह के माटी कला मेला में देखो सब बर्तन मिला था माटी के तो वही से धर दे उके ऊपर पानी छिड़कत रहो और आइस ठंडा हो जाते आइस ठंडा हो जाते जैसे लगा था फ्रीज से निकाल निकाल खाए रहे
1: बहुत बढ़िया। और देखा गौनाई अच्छी लागत यह है सोहर सुन के मन प्रसन्न हो गए ब्रजेश सिंह दीपू भैया इटा हुआ कैसरगंज बहराइच से मेल कर रहे हैं और संजू देवी भी मेल करती है ग्राम पहाड़पुर से और भिठौरा जिला सीतापुर से अंजू जी नीना जी दोनों का राम राम करें हाँ दोनों बिल्कुल

0: नहीं कही बच्ची हम सब। हाँ बहन
1: पलिया कला लखीमपुर खीरी से जसप्रीत विश्वकर्मा जी लिखी ने कार्यक्रम बहुत नीक लग रहा चल रहा बड़ा नीक लग रहा अच्छा भैया राम राम बहुत अच्छा। रामराज जी लिखी ने रायबरेली ग्राम पहाड़ीपुर से, इनके साथ राजू भानु रामचरण पप्पू पासी मनीष नीरज मधु मीनू ननकई। सबसे पहले हमारी तरफ से दोनों बहनीन का प्यार भरा नमस्कार, शुभ आशीर्वाद पहुंचे, सुगंध माटी के कार्यक्रम बहुत नीक लग रहा, हम सब लोग रोज सुनतन, धन्यवाद रामराज जी आप भेजे आओ मेल।
0: तो भैया यही तरह सुनत रहा जुड़ा रहा हमसे सबसे।
1: पढ़ा पढ़ाओ अपन अपन कंप्यूटर पे पढ़ाओ, ये बेनित कुमारों के मेल है।
0: हाँ अभी देखा पढ़ी थी लेकिन पहले गाँव नहीं सुनाई,
1: सुना सुना।

0: जौन रंग पसंद हो वही रंग ले आया भैया, लेकिन लाया जरूर।
1: और वैसे भी देखो अगर आहत है जो मतलब घर परिवार में जब मनाई आहत है घर बाहर से, तो अपन मेरिया के लिए खुश करे के लिए कोनो गिफ्ट विफ्ट तो बनता है।
0: और का
1: ऐसे थोड़े
0: चूड़ी कंगन कुछ तो
1: और का चूड़ी लई आओ कुकी खाया किसी से गोलगप्पा मनाई का आता है। लेकिन देखो हम गोलगप्पा का प्रमोट नहीं कर रहे हैं, कैसे की गर्मी बहुत है और जितना हो सके बच्ची देखो घर के ही खाना पीना खाए, और नहीं तो जान ले कि कभी आपके पेटो चल सकता है, कभी आपको कुछ हो सकता है। और जरा जरा तनी तनी देर में पानी जरूर घड़ा से लुड़का लुड़का के पिए। अगर पानी ना पियो तो कहा जाता है शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, जो मेरिया लोग खाना ना बनाती हैं मार धार की तनी के पसीना इस बात है, ऐसा लगता है कि ऊपर से मनाई गरम गरम पानी से नहवा रहा है नहीं। तो ये सब बातन के ध्यान रखे का है। और देखो अंजू बहनी कि कुल्फी फालूदा के भी मौसम है, और केसर की कुल्फी फालूदा है ना, रबड़ी फालूदा मौसमी जो शरबत है वह पिए के समय है, और सत्तू के शरबत भी मनाई पी के स्वस्थ रह सकते है। आम के पन्ना के बारे में तो हम लोग कई बार बतावा है कि गर्मी के मौसम में आम के पन्ना पिए का है। ठंडाई ठंडाई बहुत नीक लगा थी, ठंडाई तो तरह तरह की मनाई घर में बना सकते है। और खसखस के शरबत ये भी एक शरबत होते हैं, सबका मालूम है कैसे बनाए का है
0: और
1: ठीक है। और गुलाब की पंखुड़ियन के शरबत ये सब ऐसी चीजें हैं ना
0: जो शरीर को ठंडा रखती
1: है। सौंफ के शरबत बहुत ही अच्छा बहुत ही नीक लागत है। और

0: ठंडा ठंडा पेट में जब जाते हैं ना, ठंडा ठंडा कूल कूल पेट आपको कर देते।
1: सही बात है ना। जी जानती है, यही तरह ठंडा ठंडा ईमेल ढेर का होता, कैसे हो गया है 10:51 और इतनी तेजी से समय समाप्त हो जाता है, जिज्जी पता नहीं लागत। अब देखो विनीत कुमार भैया के मेल आप पढ़े वाली रहो, कहा लिखे हैं।
0: अच्छा, विनीत कुमार अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से लिखे ने, सुगंध माटी की प्रस्तुत कर वाली बहनी लोगों का राम राम प्रणाम। छोट भाई विनीत कुमार आप लोगों का सस्त प्रणाम कर रहा, और सुपर हिट स्वीट मीठी मीठी बोली, बहुत नीक लग रही प्रोग्राम, बहुत नीक लग रहा, हम सब दोस्त जौन है और सुन रहे ना आपके कार्यक्रम, और हमारे दोस्तों सुन रहे हैं। और नीचे लिखे न आजाद सिमरी से ओमकार, सीतापुर से सुरभि, और यहीं से शमा परवीन, और परवीन अंसारी सीतापुर से, सीमा रावत राजाजीपुरम से, संतोष मौर्य हरदोई से, वीरपाल पट्टी अतरौली से, ममता हरदोई से, रिंकी पिंकी रायबरेली से, मोहिनी हरदोई।
1: अरे भैया इतना सबके नाम लिख दे है, वाह वाह।
0: अरे भैया छोड़
1: सब जन सुन रहा
0: हूँ। हाँ
1: हाँ, समय भागता है। पवन कुमार भैया सिधौली सीतापुर से सुनता है प्रोग्राम के, तारीफ लिखे हैं, बहुत मजा आवाता है नहु का। और विपिन कुमार मौर्य भैया भी पसीना में सरा बोर है, देखा फोटो भेजे हैं आम के खेते में, देखा
0: आम के खेत,
1: आम बगिया में,
0: और
1: बगिया
0: ये देखो मोनू सेठ जी
1: बगिया में।
0: हाँ, ऐसा लगा था प्रोग्राम एकदम झलझल हुआ चलत बा, अरे लगत रहा झलझल हुआ, तो भैया ठीक है झलझल हुआ,
1: मजा लेत
0: रहा, मजा लेते हैं, मतलब झकास इनका करेगा मतलब रहा।
1: अरे जौन जौन शब्द बोला था कि अलग है, डिक्शनरी बन जाए,
0: डिक्शनरी बन जाए। सुशील यादव करनैलगंज गोंडा से लिख रहे हैं, कार्यक्रम बहुत है, बहुत नीक लग रहा है, आप लोग उनके प्रेम जो मेल है बहुत नीक लग रहा है। कौन है? मिसेस गीता सेठ FM दीवानी, और दोनों दीदिया जी का प्रणाम, राम पन्नाम। राम कैसन हो आप? उम्मीद, आप उम्मीद बानी बहुत नीक होए है, मतलब बानी बहुत नीक, बरसे जब पहली फुहार, मई के माटी की सुगंध, दुनिया के सारे सुखद फीके के सम्मुख बंद, पहली बारिश की फुहार पड़ते साथी जो सोंधी खुशबू माटी से आती, वो प्रकृति की सबसे बड़ा है उपहार, इके आगे दुनिया भर के सुखो अश्वर भी फीके पड़ जात हैं।
1: अच्छा जी, अभी देखा एक फोटो भेजे रहे भैया मौर्य भैया है। हाँ। किसान हरे जो हमारे किसान भाई यहाँ ये सभी खेत में चाहे जऊन मौसम होए, इतनी मेहनत करें तो ये सभी मेहनत ना करें तो जो है हमारे सबके थारी में अन्न न पहुंचे।
0: ये जाने अंजू बहनी, इनका कहा जाता है अन्नदाता, मेहरिया और जो घर के परिवार के सब सदस्य मिलकर काम करते है ना, इनका सत सत प्रणाम करो, इनकी वजह से हम लोग खाए पिए के लिए जो तना तना के स्पेशल फूड आइटम।
1: हाँ, और देखा किसान के लड़के बच्चा भी, उनके पूरे परिवार का प्रणाम। हम
0: हाँ,

0: समझा ले।
1: हाँ भैया, तो गर्व के साथ कहा हम लड़कियां ही किसान के है, बहुत मत लड़कियां, बच्चे आजकल के शर्माते हैं।
2: शर्माते हैं। देखो अंजू बहनी, हम आपका बताए दे कि जो कुछ काम कर रहे हो ना, उसका गर्व महसूस करे का है। आजकल देखो स्टार्टअप के जमाना है, ऐसे ऐसे मनाई देखा है कि
1: आज दिनों हुआ है लघु उद्योग दिवस।
2: हाँ, और देखो मनाई जो उन्हें खेत खलिहान में काम करके कमाया रहा, अपन देखो गैया वैया पाल लीस है, घर घर जो उन्हें दूध दे रहा, दही दे रहा, छच्छा छाछ है, मट्ठा है, ये सब चीजन की सप्लाई कर रहा, घी दे रहा, तो बिल्कुल प्योर, बिल्कुल एकदम मिलावट नहीं। तो ये जो छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं ना, यही स्टार्टअप कहलाते हैं। और मैंने देखो धीरे धीरे कोई चीज जमा थी, अब ऐसा थोड़ा है कि बिल्कुल आए के जम से बैठे, कौन चीज शुरू करे और कौन फसल लगाए, उके बीजा डालो, तुरंत पेड़ बन गया, नहीं। समय से आते फल, समय से पेड़ होते बड़ा। और देखो सुगंध माटी में एमन नवाब लिखी ने संडीला से कि हम सुन रहे हैं, दिल बनाई नहीं मोजी, और कहीं नीक लग रहा कार्यक्रम, और सब श्रोता पंजन का कहो कि जो उन मेल भेजी ने अंजू कि सबका धन्यवाद। और यह बताया दी पंचन का कि जो उन्हें कहो नहीं सुने हाओ कि अंजू बहनी बहुत, मतलब कहा जाए कि मेहनत मेहनत मेहनत कशी है, तो मेहनत कर करके निकालिन है, और एक एक गौनाई पे हम लोग जो उन्हें रिसर्च करा था, लेकिन अंजू निकाली से, और ऐसा तुक्स ऐसी तरकीब हो गई कि बतकही जो उन्हें गौनाई से मिल मिल गई।
1: अरे यही का तो कहा थे एक्सपीरियंस जो हमारे जिज्जिक लगे यार। तो जिज्जी अब कब आऊं वो बतावा।
2: अब जब देखो हम तो पहले बात कहे कि अब हम परसों जाब वेद भारती पे और वन करब कार्यक्रम, और अब देव भैया नीना सोनकर बहनी का
1: और अंजू बहनी की इजाजत, लेकिन हम अगले कार्यक्रम में आई यहीं पे, और नीना जिज्जी का पठे आई है, तब तक आखिरी आज के कार्यक्रम के आप सब
2: रिक्वेस्ट खा लिए। अच्छा
1: हाँ हाँ, अभी चलते खाए खाए
2: सभी का नमस्कार, राम राम भैया,
1: राम राम, प्रणाम।

रामपुर शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट 102.2 FM रेनबो से जुड़ चुके हैं आप और लेकर हाजिर हो चुके हैं हम प्रोग्राम हम नवा।

0: हेलो नमस्कार, मैं वंदना आप सभी का करती हूँ स्वागत आज के हम नवा प्रोग्राम में, जहाँ आज करने वाले हैं हम कुछ मजेदार बातें, बांटेंगे आज के खास दिन से जुड़ी यादें और सुनवाएंगे मदमस्त गाने। और आज के इस सफर में दोस्तों आपको बता दूं, मेरा साथ देने वाली हैं मेरी प्यारी हमनवा वृंदा।
1: नमस्कार अभिनंदन, वृंदा का भी स्वीकार कीजिए हमनवा प्रोग्राम में दिल से वंदन। वंदना, बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपसे मिल रही हूँ। और भाई क्या हाल चाल है आपके, जरा हमें जनाब आप बताइए।
0: हमें तो कर रखा है भाई वृंदा गर्मी ने बेहाल, और क्या बताएं अपने हाल, बाकी सीधी सादी है अपनी वही चाल और यूं ही बीत रहा है ये साल।
1: क्या बात है वंदना, हम नवा प्रोग्राम में इतना शायराना अंदाज, आपका ये अंदाज हमें पसंद आया।
0: अच्छा
1: वैसे देखा जाए तो गर्मी का प्रकोप तो सबको बेहाल कर ही रहा है वंदना, धूप और गर्मी से बचना भी बहुत जरूरी है।

0: हाँ, और ऐसे में बॉडी में पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें हमारे श्रोताओं को भी, हम
1: जी
0: बार बार बताते रहते हैं। और हल्के और सूती कपड़े पहनिए और खूब आराम से गर्मियों के भी मज़े लीजिए।
1: मज़े लीजिए, लेकिन स्पेशली अपने बच्चे और बुजुर्गों का ख्याल भी रखिए, उनको भी बचाइए।
0: अच्छा वृंदा, फिलहाल अभी हमें है ज़रूरी आज के हमनवा प्रोग्राम के टॉपिक्स बताना।
1: जी ज़रूर मेरी शायरा मैडम। आज चलिए हम बताते हैं अपने टॉपिक्स की हमारे पिटारे में क्या क्या है। तो आज हम मिलकर मनाएंगे MSME डे, यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस डे।
0: जी हाँ, और अच्छी आदतें जीवन के लिए कितनी है ज़रूरी, इस पर भी करेंगे बात। और PM की अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम सीखो और कमाओ योजना पर भी होगी चर्चा।
1: महाराजा रंजीत सिंह को उनके शहीदी पर्व पर करेंगे याद।
0: और हमारी दिलचस्प बातों के साथ होगी एक बढ़िया सी रेसिपी।
1: क्या बात है वंदना। अच्छा हाँ, ये जो आपने रेसिपी का नाम लिया है ना, तो बताना चाहेंगे कि रेसिपी,
0: अभी मैंने केवल ये बताया रेसिपी।
1: हाँ, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो रेसिपी है वो एक बढ़िया होने ही वाली है, क्योंकि आज हम जो लेकर आ रहे हैं ना रेसिपी, वो पाइनएप्पल की है। बिकॉज आज है इंटरनेशनल पाइनएप्पल डे, तो मैं सोच रही हूँ इस खास मौके पर इसी की, यानी कि पाइनएप्पल की एक बढ़िया सी रेसिपी बताएं।
0: तो देखो, तुमने पाइनएप्पल का नाम लेके ना मुझे अभी से इतना लालच में डाल दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस रेसिपी तुम अभी बता डालो। लेकिन हमारे लिसनर्स भी हमारे साथ आज के हमनवा प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, और हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। और जैसे कि हमारी प्रोग्राम की रवायत है कि हम रेसिपी आखिरी में बताते हैं, तो अपने लिसनर्स को बता दें कि आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं हमसे AIR@gmail.com पर। और फिलहाल चलो सुना दें एक प्यारा सा गाना।
1: जी बिल्कुल, सुनवाते हैं एक बढ़िया सा गाना।

0: देखो कितनी सही बात है ना वृंदा, अगर हमें किसी बात की धुन लग जाए तो फिर मतलब कह सकते हो कि तुम चांद भी दूर नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: धुन लगने की देर होती है।
1: बिल्कुल,
0: वो एक गीत में भी कहा गया ना, अब हम लोग गीत सुनाते तो गीत के ही माध्यम से सारी बात करेंगे। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए।
1: वाह,
0: है ना, फिर वही शायराना अंदाज आप मान लीजिए।
1: आज क्या बात है, आज वंदना जी जो है ना वो पूरे शायराना अंदाज में यहाँ बैठी हुई हैं। आज कह सकते हैं हम शायरा वंदना।
0: शायरी दिवस मत मनाने लगना।
1: जी, तो वैसे वंदना, हम जो अभी आपने बात की है कि लोग अपनी धुन में रहते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों से नहीं चलती है, छोटे छोटे सपनों से आगे बढ़ती है।
0: हाँ,
1: यानी कि अगर देश की ताकत बनना है तो लाखों छोटे छोटे उद्यमों और उद्यमी जो हैं वो इसमें एक बहुत ही अहम भागीदारी निभाते हैं।
0: बहुत अहम भागीदारी निभाते हैं, बहुत सही कहा तुमने। अपने सपनों को अपने दम पर साकार करने वाले ऐसे ही लोगों के नाम है आज का ये दिन, MSME डे, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस डे।
1: और MSME यानी कि माइक्रो, बता दें कि सूक्ष्म उद्योग की हम बात कर रहे हैं। S मीन्स स्मॉल यानी लघु उद्योग, और M मीन्स मीडियम यानी मध्यम उद्योग, यानी कि ऐसे उद्योग जो आकार में छोटे या मध्यम हो लेकिन उनका योगदान बहुत बड़ा हो।
0: हाँ जी, फिर चाहे वो मोहल्ले की बेकरी हो, हैंडलूम यूनिट हो, लेदर उद्योग, फर्नीचर बनाने वाली शॉप, स्टार्टअप या ऑनलाइन बिजनेस, और इसी में आती है छोटी छोटी चाय की टपरियां भी, है ना, और इनमें से बहुत से MSME की ही श्रेणी में आते हैं।
1: अच्छा, अगर हमारे शहर कानपुर की बात करें वंदना, तो यहाँ तो MSME एक समृद्ध परंपरा रही है, यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं।
0: बिल्कुल वृंदा, कानपुर का नाम आते ही लेदर इंडस्ट्री, रेडीमेड गार्मेंट्स, प्लास्टिक उत्पाद, इंजीनियरिंग यूनिट्स, होजरी और हस्तशिल्प सबको याद आ जाते हैं।
1: क्या बात है, और अगर इन क्षेत्रों की यानी इन फील्ड्स की बात करें तो आज हजारों MSME इस पर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ लाखों लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगी, आज इसी तरह के एक व्यक्ति यानी कि कानपुर के उद्यमी आज हमारे साथ जुड़े हैं, कामेश वर्मानी जी, जिन्होंने MSME से जुड़कर अपने सपनों को साकार किया और अपने बिजनेस को नए पंख लगाए और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो क्यों ना उनसे बात कर ली जाए।
2: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को हमारे परिवार की तरफ से नमस्कार। मैं कामेश वर्यानी, हमारा कानपुर में उद्योग है, MSME के रहते हम लोग ने काफी उपलब्धियां हासिल की हैं। हम लोग चूंकि माइक्रोस कैटेगरी में आते हैं MSME की, CGTMSE स्कीम का हम लोग को लाभ मिला। 45 दिन के अंदर सप्लायर सब पेमेंट करने लगे हैं। इस तरह की तमाम सुविधाओं का हम लोग को भरपूर फायदा मिला है। चूंकि हम लोग ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पूरे शहर में, और सेंट्रल यूपी में पर्टिकुलरली हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो हम लोग को कोविड के दौरान भी काफ़ी लाभ मिला था MSME के द्वारा, जिसकी वजह से हम लोग अपनी ये सुचारू रूप से सप्लाई चेन जारी रख पाए थे। MSME डे कि आप सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: देखा जाए सच में इन उद्योगों से ही तो हमारा शहर, हमारा देश मजबूत बनता है वंदना।
0: बिल्कुल वृंदा, और अगर कोई अपना छोटा बिजनेस करना चाहता है तो हमारी सरकार भी बहुत सारी योजनाओं के तहत उनकी मदद करती है।
1: जी हाँ, जैसे कि हम कुछ योजनाओं के नाम भी बताना चाहेंगे, आप चाहें तो उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जहाँ से आप आर्थिक सहायता ले सकते हैं
0: और इसी से नया बिजनेस भी शुरू हो सकता है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अगर बात करें तो छोटे कारोबार के लिए इस योजना में बिना बड़ी गारंटी के ऋण की सुविधा मिल जाती है वृंदा।
1: और इसके अलावा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज भी है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, इस तरह की कई योजनाएं हैं जो चल रही हैं।
0: बिल्कुल, आपको बस देर है इसको समझने की और आगे बढ़ने की, है ना।
1: बिल्कुल,
0: आज के टाइम में ना अच्छा प्रोडक्ट बनाना ही केवल काफी नहीं है।

0: बल्कि उसे सही ग्राहक तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी देखो आज हमारी बहुत मदद कर रहे हैं और एमएसएमई के लिए नए अवसर भी यहाँ पे मिल जाते हैं बहुत।
1: अच्छा, आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात की है तो देखिए यूपीआई पेमेंट हो रही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, डिजिटल अकाउंटिंग है, मतलब कितनी सारी सुविधाएं हैं जो इस टाइम मिल रही हैं और जिसके थ्रू जो है आप कितना कुछ कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल वृंदा, एक ऐसे ही गांव की महिला की कहानी मैं बताती हूँ। अच्छा। कि उत्तर प्रदेश की इस ये एक महिला है, इन्होंने घर पर ही बहुत छोटे लेवल पे अचार पापड़ बनाने शुरू किए और शुरू में इन्होंने आसपास आस पड़ोस की दुकानों में और लोगों को यूं ही बेचा अपने आप से, माउंट पब्लिसिटी अपनी करके, और उसके बाद इन्होंने इनको किसी ने एक राय दी कि आप क्यों नहीं ऐसा करते कि इतना सोशल मीडिया का जमाना है, आप सोशल मीडिया पर अपना ये प्रचार करिए,
1: बहुत जरूरी है,
0: अच्छा मतलब इससे लाभ होगा। तो इन्होंने किसी की हेल्प लेकर और सोशल मीडिया पर अपनी चीजों की प्रचार करना स्टार्ट किया और इससे इनको ना बाहर के भी ऑर्डर मिलने लगे और आज उनका छोटा सा व्यवसाय जो शुरू किया था वो कई ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दे रहा है।
1: क्या बात है, मतलब एक तरीके से वो इंस्पिरेशन है बाकियों के लिए, है ना।
0: बिल्कुल।
1: और एमएसएमई की देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ताकत है, एक छोटे से विचार को बड़े अवसर में बदल देना। अगर कहते हैं ना वंदना कि आपके पास अच्छा आइडिया है, मेहनत करने वाले हैं आप और सीखने का जज्बा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, खुद भी रोजगार शुरू कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं।
0: और वृंदा, ये जो कहानी मैंने एक गांव की महिला की बताई, ये उन सभी महिलाओं की दरअसल कहानी है जो इस समय ऐसे रोजगार से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने छोटे से शुरू करके आज अपने बिजनेस को बहुत बहुत लंबी उड़ान दी है। तो आज एमएसएमई दिवस पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देंगे, छोटे उद्यमियों का सम्मान करेंगे और आत्मनिर्भर भारत की पहचान जो है वोकल फॉर लोकल, इसकी भावना को आगे बढ़ाएंगे।
1: और अभी फिलहाल हम भी आगे बढ़े एक बढ़िया से गाने के साथ।
0: हाँ बिल्कुल।

0: कहते हैं नैन सपनों से भरे ही होने चाहिए, तभी वो ज्यादा सुंदर दिखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: है ना। अभी फिर बोलोगी शायरी कर रही हैं आप।
1: लेकिन नहीं, बिल्कुल सही बात कही है आपने। हाँ। चाहे शायराना अंदाज में क्यों ना कही हो।
0: हाँ। तो नैनों में सपने होने भी चाहिए, और साथ ही साथ नैन खुले जब हो तब अच्छे से खुले भी होने चाहिए, जिससे हम अपने आसपास होने वाली गतिविधियों को और समाज में हमारे लिए कहाँ क्या अच्छा चल रहा है, कहाँ ऐसा कुछ चल रहा है जो हमें लाभ दे सकता है, हमारे हाँ। जीवन की उन्नति कर सकता है, उस पर भी हमें नजर रखनी चाहिए।
1: बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ कि आप किस ओर इशारा कर रही हैं।
0: हाँ। तो अब मैं इशारा जो कर रही हूँ वो मैं बात करने जा रही हूँ अल्पसंख्यकों के लिए, जो प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम है उसकी बात मैं करने जा रही हूँ।
1: जी।
0: और दोस्तों आपको बता दें कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम है वो एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें भाग लेने वाले मंत्रालयों या विभागों की विभिन्न योजनाओं और पहलों को शामिल किया गया है, और इनका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि 6 केंद्रीय अधिसूचक अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित और कमजोर वर्गों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के समान अवसर मिल रहे हैं या नहीं, और वो देश के समग्र आर्थिक सामाजिक विकास में योगदान दे सकें, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। और इसी इसकी अब जो बाकी के एम्स हैं वो बताएंगी वृंदा।
1: जी बिल्कुल, और हम बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के तहत शिक्षा, आजीविका, आवास, सुरक्षा से जुड़े 15 पॉइंट्स की जो हम अभी बात कर रहे थे ये शामिल हैं, और इन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है,
0: और इन्हीं 4 कैटेगरीज में सब कुछ शामिल हो जाता है जिससे किसी भी व्यक्ति विशेष की उन्नति जीवन में हो सकती है। जैसे शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना, इसमें हम कह सकते हैं ICDS सेवाओं की उपलब्धता, जैसे एकीकृत बाल विकास सेवा है उसके तहत आंगनवाड़ी के केंद्रों के माध्यम से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषाहार और स्वास्थ्य सेवाएं देना, जिसकी पहुंच अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में सुनिश्चित की जाती है।
1: समग्र शिक्षा अभियान, जो हम सभी जानते हैं कि अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों में स्कूल खोलने की योजना है।
0: हाँ, और भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष भाषाओं के प्रसार के लिए शिक्षकों की भर्ती करना और अन्य संसाधन उपलब्ध कराना।
1: छात्रवृत्ति योजना यानी कि प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मैट्रिक के थ्रू
0: मैट्रिक
1: बच्चों को, मैट्रिक का मतलब भी बता देते हैं, इसका मतलब होता है कि जो छात्रवृत्ति योजनाएं हैं उसके तहत हम लोग बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए ऋण उपलब्ध करवाते हैं।
0: हाँ, मेरिट का मीन्स हम सुनते आए हैं हमेशा।
1: हाँ।
0: और इसमें छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन किया जाता है, और पारंपरिक शिक्षण संस्थाओं का आधुनिकीकरण भी इसमें ही शामिल है।
1: जी,
0: और साथ ही है आर्थिक अवसर और रोजगार अवसरों में समानता, ये जो दूसरा इसका वर्ग बांटा गया उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं वृंदा, बताइए।
1: हाँ बिल्कुल बताएंगे हम। सबसे पहले इसमें आता है स्वरोजगार हेतु ऋण, यानी कि अगर आप अपना कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम की ओर से आप उसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं, और आर्थिक सहायता

0: आपको उपलब्ध कराई जाएगी
1: और बहुत ही रियायती दरों पर ये ऋण होते हैं बिल्कुल। और कौशल विकास भी इसी के अंतर्गत शामिल किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना यानी DDU GKY जो योजना है, इसके अन्य योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक युवाओं की रोजगार की क्षमता बढ़ाना, क्षमता कैसे बढ़ेगी अब कोई पूछ सकता है, तो हम कह सकते हैं कि उनके कौशल को विकसित करके, मतलब उनको कोई नई चीज सिखा कर और उसके बाद उनको इस योग्य बनाना कि या तो अपने आप से अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके या फिर कहीं कोई चीज ऐसी हो रही है पहले से कोई फैक्ट्री या कुछ भी है उसमें शामिल हो सके अपनी सेवाएं।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इसी के साथ हम बताना चाहेंगे कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत भी आप यानी कि जो हमारे अल्पसंख्यक युवा हैं और महिलाएं हैं उनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है।
1: बिल्कुल, ये योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना आपने बता दिया। और सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए सुनिश्चित रूप से अल्पसंख्यक समुदाय को निष्पक्ष और पर्याप्त भागीदारी भी मिले। और अब तीसरा सेगमेंट ये आता है कि जीवन स्तर में सुधार कैसे किया जाए,
0: और ये सुधार कई तरीकों से होता है। जैसे आवास योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है जो ग्रामीण और शहरी के दोनों तौर पर, और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत भी बहुत कुछ दिया जा रहा है।
1: और इसमें पिछड़े क्षेत्रों में अस्पताल, स्कूल, कौशल केंद्र, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। और जो चौथा इसका वर्ग बांटा गया है वो है सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव का। इसके लिए सांप्रदायिक दंगों और हिंसा को रोकना, प्रभावितों को मुआवजा देना, राहत देना और कानून व्यवस्था को मुस्तैद करना है और इनकी कड़ी निगरानी रखना है कि सब जगह सब कुछ सही चल रहा है या नहीं।
0: अच्छा वंदना, अभी हम बात कर रहे थे MSME डे की, तो MSME डे यानी कि अपना एक व्यवसाय अगर कोई व्यक्ति शुरू करना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या क्या करना चाहिए, हमने कुछ योजनाओं के बारे में भी बता दिया।
1: वो इससे ही देखिए ना संबंध रखती है कहीं ना कहीं, तो हमने जो बताई चीजें जिनसे ऋण उपलब्ध होता है बहुत ही रियायती दरों में उसमें जा सकते हैं।
0: और एक ऐसी ही योजना है 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आती है, सीखो और कमाओ योजना। सीखो और कमाओ योजना के बारे में थोड़ा सा हम बता दें तो मुझे लग रहा है हमारे युवा आगे बढ़ सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, आप बताएंगे कि मैं बताऊं?
0: हम दोनों मिलके ही बता देते हैं।
1: तो साथियों ये भी एक कौशल विकास योजना है जिससे आप अपना हुनर बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हुनरमंद बन सकते हैं। 14 से 35 वर्ष के अल्पसंख्यक युवाओं की मॉडर्न और पारंपरिक कौशल का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार या फिर रोजगार के अवसर देती है ये योजना, और ये अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है।
0: और ये भी बता दें कि न्यूनतम योग्यता इसमें क्या है, 5वीं या 8वीं पास होना जरूरी है।
1: बहुत ही मतलब मिनिमम सी रखी गई है इसमें, मतलब कोई भी ये नहीं, कोई भी समाज का वर्ग हमारा ये नहीं सोच सकता कि अरे हम तो पढ़े लिखे नहीं है तो हम क्या ही कर सकते हैं समाज में, आपका भी योगदान, समाज में आपका भी योगदान हो सकता है। भले ही आपने मोटी मोटी किताबें ना पढ़ी हो लेकिन आपने कौशल का विकास करके आप समाज में बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। और प्रशिक्षण का प्रकार अगर बता दें तो मांग आधारित कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे जिस टाइप का मार्केट हो ये कह सकते हैं, जिसमें हॉस्पिटैलिटी आता है, सॉफ्टवेयर, IT, टेक्निकल ट्रेड, पारंपरिक शिल्प और अन्य उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है और अलग अलग प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है।
0: अच्छा अब रोजगार की गारंटी कैसे होती है वो भी बता दें।
1: बिल्कुल,
0: अब जैसे आपको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उसके बाद प्रशिक्षण के बाद आप जितने सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं उसी के उसके तहत ही आपको संबंधित एजेंसी द्वारा नौकरी दी जाती है, आपको इंटर्नशिप दी जाएगी और उसके आगे फिर आप और आगे बढ़ सकते हैं।
1: और वृंदा मैं यहाँ पे ये भी एक बात बता दूं कि इसमें से ना जो वहाँ पर ये कौशल प्रशिक्षण ले रहे होते उनमें से ना अधिकांश को नियोजित कर ही लिया जाता है।
0: हाँ ये बहुत अच्छी बात है,
1: अच्छी बात है।
0: जी जी जी,
1: तो बस आपका काम ये है कि आप जिस भी स्ट्रीम में शामिल हो उसमें एकदम मन से जी जान से लग जाइए और अच्छा सीखिए।
0: बिल्कुल, अच्छा मुझे लग रहा है वंदना हमारी इस जानकारी से हमारे जो लिसनर्स हैं वो जरूर कुछ ना कुछ लाभ लेंगे। और अभी फिलहाल एक बढ़िया से गाने से हमारे श्रोताओं को एंटरटेन कर दिया जाए।
1: बिल्कुल।

0: वंदना, इस टाइम सब बढ़िया चल रहा है, यानी कि हमारे टॉपिक्स जो है बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, और हम बता दें कि आप हमनवा प्रोग्राम इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं वंदना और वृंदा के साथ ओनली ऑन 102.2 एफएम रेनबो कानपुर।
1: और साथियों, आज सिख साम्राज्य के पहले महाराजा महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, और इनको हम शेरे पंजाब भी कहते हैं। तो अब थोड़ी सी बात श्रद्धापूर्वक इनके लिए भी हो जाए
0: जी,
1: और एकदम नाम अनुरूप ही शेरों की तरह ही आप निर्भीकता, साहस और देश प्रेम से पूर्णतया लबरेज थे। रणजीत सिंह महाराजा ऐसे व्यक्ति थे साथियों, जिन्होंने पंजाब को एकजुट किया और अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के आसपास भी भटकने नहीं दिया। आपने वर्ष 1801 से 1839 तक लगभग 38 वर्ष शासन किया और 1839 में ही 58 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था।
0: हम बताना चाहेंगे कि महाराणा रणजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और पेशावर समेत इन्होंने अब जो पाकिस्तान का एक क्षेत्र है पश्तून क्षेत्र, वहां पर राज्य किया था।
1: और ये पहली बार था वृंदा जब पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम ने राज्य किया था। तो महाराजा रणजीत सिंह ने ही सिख खालसा सेना का उसी वक्त गठन भी किया था
0: और अपने राज्य में अपनी शिक्षा और कला को इन्होंने काफी बढ़ावा भी दिया था। और इनका जो सूबा था वो धर्म निरपेक्ष था और इन्होंने हिंदुओं और सिखों पर लगने वाले जजिया कर पर रोक लगाई थी।
1: जी हाँ, और महाराजा रणजीत सिंह ने ही अमृतसर के हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारे में संगमरमर लगवाकर स्वर्ण मढ़वाया था और तभी से इसको हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं और इसी नाम

0: से जानते हैं।
1: और पता है वंदना, बहुमूल्य कोहिनूर हीरा जिसकी हम लोग बात करते रहते हैं, हमारे भारत का है और ये इन्हीं के खजाने की रौनक था।
0: हाँ, और जब महाराज का निधन हुआ तब इनकी समाधि लाहौर में बनवाई गई और तभी से अंग्रेजों का ना पंजाब पर शिकंजा कसना शुरू हो गया था वृंदा। और 1849 में अंग्रेज सिख युद्ध के बाद पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य का जब अंग बन गया तब कोहिनूर को विक्टोरिया को उपहार में दे दिया गया था।
1: और इनके बहुत सारे कार्य जो हैं वो भी हम बताना चाहेंगे, जैसे आधुनिक और शक्तिशाली सेना जिसे हम फौजे खास कहते हैं और जिसमें फ्रांसीसी और इटालियन जनरल भी थे।
0: ये बहुत शान की बात है कि
1: वो इन्होंने बनाई थी,
0: इन्होंने बनाई थी और इसमें फ्रांसीसी और इटालियन जनरल्स थे। और एशिया की दूसरी ये सर्वश्रेष्ठ सेना थी और इन्होंने इसमें महाराजा रणजीत सिंह ने एक बहुत अच्छे तोपखाने का भी निर्माण किया था।
1: और अभी हम बता ही चुके हैं कि धर्म निरपेक्षता की ओर ये चलते थे, तो स्वयं को खालसा का सेवक भी ये मानते थे,
0: मंदिरों में बहुत दान देते थे और न्यायप्रिय शासन और जन कल्याण

0: सर्वश्रेष्ठ सेना थी और इन्होंने इसमें महाराजा रणजीत सिंह ने एक बहुत अच्छे तोपखाने का भी निर्माण किया था।
1: और अभी हम बता ही चुके हैं कि धर्म निरपेक्षता की ओर ये चलते थे, तो स्वयं को खालसा का सेवक भी ये मानते थे,
0: मंदिरों में बहुत दान देते थे और न्यायप्रिय शासन और जन कल्याण के लिए बहुत लोग इनको बहुत प्रेम करते थे
1: जी।
0: तो आज हम महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा से नमन कर रहे हैं।
2: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए,
3: भारत ये रहना।

मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बा

मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए।

0: 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर आप जुड़े हुए हैं एफएम रेनबो कानपुर के साथ और इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम हम नवा वृंदा और वंदना के साथ।
1: वृंदा, कुछ देखो कुछ मोबाइल में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है क्या? मतलब वाईफाई कनेक्ट नहीं है या कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्या है
0: आज के टाइम में? वंदना, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जरा सा भी इंटरनेट ना आए तो हम सभी ऐसे परेशान हो जाते हैं कि
1: जी, जैसे घबराने लगता है ना?
0: ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है लाइफ में जिसको हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते
1: हैं। कितनी घबराहट होने लगती है ना, इधर उधर छटपटाते हुए घूमने लगते हैं, आप सभी को देखिए।
0: हाँ,
1: एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है ये।
0: और अभी मैं रिसेंट का एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी कि अभी हम लोग बाहर गए थे आउट ऑफ स्टेशन और हमारे घर पर वाईफाई नहीं आ रहा था, वन वीक के अप्रोक्स नहीं आया था। तो हमारे जो बाकी घर वाले जो यहाँ थे वो इतना ज्यादा परेशान हो गए कि आप सोच सकती है कि अगर वाईफाई ना हो आज के टाइम में तो क्या होगा,
1: जिंदगी ठहर सी जाती है।
0: बिल्कुल,
1: जबकि जिंदगी के लिए कहा जाता है कि जिंदगी कभी नहीं रुकती, बस चलती रहती है, लेकिन वाईफाई ना हो आजकल तो जिंदगी ठहर जाती है,
0: हाईफाई नहीं लगती।
1: ये बात एकदम सही कही कि अगर वाईफाई नहीं तो जिंदगी हाईफाई नहीं
0: जी।
1: तो चलो वृंदा, आज ज्ञान विज्ञान सेगमेंट में हम बता देते हैं वाईफाई और लाईफाई होता क्या है।
0: बिल्कुल, हमारे लिसनर्स को हम थोड़ी सी एक जानकारी देना चाहेंगे इसके बारे में। वाईफाई, हम जैसा सभी जानते हैं कि वायरलेस फिडिलिटी, और लाईफाई यानी कि लाइट फिडिलिटी। तो वाईफाई के बारे में अब वंदना बताएंगे कि होता क्या है।
1: दोस्तों, वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी, जैसा कि बताया वृंदा ने, एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक है जो कंप्यूटर, मोबाइल और हमारे अन्य उपकरणों में बिना किसी तार से इंटरनेट उपलब्ध कराती है, और इसकी वर्किंग होती है राउटर के थ्रू। राउटर रेडियो तरंगों के माध्यम से डेटा को हवा में ट्रांसमिट करता है, और ये जिसे हमारे डिवाइसेस जो हैं वो रिसीव करते हैं, और हम कुछ भी इंटरनेट में देख सुन सकते हैं। और इनका यूज है वृंदा घरों में, ऑफिसेज में, स्कूल्स में, बैंक में, और बहुत जितने सारे संस्थान हैं हमारे, आप पोस्ट ऑफिस चले जाइए, बैंक चले जाइए, कहीं स्कूल चले जाइए, किसी भी और हॉस्पिटल, सब जगह केवल वाईफाई से ही आपको सब व्यक्ति जुड़े मिलेंगे। और अगर कोई वैसे कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहा होगा तो किसी कोने पे बैठकर अपने मोबाइल में
0: ये बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम में कि आप घर में भी अगर बैठे एक रूम में भी होंगे तो अगर चार मेंबर्स है तो चारों लोग मोबाइल पे लगे होंगे।
1: वाईफाई ने सबको बहुत
0: लेकिन इस जगह पर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि लाईफाई भी जो है ना उसकी इम्पोर्टेंस भी कम नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: लाइट फिडिलिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि ऑडियो उपकरणों में इसका यूज किया जाता है, जैसे कि टेक्निकल स्टैंडर्ड ये बताता है हमारे ऑडियो सिस्टम्स का, और कितनी बेहतरीन और सटीक तरीके से ओरिजिनल वॉइस आप तक पहुंच जो रही है ना, वो भी एक तरीका है लाईफाई का ही, जो आपके घरों तक, आपके रेडियो सेट्स तक जो वॉइस पहुंच रही है।
1: बिल्कुल, और इसकी वर्किंग, इसकी लाईफाई की जो वर्किंग होती है वो बेहतरीन ऑडियो एम्पलीफायर और डॉल्बी तकनीक का उपयोग इसमें किया जाता है, ताकि असली रिकॉर्डिंग जैसी क्लियर और नेचुरल आवाज़ सुनाई दे सके। और इसके यूजेस हैं म्यूजिक सिस्टम, होम थिएटर्स, स्टूडियो रिकॉर्डिंग और प्रीमियम हेडफोन्स में इनके यूजेस होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो हम आपसे ये कहेंगे थोड़ा सा वाईफाई से दूर जब होइए तो लाईफाई का इस्तेमाल करिए, गीत सुनिए भी कभी कभी, है ना?
0: बिल्कुल, और आपके एफएम रेनबो पर तो ऐसे ऐसे गीत आते हैं जो आपको रिफ्रेश करने का काम करते हैं, तो अभी आपके मूड को इनहेंस करने के लिए आ रहा है ये ब्यूटीफुल सा सॉन्ग।
1: और थोड़ी सी रेडियो की अपनी या अपने मोबाइल सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, मजा आ जाएगा।

साथी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम नवा वृंदा और वंदना के साथ, और हमारे श्रोताओं में से एक हमारे श्रोताओं हैं मोनू सेठ जी। इन्होंने और तो किसी चीज के लिए फिलहाल हमें कोई राय मशवरा नहीं भेजा, लेकिन अपने एक बहुत प्यारी सी बचपन की कुछ कहानी लिखकर भेजी है, वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। आप लिख रहे हैं, बचपन में गुल्ली डंडा खेल रहा था तो खेलते खेलते एक लड़की को आंख में लगने से बची। आज तक समझ नहीं पाया कि गुल्ली आंख पर ही क्यों भागती है। और स्कूल में क्रिकेट खेल रहा था तो गेंद को थ्रो किया और वो गेंद मैडम के सर पर लगा। दोनों जगह पिटाई हुई जमकर, और मास्टर साहब ने घर पर मम्मी पापा ने और स्कूल में मास्टर जी ने मारा। कंचा खेला तो शिकायत मास्टर साहब तक जाती थी और उसके लिए मुर्गा बनाया जाता था। और पेड़ पर चढ़कर आप खेलते थे पाकिल्लो। अरे भाई, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। मैंने कभी खेला नहीं, क्या पेड़ पर क्या ही चढ़ूंगी। और अचानक पेड़ टूटा और दोस्त का हाथ भी टूट गया। उसमें भी खूब बदनामी और पिटाई की बदनामी हुई और पिटाई करी नाना जी ने। अब क्रिकेट खेलता हूँ, वॉलीबॉल खेलता हूँ और बच्चों को भी क्रिकेट और वॉलीबॉल खिलवाता हूँ, साथ साथ आनंद आता है। और आखिर में इन्होंने बहुत एक वेदना अपनी व्यक्त करी है। वृंदा कह रहे हैं, करना अच्छा चाहता हूँ लेकिन उसका उल्टा हो जाता है। तो भैया मोनू जी, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि देखिए, आप अगर ये सोचकर अपने मतलब आपके इंटेंशन अच्छे हैं और आप अच्छा कुछ कर रहे हैं तो उसको करते रहिए। अब जो, और इसके पहले अभी हम लोगों ने ये भी बात करी थी कि आंखें सपनों से भरी होनी चाहिए लेकिन आंखें खुली भी होनी चाहिए। जब हम रात को सपने देखे जाते, जब हम सुबह जग रहे हैं तब हमें आंखें खोल

0: रहना चाहिए। अब अगर किसी के आंख के पास गुल्ली लग गई, आप उससे माफी के अलावा कुछ नहीं मांग
1: कुछ
0: सकते।
1: नहीं। कभी कभी कहते हैं ना कि हाँ परिस्थिति ऐसी बन जाती है, हम करना नहीं चाहते।
0: हाँ, उस गुल्ली को बेचारी को क्या पता था मुझे किसकी आंख में लगनी है, और वो तो बस लग ही जाती है। और
1: मजेदार इनकी स्टोरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी वेदना उसमें व्यक्त हो रही थी।
0: लेकिन इसको मैं पॉजिटिव थोड़ा सा कर दूं कि अब अगर आप को मम्मी पापा से मार पड़ी और आपके नाना जी ने आपकी पिटाई करी, आप तो वो आप ना इस समय अपने बच्चों को बताइए और बताइए कि हम कितने अच्छे लोग हुआ करते थे, जो अपने बड़ों का कितना आदर करते थे, और आज भी हम उनकी पिटाई को कितनी शान से अपने बच्चों से बताते हैं, और कितना अच्छा लगता है कि हम बच्चों अच्छा बच्चों के रूप में हम कितने अच्छे थे,
1: है ना। अच्छा, इसी तरीके से अच्छी अच्छी आदतें जो हमारे पेरेंट्स हमारे बड़े हमें सिखाया करते थे,
0: वो जीवन भर याद रहती हैं।
1: तो हमें अच्छी आदतें अपनाना चाहिए।
0: बिल्कुल, क्योंकि हमारा भविष्य ही बड़े फैसलों पर नहीं है, हमारी रोज रोज की छोटी छोटी आदतों पर ही डिपेंड करता है। वृंदा,
1: बिल्कुल सही कह रही हैं वंदना आप। और देखा जाए तो सुबह के टाइम पर उठना, समय पर खाना, किताब पढ़ना, एक्सरसाइज करना या हर दिन कुछ नया सीखना, ये छोटी छोटी आदतें ही जीवन में बड़ा बदलाव तो लेकर आती ही हैं और हमें आगे भी बढ़ाती हैं।
0: अच्छा वृंदा, तुम मुझे बताओ, तुम्हारी कोई ऐसी आदत है जिसे तुम्हें मतलब अपनाने में बहुत टाइम लग गया हो?
1: हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। वैसे कहना चाहूँगी कि हाँ, एक ऐसी आदत थी मेरे अंदर। कई बार ऐसा होता था कि मैं कुछ काम कल पर टाल देती थी, फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इससे तो वो काम टलता ही चला जा रहा है। फिर मैंने डिसाइड किया कि सबसे ज़रूरी काम हर दिन सबसे पहले करूँगी, और धीरे धीरे करके सारे काम सिस्टमैटिक वे में होने लग गए।
0: बिल्कुल, यही तो खास बात होती है। अच्छी आदतों को जो है हम एक दिन में कोई नहीं ग्रैब कर सकते, है ना।
1: बिल्कुल,
0: रोज थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करते रहने से और सेम टाइम पर प्रैक्टिस करते रहने से वो हमारे अंदर समा जाती हैं और हमारी पहचान बना देती हैं।
1: सच में वंदना। और अच्छा, एक अभी ना रिपोर्ट आई थी अभी हाल ही में, उसमें साइकोलॉजिस्ट ने ये भी कहा था कि किसी नई आदत को रेगुलरली अगर आप अपनाते हैं, मतलब कई दिन तक अगर आप रेगुलरली उसको करते रहते हैं, तो नई शुरुआत और उसको कंटिन्यूटी में रखना बहुत आसान हो जाता है।
0: और मैंने तो सुना है कि जैसे लोग कहते हैं कि अगर किसी चीज को आप 21 दिन लगातार सेम टाइम पे करते हैं, तो वो आपकी आदत में आ जाती है। तो यानी अगर रोज एक घंटा व्यायाम हमें मुश्किल लग रहा है कि भाई बहुत सारे काम हमारे उस पेंडिंग हो जाएंगे, तो शुरुआत सिर्फ 10-15 मिनट से कर लीजिए, और लेकिन रोज उसी टाइम पर अगर हम करेंगे तो वो 15 से 20 मिनट कब हो जाएगा, 20 से 25 कब हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा और एक आदत बन जाएगी।
1: अच्छा, एक वैसे वंदना और आदत है जो आजकल तेजी से बढ़ रही है, कौन सी बताओ? हर 5 मिनट में मोबाइल चेक करना।
0: ये तो बहुत बीमारी हो गई है, और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, ये हम ही लोगों पे हम ठान ले अगर तो कुछ भी मुश्किल नहीं है वृंदा। लेकिन अब ये ना एक जरूरत बन गई है ना। क्या होता है कि सब बैंक के काम या पढ़ाई से संबंधित कुछ भी है, सब कुछ मोबाइल पे ही भरा हुआ।
1: नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे कई बार होता है ना, हम कोई मैसेज अगर टोन एकदम से हुई या फिर ब्लिंक हुआ, तो हम बस सोचते हैं 2 मिनट बस देख लेते हैं, और देखते देखते आधा घंटा बीतती है और हमें पता ही नहीं चला।
0: बिल्कुल, तो इसका ना एक इजी तरीका है कि मोबाइल से छुटकारा पा लीजिए आप। कैसे? कि पढ़ाई या काम के टाइम पर मोबाइल को या तो आप साइलेंट मोड पे रखिए या फिर अपने से थोड़ा दूर रखिए।
1: बिल्कुल, ऐसा कर सकते हैं।
0: अच्छी आदतें अपनाने के और भी तरीके हैं, तो
1: ये भी बताते चले।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों छोटी शुरुआत करिए। जरूरी नहीं है कि आप किसी काम को 1 घंटे करेंगे और आज ही करके थक जाएंगे, फिर आप सोचेंगे मैं कल से करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप किसी काम को करना चाहते तो आज 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। आज जो भी है वो आज ही हमारे हाथ में, और अच्छी उस आदत को रोज एक ही समय पर करिए, इससे आदत जल्दी बनती है।
1: अच्छा, एक चीज और है जो मैं जरूर फॉलो करती हूँ कि अपनी डायरी में मैं कुछ लक्ष्य यानी कि कुछ एम्स, कुछ गोल्स होते हैं वो लिख लेती हूँ, जिससे क्या है ना धीरे धीरे करके हमारी वो हैबिट में आ जाता है। और छोटी सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए, यानी कि अगर आपको किसी ने अप्रिशिएट किया है छोटी छोटी सक्सेस के लिए, तो आप खुश होइए। आपका जब मन खुश होगा तो आप अच्छी आदतों को धीरे धीरे करके अपना पाएंगे।
0: अच्छा वृंदा, मैं तो कहती हूँ कि ये जो सक्सेस वाली बात आपने कही, इस खुशी को ना आप उसी डायरी में कहीं ना कहीं बैक साइड पे या उसके सामने पन्ने पर लिखते चलिए, ताकि जब जब आप उसको पढ़े ना, आपको वो आदत फिर से वापस
1: मोटिवेशन
0: मिले उससे, है ना। और यही नियम पढ़ाई में भी अपनाइए, 20 मिनट से शुरू कीजिए। अभी देखिए पढ़ाई के नाम मैंने लिया तो ये छुट्टियों की याद आ रही है। घर पे बच्चे, कोई भी हॉलीडे होमवर्क बिल्कुल नियम से किसी ने नहीं किया है, सबके हॉलीडे होमवर्क सभी अधूरे हैं और स्कूल खुलने में बस कुछ ही दिन बचे हैं
1: जी,
0: है ना। तो वृंदा, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अच्छी आदतें बोझ नहीं होती, बल्कि जीवन को, पूरे जीवन को बहुत हल्का बना देती हैं, बहुत इजी वे में हम जी पाते हैं अपने जीवन को,
1: और उसका असर बहुत बड़ा हो जाता है, पता भी नहीं चलता। और एक बात ये

0: यहाँ मैं और कहना चाहूँगी कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आज अपनाई गई एक अच्छी आदत आपका आने वाला कल ज़रूर बदल सकती
1: है। क्या बात है, अब तो शायरी आपने भी कर दी वृंदा
0: जी। तो इसी बात पे एक बढ़िया सा गाना हो जाए।

0: वंदना, अब इस गाने के बाद हम देख पा रहे हैं कि बदमाश दिल भागे है और हमारा समय भी भाग रहा है,
1: और जैसा कि बदमाश दिल ठग रहा था वैसे ये गीत भी ठग रहा था कहीं ना कहीं हम लोगों को।
0: तो मुझे ऐसा लगता है रेसिपी सेगमेंट पे आ जाना चाहिए।
1: वो लालच भरी रेसिपी थी ना, वो वृंदा शुरू कर दो, पाइनएप्पल का रायता जो हम बताने वाले थे।
0: जी, तो इसकी सामग्री आपको बताएंगी वंदना।
1: तो सामग्री दोस्तों, आप भी एक कागज़ और पेन लेकर बैठ जाइए और लिखिए, अनानास बारीक कटा हुआ 1 कप चाहिए इसके लिए, दही चाहिए लगभग 1.5 कप फेंटा हुआ, और चीनी इसके लिए लगेगी 1 छोटा चम्मच, ये भी ऑप्शनल है, और भुना जीरा पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, काला नमक अपने स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो लें चाहें तो स्किप कर दें, और 1/4 छोटा चम्मच यानी 1/2 से भी 1/2 ये लाल मिर्च पाउडर लेना है, हरी मिर्च बारीक कटी हुई 1, और हरा धनिया बारीक कटा हुआ।
0: अब आपको करना क्या है, इसकी विधि बताने जा रही हूँ कि एक बोल में आपको फेटा हुआ दही लेना है, अब इसमें चीनी, काला नमक, सादा नमक डालकर अच्छे से मिला लेना है, और जैसा वंदना ने अभी बताया कि ऑप्शनल है, अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते हैं तो आप मत डालिए। उसके बाद पाइनएप्पल के जो कटे हुए टुकड़े थे वो आप मिक्स कर लीजिए, साथ ही साथ हरी मिर्च, भुना जीरा, और साथ में आप चाहें तो कुछ और इन्ग्रीडियंट्स भी मिला सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे लोग आजकल ऑरिगेनो भी मिलाते हैं तो आप डाल सकते हैं, और भुना जीरा पाउडर आप ऊपर से इसमें स्प्रेड कर दीजिए, लाल मिर्च पाउडर और ताज़े हरे धनिया से इसको सजा दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए, और फिर जब आपको खाना हो तो ठंडा ठंडा सर्व करिए।
1: ठंडक पहुंच गई मेरे पेट तक। और साथियों उसको बता दें, गर्मियों में इसके फायदे क्या हैं, गर्मियों में ताजगी के लिए अनानास सबसे बेहतरीन और फायदेमंद है, और झटपट बनता है, शरीर को ठंडक देता है, और अनानास में
0: ब्रोमेलिन एंजाइम होता है
1: और इसकी वजह से गर्मियों में पाचन शक्ति हमारी बढ़ती है,
0: और हाइड्रेशन का काम तो करता ही है, तो बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देता है, और फिलहाल एंटरटेनमेंट की कमी हम नहीं होने देना चाहते।
1: अनानास बच्चों को भी बहुत पसंद होता है, सोचो उसका रायता बनेगा तो बड़े लोग भी बड़े चाव से खाएंगे,
0: बहुत और फायदा बहुत है। तो मुझे लगता है कि जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं ना उसको खाते रहना चाहिए हमें, और उसको स्किप नहीं करना चाहिए। फिलहाल अभी हम भी लास्ट सॉन्ग स्किप ना करें।
2: हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा

0: दोस्तों वंदना लेती है विदा हमनवा प्रोग्राम से। फिलहाल तो हमनवा प्रोग्राम से वंदना और वृंदा दोनों ही विदा ले रही है, लेकिन वृंदा रहेंगे आपके साथ 3 बजे से अपने प्रोग्राम में। और दीजिए इस समय वंदना और वृंदा को अनुमति।
1: नमस्कार।

नमस्कार, 12 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की परिकल्पना को साकार कर रही है। उन्होंने कहा, इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से पार्टी सभी कार्यकर्ताओं में उनके मूल्यों और आदर्शों को समाहित करने का प्रयास कर रही है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार भी उन्हीं आदर्शों पर अमल करते हुए ऐसी नीतियों को लागू कर रही है जिनका लाभ अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच सके। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। सुरक्षा बल 3 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा से पहले गहन गश्ती तलाशी अभियान चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हाई आई शुरू किया है। इसके तहत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। प्रोजेक्ट हॉक आई के अंतर्गत यात्रा मार्ग पर हवाई निगरानी के लिए 5 ड्रोन यूनिट तैयार की गई है। अमरोहा में उप जिलाधिकारी शैलेश कुमार दुबे के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने आगामी मानसून के मद्देनजर गंगा किनारे बसे संवेदनशील गांवों का दौरा किया। इस

अधिकारियों ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और मानसून से पहले सभी आवश्यक इंतजाम पूरे करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि प्रशासन हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने ग्रामीणों से मानसून के दौरान सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत तहसील प्रशासन को सूचित करने की अपील की है। एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राहत शिविरों की स्थिति, नावों की उपलब्धता और राशन दवाइयों के अग्रिम स्टॉक की व्यवस्था समय पर दुरुस्त कर ली जाए। लखनऊ कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में फायर सेफ्टी की सघन चेकिंग जारी है। इसी क्रम में अलीगढ़ नगर निगम ने पूरे शहर में 100 नए फायर हाइड्रेट पॉइंट्स लगाने का फैसला किया है। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रोजेक्ट के तहत सभी हाइड्रेट पॉइंट्स नगर निगम की मुख्य पानी की सप्लाई लाइन से जोड़े जाएंगे। जरूरत पड़ने पर दमकल के वाहन इनसे पाइप जोड़कर सीधे पानी ले सकेंगे, जिससे रिस्पॉन्स टाइम में कमी आएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो चैनल।

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से
3: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियां, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
2: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
3: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
2: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
3: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
2: fmrainbowhelpline@gmail.com।
3: याद रखिए हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
6: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
7: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
8: ओम नमः शिवाय।
7: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
9: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
7: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।
10: श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।
11: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

107.7 एफएम रेनबो चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, 12:06 का समय हो चुका है यहाँ पर और आज विजय हाजिर है आपके साथ शनिवार की इस दोपहर 12 बजे, यानी आज फैमिली फन का मौका है। और वैसे भी जो है फैमिली जब होती है साथ तो फन अपने आप ही हो जाता है, लेकिन जब फैमिली फन की बात आती है तो बहुत सारी चीजें होती हैं। जाहिर सी बात है, गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और इन गर्मियों की छुट्टी में आपने अपनी फैमिली के साथ पूरा पूरा फन किया, चाहे वो किचन में हो, चाहे घूमने फिरने में हो, चाहे नाच गाना मस्ती हो, सब कुछ आपने किया। और ये हमें पता भी है, पता इसलिए है क्योंकि आप लोगों का जो रिस्पांस आता है उससे पता चल जाता है। लेकिन अभी कहते हैं कि स्कूल खुलने में थोड़ा समय है, बहुत से स्कूल 1 जुलाई को खुल रहे हैं, हालांकि एक आध खुल भी गए हैं और बहुत से 7 जुलाई के बाद खुलने वाले हैं। कहा जाता है कि मानसून भी जो है वो लगभग 30 जून तक आ ही जाएगा और लखनऊ में बारिश हो ही जाएगी, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है, जो ये 2-3 दिन हमारे बचे हैं, जो स्कूल में जो टीचिंग जॉब में है जो महिलाएं या जो पुरुष हैं उनके स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो यानी कि उनके मन में ये बात आने लगी है कि यार अब बस 2-3-4 दिन का समय और बचा है और उसके बाद फिर से वही सुबह उठकर जाना। और बच्चों का भी यही है, ओ माय गॉड, सुबह से फिर वही रूटीन हो जाएगा, होमवर्क करो, क्लास वर्क करो, ये करो, वो करो, दिस एंड दैट, पता नहीं क्या क्या है। तो क्यों ना 3-4 दिन जो है वो कुछ और अच्छा सा करके यादगार बनाया जाए। तो भाई आप अपनी फैमिली के साथ क्या प्लान कर रहे हैं इन 3-4 दिनों में स्कूल खुलने से पहले, क्या करना चाह रहे हैं आप, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, ये आपको मुझे बताना है ईमेल के जरिए, क्योंकि मेरी आपकी कनेक्टिविटी बनेगी तभी मजा आएगा। और मेरी आपकी कनेक्टिविटी के साथ अगर गानों का सिलसिला भी जारी रहेगा तो और भी खूबसूरत हो जाएगा कुछ इस तरह से।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना। टोल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: जी हाँ, 12:14 का समय हो चुका है। फैमिली फन प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पर फैमिली की बात हो रही है यहाँ पर। और मैंने पूछा है आपसे कि फैमिली फन में जो है, जो अब बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं जुलाई में, वैसे भी जो है आपका रूटीन चेंज होने वाला है, और बहुत सी जो है वो फीमेल या मेल टीचर हैं उनका भी रूटीन चेंज होने वाला है, तो ये जो 2-4-5 दिन जो बचे हैं उसमें आपने इन दिनों को फैमिली के साथ फन करने का, यादगार बनाने के लिए क्या कुछ प्लान कर रखा है मुझे बताइए। और अगर नहीं किया तो अभी प्लान कर लीजिए, क्योंकि मौका आज शनिवार का है और आज रविवार का है। खाने पीने की चीजों से कर लीजिए, घूमना, वैसे घूमने में तो धूप बहुत ज्यादा है इस समय, दिन में तो घूमना बेकार है, लेकिन यह है कि शाम को घूम सकते हैं आप। और इसके अलावा अगर किसी हिल स्टेशन आप आए हैं होकर, वहां की जो यादें हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं, उनको आप बांट सकते हैं, फैमिली के साथ बैठ के बातें कर सकते हैं। अच्छा, किसी हिल स्टेशन अगर आप गए हैं मुझे इन 2 महीनों में, तो मुझको जरूर बताइए कि वहां पे आपने क्या देखा और क्या खास आपको लगा, मुझको शेयर कीजिए। फैमिली फन का ये भी एक मुद्दा होता है, ये भी एक पॉइंट है कि जहां आप घूम के आए, यादें होती ना, वो यादें से जो है हम लोग अपने फैमिली के साथ फन कर पाते हैं। रिश्ते जो होते हैं ना वो बहुत मतलब बड़े कीमती होते हैं। और इसे यहां पर ब्रजेश सिंह दीपू इटौवा कैसरगंज बहराइच से इनका जो है मेल आ गया है मेरे पास, ब्रजेश सिंह जी का। गुड आफ्टरनून मिमिक्री मैन विजय सर जी, गुड आफ्टरनून सर जी, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे आप। बहुत, आप कहाँ चले जाते हैं? अरे हाँ, इतनी लंबी छुट्टी लेकर सर, एक दिन बीच में आए थे शाम के कार्यक्रम में, खूबसूरत कार्यक्रम और खूबसूरत गीत सुनाए, उसके बाद फिर चले गए। नहीं सर, मैं आ गया हूँ और अब जो है वो उम्मीद है कि बस बहुत जल्द जो है वो जल्दी आपसे मुलाकात होगी, या आपकी शिकायत जो है वो दूर हो जाएगी और अब दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा, कान पकड़ता हूँ बिल्कुल नहीं दूंगा। और बहुत अच्छा लगा आपने प्रोग्राम में मेल किया ब्रजेश सिंह जी। और बस मैंने ये पूछा है कि फैमिली फन की बात हो रही है, तो ब्रजेश जी ये भी बताइए कि अगर आप इधर कहीं घूमने गए हैं या मन में ख्याल ही आपके आया कि घूमने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या चीज़ वहाँ की अच्छी लगती है आपको, या 2-4 दिन में आप फैमिली के साथ कुछ फन करने वाले हैं, टाइम बिताने वाले हैं, तो उसको भी शेयर कीजिए, हो सकता मुझे भी मौका मिल जाए अपनी फैमिली को साथ ले जाने का, ठीक है ना? तो चलिए इसी पर एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुनवाता हूं, फिर लौट कर आता हूं।

बिल्कुल बिल्कुल, दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान दे दूं। फैमिली का कुछ ऐसा ही होता है, फैमिली के जो सदस्य होते हैं हम दिल से आत्मा से इतना जुड़े होते हैं कि उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए जो है घूमने फिरने की बात तो बहुत छोटी सी है। यहाँ पर मेरे पास शैलेश कुमार जी का मेल आया है, कह रहे हैं टाइगर पूर्णिमा की ओर से, विजय सर को नमस्कार, क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार आपको भी सर। शिकायत तो हमारी भी है आपसे कि आप जल्दी जल्दी नहीं आते हो। सर मैं जानता हूँ, माफी चाहता हूँ आपसे भी, क्या करूँ, अपनी फोटो जो है रेडियो पे डाल दूँ कान पकड़े हुए माफी चाहते हुए। और 22 जून को अपने प्रिय दोस्त के घर घूम कर आई हूँ, अच्छा पीहू के घर घूम के आई हैं, और कहीं अगर मुझे बाहर जाना पड़ेगा तो मैं अपनी फैमिली के साथ उत्तराखंड जाने का प्लान ज़रूर बनाऊंगी। अभी उत्तराखंड जो है, वैसे भी नैनीताल पैक हो गया था तो इसलिए जो है बहुत से लोगों ने जो है वो आइडिया ड्रॉप कर दिया, लेकिन ये है कि इनका ये कहना है कि फैमिली के साथ अगर घूमने का मौका मिलेगा तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, उस टाइम को मैं स्पेंड करूंगी और उसे यादगार बनाऊंगी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: करियर पर है ध्यान,
4: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
3: पॉजिटिव है फैशन,
4: क्रिएटिव है पैशन,
3: टेक्नोलॉजी में रुचि,
4: बने पर्सनालिटी ऊंची,
3: फॉलो करें ट्रेंड्स,
4: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
3: ओनली ऑन यूथ वेव।
4: यूथ की बात यूथ के साथ,
3: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
4: धड़कन लखनऊ की।
5: Keep listening to 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

आप सुन रहे हैं विजय के साथ आज फैमिली फन, जिसमें बात हो रही है फैमिली के साथ फन की। और ब्रजेश सिंह जी ने मुझे मेल करा है इटावा कैसरगंज बहराई से। अच्छा, इन्होंने अब जो है टॉपिक पे मेल किया है। सर, मेरा प्लान है नेपाल जाने का, कोशिश में लगा हुआ हूँ। खेत में गन्ने की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस समय सिंचाई बहुत करनी पड़ती है। बात तो सही है, हम अपने बहराइच के महाराजा सुहेल देव चितौरा झील गए थे घूमने, मजा आ गया। अच्छा, क्या खास बात है उस झील में, हमको बताइए। आप लिख के ही बता दीजिए मेल पे, दो लाइन में, ये जरा हमें भी पता चलेगा, हम कभी गए नहीं तो। महाराजा सुहेल देव चितौरा में क्या ऐसा खास है, और अगर घूमने जाऊंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। अरे जरूर बताइए साहब, क्या बात है। पंकज उदास की आवाज में ना कचरे की धार से शुरुआत कार्यक्रम की, 4 घंटे का भरपूर

हमने मजा आ गया। अच्छा क्या खास बात है उस झील में हमको बताइए, आप लिख के ही बता दीजिए मेल पे दो लाइन में, ये जरा हमें पता चलेगा, हम कभी गए नहीं तो महाराजा सुहेलदेव चित्तौरा में क्या ऐसा खास है, और अगर घूमने जाऊंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। अरे जरूर बताइए साहब, क्या बात है। पंकज उदास की आवाज में ना कचरे की धार से शुरुआत कार्यक्रम की, 4 घंटे का भरपूर मनोरंजन से कार्यक्रम भर गया है। मेरी उम्मीद है कि सभी सॉन्ग की तारीफ कैसे करूं, बस एक एक सॉन्ग चुन चुन कर बजा रहे हैं आप, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू ब्रजेश जी। और ये सुहेल देव चित्तौरा झील की खास बात क्या मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं किसी किले की या झील की या किसी पुराने मॉन्यूमेंट्स की जानकारी हासिल करने में। इसके अलावा नाजिम रेन जी, गाना बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं। थैंक यू नाजिम जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय दिया आपने मुझे। अहमद नवाब जी नमस्ते, कैसी हैं आप? अरे बड़े दिनों बाद आपसे मुखातिब हुआ हूं भाई, क्या बात है। संडीला से इन्होंने किया है, हेलो डियर विजय सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूं अहमद, बहुत अच्छा हूं, बहुत दिनों बाद आपको दोपहर में सुन रही हूं। 12 से 4 तक मैं खूब हंसने वाली हूं। बिल्कुल, बस मैं आपको 12 से 4 तक हंसा पाऊं ये खुदा से दुआ कर रहा हूं। विजय सर आए हैं क्योंकि 90s के बेहतरीन गाने साथ लाए हैं। विजय दीनानाथ सिंह चौहान आए हैं, मेरे दादाजी का कॉलेज खुलने वाला है। अरे अच्छा, मैं तो कहीं घूमने नहीं गई, रोड तक भी नहीं गई, बहुत गर्मी है। हाँ ये बात तो सही है, अगर मुझे कोई घुमाने ले जाए अपने पैसों से तो लखनऊ का कोना कोना घूमना चाहूंगी। अरे आइए, आकाशवाणी आपको पूरा कोना कोना घुमाएगा, एक पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा आप। अरे आइए तो सही, लखनऊ में बड़ा दिल होता है हमारे लखनऊ वालों का भी, और संडीला से ज्यादा दूर भी नहीं है। बस एक मेल कर दीजिए कि आप आ रही हैं, पूरा आकाशवाणी परिवार खड़ा हो जाएगा जी, और क्या। मैनुद्दीन साहब का मेल आया है, मैनुद्दीन कोटरी खैराबाद सीतापुर से। अरे वाह, फोटो वोटो सब भेजी है इन्होंने मेल पे, क्या बात है। पेड़ों की छांव में दीदार कर रहे हैं किसी का। और ये सुन रहे, पहले तो प्यार भरा नमस्कार विजय सर, हमारे खैराबाद में धमाकेदार मेला चल रहा है। हाँ ये बात तो है, अभी अंजू जी के प्रोग्राम में भी आपने बात कही थी, और वो मेला, अरे मेले की फोटो वोटो भेजिए जरा, देखें हम भी क्या खास बात है मेले की। एमके राज साहब ने मुनेश कुमार राज जी जिला लखीमपुर खीरी से, देर से ही सही मगर आए तो, क्या रील बनाने गए थे भाई? क्योंकि हमने आपके यूट्यूब पर देखी है सर, क्या बात है। बहुत कम बनाता हूं मैं वैसे, बहुत ही कम, मैं शौक नहीं मुझे, लेकिन यह है कि बस शुभ दोपहरिया विजय कुमार श्रीवास्तव जी को। थैंक यू सर, थैंक यू, हर कार्यक्रम बेमिसाल है, सुनते सुनते हो गए कई साल। फैमिली फन में हमारा ये कहना है कि हमारे बच्चे छुट्टियों में ननिहाल गए थे, अब लौट आए हैं, आज स्कूल गए हैं, आपका भाई मुनेश कुमार राज, क्या बात है। थैंक यू सर मुनेश जी, बहुत बहुत समय दिया आपने, बहुत अच्छा लगा। वकील अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, फैमिली फन बहुत अच्छा लगता है। सलीमपुर कौन मामा के यहाँ गए थे? अरे वाह क्या बात है। लखीमपुर खीरी भतीजा बहुत घूम लाया है। अच्छा, मोहम्मद शाबान से अभी कहकर आए हैं, स्कूल का पूरा काम कर ले, छुट्टी खत्म होने वाली है, क्या बात है, बच्चों से कह के आए। और गाने अच्छे बज रहे हैं इस समय, आम के बाग में है, हवा बहुत मस्त चल रही है, घर गर्मी बहुत लगती है, पंखा गर्म हवा देता है, लेकिन बाग में जो है वो ठंडी हवा मिलती है। कुछ आप चिंता मत करो, मुझे उम्मीद है 3-4 दिन में ये हवा जो गर्म है ये ठंडी हो जाएगी अपने आप, क्योंकि अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो 30 और 1 तारीख को सीधे 33 डिग्री 32 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है अभी तो नेट पे, और मुझे लगता है कि झमाझम बारिश होगी तभी इतना जो है ये टेम्परेचर आएगा। ठीक है, टेम्परेचर जब आएगा तब आएगा, अभी गाने से थोड़ा टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं।

जी हाँ, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। फैमिली ऐसी ही होती है जिसका बार बार नाम भी लिया जाता है और उसे बार बार याद भी किया जाता है, चाहे आकाशवाणी की फैमिली हो, आपकी अपनी खुद की फैमिली हो। बाबू अंसारी जी का मेल आ गया। नमस्ते विजय सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं सर। देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से इन्होंने मेल किया। प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, थैंक यू सर। वैसे तो 12 बजे वाला प्रोग्राम कभी नहीं सुनता, ओ मगर आज आप आए हैं तो

जरूर सुना जाएगा। क्या बात है, थैंक यू थैंक यू बाबू भाई, इतना समय देने के लिए, हौसला अफजाही के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत कुमार साहब ने भी एक पिक्चर भी भेजी मेल में, क्या बात है, हैंड पाइप उसके चारों तरफ जो है महिलाएं बैठी हैं और इतना अच्छा गांव का माहौल है, क्या बात है, बहुत सुंदर। अजीत यादव, जिला उन्नाव, तहसील हसनगंज के रसूलपुर बकिया गांव से हूं, बहुत ही गरीब परिवार से। कोई बात नहीं भाई, गरीब अमीर कुछ नहीं होता है, दिल अमीर होना चाहिए, दिल में जगह होनी चाहिए। 25 वर्ष की उम्र है और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जिससे मेरी जिंदगी बदल गई। अच्छा, एक इनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट की शुरुआत 2025 से हुई है। हिंदुस्तान अखबार से पत्रिका करता हूं। अच्छा, ठीक है। और इन्होंने एक दुकान इनको मिल गई 2025 में लॉटरी से, और उससे मेहनत से इन्होंने अपना घर बनवा लिया है, शादी के बंधन में बंध गए हैं। और 2025 साल जो है, इनके कहने का मतलब है, बहुत खास रहा है, उसने इनकी जिंदगी पलट दिया। वाकई ईश्वर सभी के सामने भरी हुई थाली रखता है, और जो उस भरी हुई थाली को स्वीकार कर लेता है वो जिंदगी बना लेता है, और जो उसे ठुकरा देता है वो संघर्ष में अपने आप को, अपनी जिंदगी को बदल देता है। और इसके अलावा आदित्य श्रीवास्तव जी का मेल आया है, इस समय मैं आपको ऋषिकेश से सुन रहा हूं, क्या बात है, मौसम कैसा है भाई वहां का, मुझे उम्मीद है लखनऊ से तो बहुत अच्छा होगा। और ऋषिकेश में बहुत गर्मी है आई, लेकिन गंगा जी में नहाए और सारी गर्मी भाग जाती है, क्या बात है। ये मात तो माँ गंगा की विशाल हृदय है उनका, जो उनके पानी में डुबकी लगाता है उसके पाप भी धुल जाते हैं और हृदय भी द्रवित हो जाता है। लखनऊ का रहने वाला हूं, डेली FM सुनता हूं। सबसे अच्छी बात यह है कि मॉर्निंग में पुष्पांजलि प्रोग्राम से लास्ट में आप हर हर महादेव बोलते हैं, तो पूरा दिन बहुत अच्छा हो जाता है, क्या बात है। ये आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, यय्यागंज गुरुद्वारा लखनऊ 3, इन्होंने यहां से मेल किया है और इस समय ऋषिकेश में है, क्या बात है। बहुत संभाल के डुबकी उबकी लगाइएगा, नहाइए धोइएगा भाई, और गंगा का प्रवाह बहुत तेज होता है, बहुत करंट होता है पानी में, तो संभले रहिए। फिलहाल 12:49 का समय, एक लड़की मुझे अनजानी सी सामने दिख रही है, एक लड़की थी अनजानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। ये तो किसी और फिल्म का डायलॉग है, हाँ यहाँ तो गाना कुछ कुछ होता है का लगा है भाई।

12:54 का वक्त हो गया है, अभी तो जाने का समय आया, नहीं जाने का समय नहीं आया, अभी तो वाइंड अप करने का समय आया। चलिए वाइंड अप तो करूंगा, लेकिन अशोक कुमार जी का मेल आ गया है। अशोक राज जी कहते गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं? बहुत अच्छा हूं सर, आप कैसे हैं? पता है रायपुर, उदारा, मितौली, लखीमपुर खीरी सॉन्ग अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया सर, बस आप ही के लिए सॉन्ग है, सब ये सब आपकी ही पसंद है। इसके अलावा ये कहते हैं नमस्कार दोस्तों, गर्मी की दोपहर है, सूरज आग बरसा रहा है और अच्छा एक छोटा सा बच्चा घर के बाहर निकला तो उसने देखा चिड़िया प्यास से इधर उधर भटक रही है। बच्चे ने तुरंत एक कटोरे में पानी भर कर बाहर रख दिया। थोड़ी देर में चिड़िया आई, पानी पिया और चहचहाने लगी। उसे देखकर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या बात है जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और ये कहते हैं कि भाई अच्छा कार्यक्रम को प्रसारण की भी इन्होंने जो है मांग की है। ये कहते हैं कि भाई नागेश कुमार, मैं चाहता हूँ आकाशवाणी लखनऊ पर किसानों आम लोगों के लिए पौधों की देखभाल, खेती की नई तकनीक, मौसम के अनुसार फसल प्रबंधन, खाद उर्वरक के सही उपयोग, फल सब्जियों की खेती पे अधिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, करे जाते हैं। और हमारा तो बागवानी जो है FM रेनबो पे गुड मॉर्निंग लखनऊ में एक सेगमेंट ही पूरा होता है, उसमें हम बताते हैं और इसके अलावा लगातार जो है वो कार्यक्रम पेश किए जाते हैं। फिलहाल चलिए अब इस प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करता हूं। अगले प्रोग्राम होठों पे तेरी बात पर भी आपसे मिलता हूं। कुछ बच्चों से रिलेटेड टॉपिक जो है वो मेरे दिमाग में चल रहा है 2-3 दिनों से, आज वही आपसे शेयर करने वाला हूं मैं। फिलहाल एक बहुत ही प्यारा से गीत सुनाता हूं, फिर लौट कर आता हूं।

नमस्कार। दोपहर के 1 बजे सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज गौतम बुद्ध नगर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में स्थापित होने वाली 2 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास करेंगे। केंद्र सरकार के सहयोग से विकसित हो रहा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 206 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है, जिसके विकास पर लगभग 417 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 144 करोड़ रुपए का योगदान दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन भी करेंगे। ये नया मुख्यालय लगभग 390 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री, सांसद, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य औषधि सुधार, संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और प्रताप राव जाधव भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का प्राथमिक विद्यालयों के साथ को लोकेशन और वैज्ञानिक मैपिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकृत लाभ सुनिश्चित होने से बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता, बच्चों के सीखने के परिणामों को नई मजबूती मिलेगी। इस अभियान का उद्देश्य विद्यालय पूर्व तैयारी की सुदृढ़ बनाना, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी एकीकरण सुनिश्चित करना है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में फायर सेफ्टी की सघन चेकिंग जारी है। इसी क्रम में अलीगढ़ नगर निगम ने पूरे शहर में 100 नए फायर हाइड्रेट्स पॉइंट्स लगाने का फैसला किया है। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रोजेक्ट के तहत सभी हाइड्रेट पॉइंट्स नगर निगम के मुख्य पानी की सप्लाई लाइन से जोड़े जाएंगे। जरूरत पड़ने पर दमकल के वाहन इनसे पाइप जोड़कर सीधे पानी ले सकेंगे और जिससे रिस्पॉन्स टाइम में कमी आएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुंदरी FM।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की।

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
1: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
0: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
1: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
0: जहां आपकी हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
1: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
0: fmrainbowhelpline@gmail.com।
1: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: Stay tuned 100.7 FM रेनबो,
3: धड़कन लखनऊ की।
4: FM रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं इस समय विजय को, होंठों पे तेरी बात प्रोग्राम यहां पर चल रहा है। और होंठों पे तेरी बात में, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके होंठों पे जो बात रहती है वही मेरे होंठों पे रहती है, तेरे मेरे होंठों पे सजे सारे गीत मिथुआ, गाना भी इस पे बना है। लेकिन यहां पर बात थोड़ा सा दूसरी है, मैटर जरा दूसरा है, थोड़ा सा जो है टॉपिक यहां पर हमारे आपके बच्चों से रिलेटेड है। अक्सर हमने देखा आजकल के बच्चे जो होते हैं, अगर उनसे किसी काम के लिए कह दो या उन्हें किसी काम को करने के लिए ये बता दो कि बेटा इस काम को अगर ऐसे कर लो तो ज़्यादा सही होगा, तो वो तुरंत जवाब देते हैं मुझे मालूम है ना, आप परेशान ना होइए, मुझे सब आता है, ठीक है। और अगर उनसे कह दो कि नहीं बेटा तुम ये नहीं कर पाओगे, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करो, तो कहीं आपको मुझसे ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, है ना, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, चाहे कंप्यूटर की बात हो, चाहे किसी काम को करने की बात हो, कोई फॉर्म भी भरना हो, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय किसी का भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं कर लूँगा, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। मैं कहूँगा भाई संभाल के उसको भरो, ऐसा ना हो कि गलत हो जाए तो रिजेक्ट हो जाए, मुझे आपसे ज़्यादा आता है, आप परेशान ना होइए। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है बच्चों का, ये क्या बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है? हमारे आपके सभी के घरों में यही कारण हो रहा है, यही बात हो रही है, मोबाइल देख के दिन भर मोबाइल में हर चीज़ गूगल पे करना, हेलो गूगल, हेलो गूगल, हेलो गूगल, है ना, ये सारी चीज़ें जो है जो बच्चों के अंदर ये जो टेंडेंसी डेवलप हो गई, क्या ये उनके भविष्य के लिए बेहतर है? ये होंठों पे तेरी बात पर मैं आपसे जानना चाहूँगा। मेल आपके लिए सामने है, आपको मेल करना है और मेल से बताइए ताकि मुझे भी कोई रास्ता जो है वो मिल सके, क्योंकि अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो जो है मुझे लगता है आने वाले समय में ये बहुत एक बड़ा गंभीर विषय बन जाएगा इसके लिए। और बहुत से पेरेंट्स जो है आज जो बेचारे इस समय की प्रताड़ना झेल रहे हैं, वो भी मुझे लगता है कि ये दिक्कतें झेलेंगे। फिलहाल इसी विषय पर आज एक घंटे बात होगी, अभी एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं गाने के साथ, फिर बात करते हैं।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक,
7: RHL Gold TMT सरिया।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव मीडियम वेव 366.3।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने आज़ाद भारत में हुकूमतों से अपील की थी कि इक्तसादी तरक्की के लिए सबसे नीचे पायदान पर बैठे शख्स के मफादात को जहन में रखकर पॉलिसियाँ बनाई जानी चाहिए।
2: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नयन का जो आधार है और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रखकर के बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। इस पूरे अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ते हुए इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य आदर्श ये संस्कार समाहित हो सके इसको ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण महाअभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया।
1: अयोध्या में श्रीराम मंदिर अतिया और चढ़ावा के मामले में मुबैना बेजाबतगियों के इल्जाम में गिरफ्तार तमाम 8 मुलजमीन को कल स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तमाम मुलजमीन को 29 जून तक जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। गिरफ्तार मुलजमीन में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू शामिल हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर तश्कील दी गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक रुकन कृष्ण मोहन की तरफ से श्रीराम मंदिर में अतियात और चढ़ावे के मुबैना गबन के सिलसिले में FIR दर्ज कराई गई थी। मुलजमीन की गिरफ्तारी के बाद प्रोसिक्यूशन अफसर KC वर्मा ने बताया कि सुभाष को छोड़कर कुल

0: 79,85,000 रुपए मुलजमीन से बरामद हुए हैं। मुलजमीन को 29 जून को इंसदादे बदउनवानी की अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने FIR के इंदराज और श्रीराम मंदिर के अतिया केस में 8 मुलजमीन की गिरफ्तारी के बाद कहा कि अकीदे के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि SIT की रिपोर्ट मौसूल होते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कल देवरिया में 465 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के 106 तरक्याती प्रोजेक्टों के अफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब के दौरान आवाम से खिताब करते हुए वजीर आला ने देवरिया में तरक्की पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रियासत के नौजवान जो पहले मुलाजमतों के लिए हिजरत करते थे अब अपनी सलाहियतों और तवानाई को अपने इलाके में दे रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में महफूज माहौल की वजह से सरमायाकारी आ रही है। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में एक प्राइवेट एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-आला ने कहा कि वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर सर्विस आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना को मुल्क में नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में 120 मिलियन से ज़्यादा लोग मुफ्त सेहत की खिदमत हासिल कर रहे हैं।
1: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। हम आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
0: तिब्बी और सेहत के शोबों में मौजूदा हुकूमत की तरक्की का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बना रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासत में पंचायत इंतखाबात में ताखीर और प्रधानों का मुद्दतकार बढ़ाने वाले हुक्म पर नाराजगी जाहिर करते हुए रियासती हुकूमत को तफसीली हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि पंचायतों का मुद्दतकार 5 बरस के लिए होता है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले आइंदा इंतखाबात हो जाने चाहिए। यह तबसरा जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की रिट पर समाप्त करते हुए किया। रिट में रियासती हुकूमत के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन अहकामात को चैलेंज किया गया है जिसके तहत उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट 1947 की दफा 12(3)(a) का हवाला देकर इंतखाबात टाल दिए गए और प्रधानों को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम जारी रखने की इजाज़त दी गई। रियासत में शदीद गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून कल रात से मशरिकी उत्तर प्रदेश के कई अज़ला में दाखिल हो जाएगा। इसके बाद 30 जून से 3 से 4 दिनों तक रियासत भर में गरज चमक के साथ बड़े पैमाने पर बारिश मुतवक्के है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
3: धड़कन लखनऊ की।

अच्छा, आजकल जो है किसी भी बात को मनवाने के लिए जो है पूरा एक माहौल बनाना पड़ जाता है। आप सोचिए कि इन गानों के जरिए मुझको भी माहौल बनाना पड़ रहा है कि कम से कम बादलों को जो है वो थोड़ा रहम आ जाए और बरस जाए हमारे लखनऊ के ऊपर या यूपी के ऊपर। तो इस तरह के गाने बजा बजा के उनको, पहले क्या होता था, पेड़ जो है आकर्षण उनका करते थे, लेकिन अभी गानों से करना पड़ रहा है, क्या बताएं। खैर, फिलहाल होटो पे तेरी बात पर विजय आज आपके साथ है और मेरे साथ बहुत सारे मेल भी आ गए हैं। सतीश अनिजा जी का मेल आया है। नमस्कार विजय भाई। भाई नमस्कार, खूबसूरत प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, थैंक यू। आजकल के बच्चे अधिकतर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, जिससे अपने परिवार से औपचारिकता ही वो निभा रहे हैं। माता पिता का तजुर्बा उनको रास नहीं आता है, ताजा अपडेट जो भी देखते हैं उस पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। बच्चों को समझना चाहिए कि माता पिता का मशवरा कभी गलत नहीं होता, उनकी ना सलाह मानना आपके लिए कभी गलत सिद्ध भी हो सकता है, अक्सर गलत ही सिद्ध होता है। परमात्मा सभी बच्चों को सद्बुद्धि दे और सही दिशा में कदम रखे, यही प्रार्थना है इनकी। सतीश जी बिल्कुल सही कहा आपने और ऐसा मेरा भी कुछ मानना है। शकील अहमद भाई ये कहते हैं, गुड आफ्टरनून विजय सर, आज का सब्जेक्ट सुनकर वाकई इस गर्मी

में दिमाग और गर्म हो गया, क्या बात है। तो ठंडा कर लीजिए, मैं गाने वैसे ही बजा रहा हूँ ठंडे ठंडे। वैसे आज के इस मोबाइल युग में बच्चों को अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस होना ठीक नहीं है। पेरेंट्स के एक्सपीरियंस को जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर पेरेंट्स कोई बात बच्चों से कह रहे हैं तो उनके फायदे के लिए कहते हैं, मगर बाप की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मां कसम, बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं तो कान के नीचे बजा देना चाहिए। विकास जी का मेल आया है होटो पर तेरी बात पर। हेलो सर, नमस्कार, विकास गांव सरी तहसील। अच्छा, आपको मैं कार्यक्रम सुगंध माटी में सुनना चाहता हूं। प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब झकास रहती है, क्या बात कर रहे हैं भैया। बिल्कुल सुगंध माटी में बहुत जल्दी आई हम, हाँ त्योहार पास, बिल्कुल चिंता नहीं करो। इसके अलावा अंजू जी का मेल आया है। हाय सर, वेरी गुड आफ्टरनून, आई एम लाइकिंग योर सॉन्ग सिलेक्शन, वांट्स टू ब्रिंग सॉन्ग्स फ्रॉम 90s एंड 2000s जरा, एंड हैड अ रिक्वेस्ट दैट व्हेनेवर एनी होस्ट यू ऑर्जे टेल फोन नंबर इन देयर प्रोग्राम फॉर द पब्लिक टू कॉल फॉर सॉन्ग फेस्ट एंड डॉक्टर कंसल्टेशन प्रोग्राम, देन प्लीज स्पीक द फोन नंबर इन इंग्लिश, ओके, ऑल्सो अलॉन्ग साइड हिंदी एंड रिपीट इन मेनी टाइम्स एंड लिटिल स्लो दैट एनी वन कैन डायल ईजिली। बिल्कुल अंजू जी, आपका सजेशन मैंने सुन लिया है और ऐसा ही होगा, बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली नंबर बोले जाएंगे और कोशिश होगी कि आपकी बात जो है वो मानी जाए। और गूगल इज गुड एंड बैड फॉर किड्स एंड एडल्ट आल्सो, बट बच्चों का सवाल है तो भाई पहले के पेरेंट्स अपने बच्चों को डंडे की नोक पे रखते थे और वो आज तक आगे भी सीधे रहेंगे, और वो बच्चे आज जो मिलेनियल खेलते हैं आप और हम, वो अपने बच्चों को डंडे की नोक पे नहीं जबकि पलकों की छांव में रखते हैं, जिस कारण बच्चों में डिसिप्लिन और आदर सम्मान सिंपैथी बहुत कुछ मिसिंग है। जो बच्चों को वो भी आज के प्यार के साथ साथ डंडे की कुटाई भी बहुत जरूरी है, इसीलिए वो सीधे लाइन पर रहेंगे, वरना राजा बेटा पापा की परी और माँ के मगरमच्छ किसी काम के नहीं रह पाएंगे, ना अपने लिए ना अपनी फैमिली के लिए ना पेरेंट्स के लिए। उनको खुद के खुद से सीखने दें, उनके ऊपर नजर भी रखें ताकि उनको फील हो कि वो अंडर सर्विलांस हैं, उनमें थोड़ा डर होगा जिससे वो अपनी हद में और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही से समझेंगे, कैसे कहां किससे क्या और कैसे बिहेव करना है। क्या बात है, इतनी गहराई वाली बात आपने इस मेल में पढ़ी है, मजा आ गया। मतलब लगा मुझे कि एक घंटा इस मेल में सार्थक हो गया मेरा, जो आपने कही बिल्कुल सही बात कही है। और इसके अलावा गीता सेठ जी ने बारिश का इंतजार गानों से फुहारा जाए, गीता जी ने कहा अरुण आनंद साहब ने क्या लिखा है, कुछ लिखा नहीं, बना के भेजा है फूल, क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू। विजय सिंह कहते हैं, अच्छा इन्होंने जो है जो पिछले उसमें जो है मैंने सुहेल देव वाला जो झील थी जहां ये घूमने गए थे, इसको जो है इन्होंने लिख दिया। अभी पढ़ता हूँ विजय जी, इस आपकी बात को भी पढ़ता हूँ। और अच्छा भैया मोनू सेठ ने कहा नमस्कार भैया, सुगंध माटी में आपको देखना चाहते हैं, क्या बात है, चलिए जरूर हम आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक गाना सुनेंगे, उसके बाद लौट कर आते हैं, फिर और मेल पढ़ते हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: करियर पर है ध्यान,
5: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
4: पॉजिटिव है फैशन,
5: क्रिएटिव है पैशन,
4: टेक्नोलॉजी में रुचि,
5: बने पर्सनालिटी ऊंची,
4: फॉलो करें ट्रेंड्स,
5: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
4: ओनली ऑन यूथ वेव,
5: यूथ की बात यूथ के साथ,
4: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
5: धड़कन लखनऊ की।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: मैंने बात पूछी जो बच्चों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, नहीं मैं कर लूंगा ना, मुझे आपसे ज्यादा आता है ना, अरे मैं कर लूंगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं ना, आप तो खामखा टेंशन ले रहे हैं। जो इस तरह की बातें होती ना कि माँ बाप जो है बच्चों को कुछ समझा रहे हैं वो समझते नहीं, उनको लगता है कि गूगल पे या सब पे देख के उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है, ये चीज, ये ओवर कॉन्फिडेंस बच्चों के लिए फायदेमंद है या गलत, ये आज मैंने आपसे पूछा है। और फिलहाल विजय सिंह भाई ने बड़ी मेहनत की है, इनका मेल पढ़ लेते हैं। महाराजा सुहेलदेव 11वीं सदी के वीरता को दर्शाते हैं और महमूद गजनवी

विदेशी लुटेरा था और उसका एक भांजा था सैयद मसूद आलम। 1034 युद्ध में परास्त महाराजा सुहेलदेव ने गोरेला फौज के साथ सैयद मसूद को युद्ध में परास्त किया था। महाराजा सुहेलदेव की स्मारक स्थल यहां पर मौजूद है, जहां पर यह अभी गए थे घूमने, और चितौरा झील में उसको परास्त किया गया था। अष्ट धातु की मूर्ति महाराजा सुहेलदेव की चितौरा झील के किनारे बनी है, उनकी वीरता को दर्शाती है, और इसके लिए घाट का निर्माण भी कराया गया है संगमरमर के पत्थर से। क्या बात है, यह ऐतिहासिक जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई विजय जी, बहुत मेहनत की आपने। और एमके राज जी, मुनेश कुमार राज जी का मेल आया है लखीमपुर खीरी से, शुभ दोपहरिया विजय सर जी, क्या बात है, और होंठों पे तेरी बात बहुत अच्छा है,

Never confidence in children, but something can be done about it. For example, do not give mobile phones to children at all and ask them such questions that they cannot answer. Then tell them that you could not answer the question. अच्छा, सार आपका ये मेल का कि ये जो मोबाइल है यही सबकी गड़बड़ की जड़ है. मोबाइल में इस तरह से उनका दिमाग लगा रहता है. माँ बाप जो है वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं. कई बार तो मोबाइल में वो इतना लग जाते हैं कि दूसरे की बात भी नहीं सुनते, उनको पुकारते रहो ये भी नहीं उनको सुनाई देता. कुल मिलाकर ये मोबाइल ही एक गड़बड़ की जड़ है जिसकी वजह से ये गड़बड़ी जो है वो पैदा हो रही है. रामेश्वर साहब कहते हैं होठों पे तेरी बात कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विजय भाई को सप्रेम नमस्कार. प्रोग्राम बराबर सुनते हैं, क्या लाजवाब प्रस्तुति कर रहे हैं और बहुत बढ़िया है. ग्राम पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांत कठेरिया जी नमस्कार आप सभी लोगों को. हिंदुस्तानी क्या है ब्रह्मेश सर जी, सर सादर प्रणाम. मैं पिंकू सोनी टिकैत नगर बाराबंकी से हूँ. बहुत सुंदर प्रोग्राम है आपका, थैंक यू सर. और कुछ नाम है कुलदीप नारायण जी और पिंकी जी. अरे नाम तो अभी दूसरे, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक नाम ही बोल रहे हैं भाई. हाँ विजय भैया टॉपिक दोहराने की कृपा करें. अच्छा चलिए, सोनू परवाना जी कहते हैं कि टॉपिक दोहराने की कृपा करें. अरे कृपा क्या करनी भैया, कल के बच्चे हैं बड़े हो रहे हैं खासकर, उनसे अगर आप कोई बात कहते हैं चाहे वो चाचा हो भतीजा हो ये जो भी हो, मैं पेरेंट्स ही क्यों ना हो, तो वो तुरंत ही कहते हैं अच्छा मैं कर लूंगा ना. कहीं अगर आपको फॉर्म भरना है या कोई चीज दिख गई, आपने कहा बेटा आओ सामने बैठकर जो है ये फॉर्म भर लेते हैं जिससे कोई गलती ना हो सके. अरे क्या बात कर रहे हैं, गलती कैसे हो जाएगी, मैं खुद भर लूंगा ना, आप परेशान ना हो, आप अपना बैठ के जाके. जो इस तरह की बातें होती ना जो ओवर कॉन्फिडेंस वाली, वो बच्चों के लिए कितनी फायदेमंद है और कितनी नुकसानदेह ये जानना चाह रहा था. बस इतना ही बड़ा टॉपिक था और कुछ नहीं. और अयमन नवाब जी का फिर से मेल आया. हेलो विजय जी गुड आफ्टरनून, आपकी शख्सियत बहुत कमाल की है, बस एक ख्वाहिश है कि आपसे कभी मुलाकात हो जाए. जरूर इंशाल्लाह, मेरी भी दुआ रहेगी कि आपसे मुलाकात जरूर हो. टॉपिक बच्चों का ये कहना कि मुझे सब पता है मैं कर लूंगा, अक्सर इंटरनेट से मिले आधे अधूरे ज्ञान का कारण होता है. इसे संभालने के लिए बहस करने के बजाय उन्हें खुद कोशिश करने दें. जब वे किसी काम को खुद करेंगे उनसे छोटी मोटी गलतियां होंगी, असफलताएं होंगी, उन्हें समझ में आ जाएगा कि सिर्फ जानने और असल में करने में बहुत फर्क होता है. उनके सामने खुद भी अपनी गलतियों को स्वीकारें ताकि वे सीखें, हर बात का पता होना उन्हें जरूरी है. मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत अच्छी बच्ची हूं और बड़ों का कहना मानती हूं. क्या बात है, रानी बिटिया हैं आप, वेरी गुड अहमद नवाब, बहुत अच्छी बात है. रामराज जी का भी मेल आ गया है. रामराज जी नमस्कार, श्री गणेश नमो, होटो पे तेरी बात, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से हूँ. और अरे बाप रे नाम भेज दिए हैं सबका भैया, शुभ आशीर्वाद पहुंचे. आपका टॉपिक नहीं सुना इसलिए कुछ नहीं लिखा, धन्यवाद. कोई बात नहीं, आपने मेल ही कर दिया है, बहुत बड़ी बात है. और लगातार इस तरह के मेल जो है वो आते रहेंगे. आज कहते हैं ना वो नितिन मुकेश साहब का जो है जन्मदिन है, हमारी अंजू दीदी बता गई थी तो हमने कहा चलिए नितिन मुकेश साहब की जन्मदिन के मौके पर उनकी आवाज में गाना ही सुन लेते हैं. बहुत बढ़िया गाना है, सुनिए मजा आ जाएगा.

सौदश मसाद एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं इसमें होटो पे तेरी बात, आज विजय के साथ। और अच्छा, एमके राज जी का जो है लखीमपुर खीरी से मेल आ गया है फिर से, और लिखा है बच्चों में बढ़ता हुआ ओवर कॉन्फिडेंस हमें अच्छा नहीं लगता है, मगर कुछ किया जा सकता है, जैसे कि बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दें, उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछें जिनका वो जवाब ना दे पाए, फिर उनसे कहें कि आप सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं, आप इसका मतलब कुछ नहीं जानते, तो उनको लगेगा कि हाँ बात सही है, और उनको बैठा कर समझाएं। इनके पहले मेल में भी इन्होंने यही लिखा था और बिल्कुल सही बात है, उन्हें बैठा कर मतलब समय देने की बहुत ज़रूरत है। बसंत कुमार सिन्हा जी कहते हैं आदरणीय, अच्छा वाह भाई साहब वाह, मुझको विजय से आपने कुसुम लता जी बना दिया, क्या बात है, चलिए ठीक है, बहुत सारे नाम दे दिए हैं, बाद में पढ़ेंगे। भैया मोनू सेठ, बच्चों में ओवर कॉन्फिडेंस यानी अति आत्मविश्वास का मुख्य कारण उनकी कम उम्र में चीजों की सीमित समझ, माता पिता द्वारा हद से ज्यादा तारीफ सराहना, खुद को दूसरे से बेहतर दिखाने की असुरक्षा की भावना होती है। मोबाइल तो ऐसी चीज है जो हम नहीं जानते, मोबाइल बताता है, लेकिन अगर कोई सवाल पूछना है तो गूगल का सहारा लेते हैं। कॉन्फिडेंस हमारे बुजुर्गों के पास है, बाकी आगे कुछ कहना ठीक नहीं है। जो भी कार्य करता हूँ सलाह लेता हूँ, चाहे मेरे बड़े भैया हों, गांव का बुजुर्ग हो, रियल जीवन में रील नहीं बनाता हूँ, और कोई भी सवाल पूछूं तो कहते हैं कि पढ़ाया ही नहीं गया। हाँ ये बात तो सही है। और विनीत कुमार जी अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ सीतापुर से, होटो पे तेरी बात में विजय सर जी गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहरिया, सादर प्रणाम, नमस्कार स्वीकार कीजिए। आप जो बोली बोलते हैं धर्मेंद्र की आवाज में बहुत अच्छी लगती है, मजा आ जाता है सुन के। आज के विषय पर मेरा कहना है सभी बच्चों को उनके माता पिता का कोई काम या कोई बात कहे तो उसको प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। यही प्रसाद तो नहीं समझ पाते वो उसको प्रसाद समझते ही नहीं है, वो कहते हैं बेकार है तो। और नरेंद्र सुथार जी का मेल आया है, हालांकि ये मैम अंजू जी आपका जो एक रिक्वेस्ट आई है ये मैं 2 बजे के प्रोग्राम में अगर आप करेंगी दोबारा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपकी जो ख्वाहिश है मैं पूरी करूँगा, लेकिन 2 बजे के बाद। वकील अहमद साहब ने फिर से कहा बच्चों को माता पिता की हर बात माननी चाहिए, जो बात बताएंगे अच्छे के लिए ही बताएंगे, मोबाइल देखने के लिए ना दें, ज़्यादा देर तक थोड़ा थोड़ा दें तो चलेगा। प्रवीण जी का कहना है बच्चों में ओवर कॉन्फिडेंस, बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, अभी लास्ट डेट नहीं है, अभी कुछ टाइम है, फॉर्म भर लेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जब नुकसान पहुंचता है

तो लास्ट टाइम पे सर्वर डाउन हो जाता है, फॉर्म भर ही नहीं पाते हैं। ऐसा ही कई बार हो चुका है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बहुत से बच्चे तो फीस भी माँ बाप की गलत कटवा देते हैं, उसका कहते हैं अरे ये तो गलती हो गई पापा, पता ला लो फिर से दो 1800-2000 रुपए दोबारा, क्योंकि गलत भर गया फॉर्म। अब कटी हुई फीस वापस आ जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। और इसमें कमलकांत गुप्ता जी का मेल आया है, मोबाइल से बच्चों को दूर रखें, इनका ये कहना है। कमलकांत गुप्ता जी, क्या बात है, चलिए शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने जो जो मेरा विचार था उसको आपने जो है वो आगे तक पहुंचाया, और बहुत अच्छा है कि ये सब विषय ऐसे हैं ना जिसपे अगर हम साथ मिलकर आत्ममंथन करेंगे तो शायद इसका तरीका निकलेगा, या बच्चे सुनेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ वाकई में जो है माँ बाप जो कहते हैं उनकी बात सुननी चाहिए। अगर आप उससे इत्तफाक नहीं रखते हैं तो आप उसमें सवाल जवाब कर सकते हैं कि पापा मेरे समझ से ऐसा होना चाहिए, या चाचा मेरे समझ से ऐसा होना चाहिए, भैया ऐसा होना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन तुरंत नजरअंदाज कर देना ये ठीक नहीं है। चलिए 1:44 का वक्त है, एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

एक बज के 50 मिनट का समय हो गया, बल्कि 51 हो गए। जिससे डरते थे वही बात हो गई, प्रोग्राम का समय निकल रहा है, डर रहे थे वही बात हो गई, क्या करें। सोनू परवाना मेल जी का जो है वो आया है मेल, कहते मैं अपने बच्चे की बात बताऊं तो उसे हमारे मित्र के घर जाना था। हमने कहा कि जब उस गांव में पहुंच जाना बेटा तो मुझे कॉल करना, जगह हम बता देंगे। उसने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, बोला गूगल का जमाना है, फिर क्या, गूगल से छाना तो लगभग 12 किलोमीटर उस गांव से दूर ही निकल गया। हमने कहा ले लो गूगल का सहारा, मेरा सहारा क्या करोगे। उस दिन से साहबजादे गूगल पर नहीं अपने बड़ों का सहारा लेते हैं। क्या बात है, देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि उनको खुद जो है वो पता चल गया कि नहीं भाई पापा सही कह रहे थे, इसलिए जो है वो मतलब रास्ते पे आ गए। हाँ अच्छा, हॉटमेल के मेल अभी से आ गए, क्या बचा भाई, अच्छा 10 मिनट बचा है, वाह फिलहाल। ओहो अब तो हॉटमेल के मेल आना शुरू हो गए, क्या बात है उस्मान अंसारी साहब। और हाँ उस्मान अंसारी साहब कहते हैं आदाब विजय सर, ओवर कॉन्फिडेंस से नुकसान होता है, फायदा बहुत कम ही होता है। ओवर कॉन्फिडेंस का पहला कारण मोबाइल फोन है। स्कूल का फॉर्म जमा करना था, बच्चे ने जमा ही नहीं किया, जब बोला जाता था तो बोलता था कल हो जाएगा कल हो जाएगा, लेकिन लास्ट तक उसने जमा ही नहीं किया। तब तो आपने उसकी पिटाई की होगी, खूब कान के नीचे बजाया होगा है। जावेद अख्तर साहब का मेल आया है, ओटो में तेरी बात आपकी आवाज़ को सुनना अच्छा लग रहा है, गुड आफ्टरनून विजय सर जी, गुड आफ्टरनून जी। और तबीयत खुश हो गई, टॉपिक क्या है जान नहीं पाया, बस मेल कर दिया, कोई बात नहीं मेल कर दिया तो कर दिया, बहुत अच्छा किया। आंचल सेठ ने भी कहा है इससे आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस जो है इनका कहना है कि एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के बारे में समझ और वास्तविक प्रदर्शन से कहीं अधिक होती है। ये हमारे निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है, व्यवसायिक व्यक्तिगत वित्तीय स्तर पर भारी नुकसान का कारण बनता है। ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस तो अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आगे सब कुछ नजरअंदाज हो जाता है।

ये गलत है। खुद को ज्यादा स्मार्ट समझना दूसरों से यह अच्छी बात नहीं है। अपने आप को स्मार्ट समझिए, यह अच्छी बात है। अपनों से बड़ों के आगे होशियार बनना यह नादानी की बात होगी। हमारे बुजुर्ग अभी भी आसमान की तरफ देखकर बता देते हैं कि घड़ी में समय क्या और क्या हुआ होगा, और हम गूगल में देख के बताते हैं कहीं गलत ना हो जाए। भाई बुजुर्गों की तो बात ही अलग है। और नरेंद्र सुधार जी ने राजस्थान से मेल किया है, ये बच्चे ज्यादा मोबाइल का उपयोग करते हैं तो उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत बिगड़ जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, आंखों की रोशनी कम हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। ये लत छुड़वानी चाहिए, मोबाइल ही इसका कारण है। जो अंजू जी का मेल आया है, लेट गाना, अच्छा गाने की फरमाइश की, मैं 2 बजे के बाद पूरा करूंगा अंजू जी। मुनेश कुमार जी, अच्छा इन्होंने भी फिल्म की बात कर दी, गाने की फरमाइश। चलिए फिलहाल 54 हो गया है, इस गाने के बाद वाइंड अप करते हैं, फिर लौट कर आते हैं, उसके बाद सुनते हैं। चलिए एंजॉय कीजिए, 2 बजे आपका खास प्रोग्राम जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है वो शुरू होने वाला है।

0: North Arabian Sea, Gujarat, Madhya Pradesh, remaining parts of Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar and some parts of Uttar Pradesh and Uttarakhand during next 3 to 4 days. The Met Department has predicted heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. The weather agency also forecast heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and in some parts of northeast India today. On to sports. In FIH Men's Pro League Hockey, India thrashed Pakistan 7-1 at the Lee Valley Hockey and Centre in London last night. Abu Bakr gave Pakistan the lead in the first quarter, converting a penalty corner. India will now face England tomorrow. In the US Open Badminton, India's Devika Sehwag and Ronak Chauhan have reached the semifinals in Fullerton, California. Devika caused a major upset by defeating third seed Riko Gunji of Japan in the straight games, winning 22-20, 21-19 in the women's singles quarterfinals. And in football, Egypt have reached the knockout stage of the FIFA World Cup for the first time after a 1-1 draw with Iran in the final Group G match. Iran's Ramin Rezaian was named player of the match. Egypt finished the group stage unbeaten and qualified as the runners-up. They will now face Australia in the round of 32. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Seychelles in a short while on a 3-day state visit, described Seychelles as a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar. U.S. Secretary of State Mark States based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat. Noted Tamil film actor and director K. Bhagyaraj passes away in Chennai at 73. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. And in FIFA World Cup, Egypt reaches knockout stage for the first time after a 1-1 draw with Iran. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में

0: विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दे चर्चा होगी।
2: $175 million इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 million पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
5: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
5: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे, तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि NCDC, IPCO, CRIPCO, NDDB, NABARD, NCEL, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में MSME दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में MSME क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
6: And it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
7: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त भी देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्थ फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: धड़कन लखनऊ की।
9: जी हाँ, धड़कन लखनऊ की सुन रहे हैं। FM रेनबो चैनल प्रोग्राम चल रहा है हॉटमेल यहां पर, और उत्तम कुमार भगत जी का मेल आया है। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसी तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद और बोहगड़ा गाछी से पश्चिम बंगाल से, और दिग्दर्शन गौर जी का मेरठ कैन से, दिग्दर्शन कविता गौर। हमारे यहाँ बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है भैया, हमारे यहाँ भी पड़ रही है। हीट वेव से हाल बेहाल हो गया है, यहाँ भी है, मानसून का इंतजार है, मुझको भी है। गाना सुनवा दीजिए। अच्छा, गाना तो मुझे ही सुनवाना पड़ेगा, चलिए आपको गाना सुनवा दूंगा। और सुनील पाठक साहब का मेल आया है, प्रिय प्रस्तुतकर्ता भाई साहब जी, हार्दिक अभिनंदन, अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से। ओ जी कैसे हो, सत श्री अकाल जी। शाहरुख नूर अंसारी, आप कहते हैं कोई भी गीत सुनवा दीजिए, धन्यवाद। ग्राम पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुख नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद दृशी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद अमीन, गुड आफ्टरनून। ये सॉन्ग समाप्त परवीन जी, मोहम्मद फैज, बाय रिंकी पिंकी जी को सुनाना चाहते हैं, सुना दिए साहब। मना किसने किया है, गाइए आप। नहीं, अच्छा मुझे सुनाना है, सुना दिया। राहत हुसैन जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सर। एक सॉन्ग सुनवा दीजिए, रजिया सुल्तान मूवी का। अरे सॉन्ग ही तो बजा रहा हूँ, जो सॉन्ग सुनने के लिए आपका जो है हॉटमेल खोलता हूँ, पट से नीचे चला जाता मेल। इतने सारे मेल आ गए भाई कि पूछ ही नहीं, देख ही नहीं पा रहा हूँ। संदीप मक्कार जी देखिए, मक्कड़ जी देखिए, आप ने इतने सारे मेल एक साथ कर दिए भाई मेरे, एक ही मेल करते देखिए पूरी लाइन लग गई आपके मेल से। ठीक, चलिए संजय डिंगली देखिए, संजय डिंगिया का खोलने से पहले ही नीचे चला गया। ओहो, कोई बात नहीं। काशी वधावना जी का मेल है, और राजकोट गुजराव से कौशिक अस्मिता, मम्मी पापा महेश, बड़वारा परिवार, नमस्ते विजय सर, केम छो, गुड आफ्टरनून भाई, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। कौशिक वधावना ऐसा ये नाम है, अरे स्पेस दे देते तो पढ़ने में ज़्यादा आसान होता। खैर कोई बात नहीं, अब्दुल गफ्फार साहब आपका तो मेल शामिल कर लिया है, ताज मोहम्मद भाई आपका भी शामिल कर लिया था, कमल पांडे जी नमस्कार, मैं कमल शंकर पांडे माहौलिया कला चौराहा पोस्ट नसीरपुर जिला उत्तर प्रदेश से मेल कर रहा हूँ, अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में मेरा मेल पढ़ना, अरे कैसे इतने सारे मेल कर दिए कि अमिताभ क्या अपनी आवाज़ भूल गए हम, क्या बात है,

प्रसारक महोदय जी को दिल से आदाब है, आपकी पसंद का कोई भी सदाबहार सुरीला गीत सुनवा दीजिए। फरमाइश करते हैं ओम प्रकाश। सोनू परवाना मिल अर्जित सेठ, मोनू भाई की पसंद हमारी पसंद है। विजय भैया, शादी से पहले गाना हम मम्मी पापा को बहुत सुनाते थे। क्या बात है, बिल्कुल सुनाना ही चाहिए। और मल्होत्रा टीडी मोहाली, मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा साहब, ऋतिक मल्होत्रा साहब, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप सिंह ने ये मेल किया है। और कालका जी से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, इतने सारे लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। जय कहते हैं होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल। और अनोखी अदा गीत का, हाल क्या है दिलों का, गाने की फरमाइश की। नंबर आ जाने दिया भाई साहब, अभी तो गाना लगा हुआ है। शमसुल कमर राही, और ये कहते हैं गज ढुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, अनु खान, इतने सारे लोगों ने मेल किया है। अब मेल पढ़ेंगे लेकिन एक गाना सुनेंगे।

गाना लगा हुआ है शमसुल कमर राही, और ये कहते हैं गज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, अनु खान, इतने सारे लोगों ने मेल किया है। अब मेल पढ़ेंगे लेकिन एक गाना सुनेंगे।

मर्जी का, अरे भाई मर्जी का, आपका प्रोग्राम भी आपकी मर्जी का ही है, जिसका नाम है हॉट मेल। यहाँ पर संतोष खड़से जी का मेल आ गया है और इन्होंने कहा यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। और इसके अलावा मोहसिन हाशमई, आपका भी मेल मुझे मिल गया है। प्यार भरा आदाब, अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दें, नई बस्ती गुंज डुंडवारा से इन्होंने मेल किया है। इसके अलावा इशाक मोहम्मद साहब, ये छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से, मोहम्मद इशाक, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद अल्ताफ, इतने सारे नाम, खतीजा बेगम और जितेंद्र नामदेव जी, ग्राम पोस्ट खनौदी, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश। नमस्कार विजय जी, आप आते हैं तो लगता है दिलीप कुमार, शुद्गन सिन्हा, जॉनी लीवर आ गए हैं, सभी कलाकार याद आ जाते हैं। क्या बात है, ज़रूर सुनवाऊंगा, बहुत बढ़िया गीत आप लोग भी आज अच्छी फरमाइश कर रहे हैं, तो मन जो है बहुत खुश हो जा रहा है। और इसके अलावा मेरे पास नवी हसन जी का मेल आया है, और अच्छा फांसी फिल्म का इन्होंने फरमाइश की है। नवी हसन, शहनाज अब्बासी, नावेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनीस अवियाव और यशफ अब्बासी, इतने सारे लोग हैं। और इसके अलावा ये सारे नाम पढ़ चुका हूँ। और रोजी डिकॉस्ट्रा जी, आपका मेल, आपने कहा हमें भी देख लेना, शुक्रिया, देख लिया, देखिए नजर पड़ गई, जनकपुरी सहारनपुर से, जॉन डिकॉस्ट्रो, रोजी डिकॉस्ट्रो, पॉल डिकॉस्ट्रो, विलिस डिकॉस्ट्रो। और इन्होंने कहा है कि अच्छा कोई सोने के दिलवाला, कोई चांदी के दिलवाला, देवानंद का एक गाना मुझे याद आता है। और सुरेश नारंग जी का मेल आ गया है, आजे कल तर ढल गया दिन, हुआ तमाम रंगी भरी शाम, फिल्म बेटा बेटी से, सहारनपुर से। अच्छा इन्होंने गाने का नाम लिखा, टुकड़ टुकड़े में लिख दिया गाने का नाम। फिलहाल चलिए रमेश कुमार जी का भी मेल आया है, पटेल नगर मलोड़ से, डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया, गुड्डू, ये सारे लोग हैं। चलिए गाना आप सुन लेते हैं जल्दी से, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप रमाकांत जी का मेला है। विजय साहब नमस्कार, मैं रमाकांत विश्वकर्मा, ग्राम महुलिया कला चौराहा पोस्ट नसीरपुर जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश से मेल कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मेल करने के लिए। स्वर्ण सिंह साहब, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, इन सब का मेल आ गया है मेरे पास। लोहगढ़ ठाकुर वालान से और तेज बहादुर यादव जी, विजय जिनाना चौहान सर जी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप? महीनों बाद आए हैं हॉटमेल कार्यक्रम में, बहुत खुशी हुई। हो सके तो गीत सुनवा दीजिएगा। अच्छा चलिए, लावारिस फिल्म की बात की है, सुनवाऊंगा। तेज बहादुर यादव, ममता यादव, रौनित यादव, बेबी वानिका और सत्यनारायण कुरिल जी, प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे, जिस तरह प्रोग्राम पेश कर रहे हैं उससे लगता है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। जरूर साहब, स्वस्थ और मस्त ना भी हो तब भी प्रोग्राम ऐसे ही पेश करेंगे भाई, रोजी रोटी का सवाल है दोस्त, ऐसी क्या बात है। और नागिन से इन्होंने जो है गीत सुनने की फरमाइश की है, चलिए जरूर आपको सुनाएंगे। नाजिम रेन जी, और इन्होंने भी कहा है कि ताल मूवी का गाना सुनवा दीजिए, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, मौका होगा जरूर सुनाएंगे। और इसके अलावा और मेल है मोहम्मद अमीन जी का, गुड आफ्टरनून यासिर भाई, समाम परवीन जी, फैज भाई, सबको नमस्कार है। प्रकाश जी का मेल आया है, प्रसारक महोदय जी, मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में कोई गीत सुना दीजिए, छत्रपति संभाजी नगर से, सुरेश वाड़ी औरंगाबाद से, प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, विराज, स्वीटी, अंशुमन, बेबी ओवी, ये सब लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम। और अब पंकज शर्मा जी कहते हैं, हाँ बोलती बंद हो गई, भैया जी को दीदी जी लिख दिया, कैसे पढ़ूं मैं पंकज शर्मा जी, कैसे पढ़ूं मैं। सुरेश नारंग जी का मेल आया है, बोलती बंद कर दी इन्होंने मेरी, करीब आए नजर मिले तो ना मिले, फिल्म अनीता से। अच्छा भाई, सहारनपुर से इन्होंने मेल किया है, सुरेश नारंग, आशा नारंग, साथ में सबने मेल किया है। मनोज बंसल साहब हांसी हरियाणा से, नमस्कार जी, कार्यक्रम मेरी उपस्थिति दर्ज कर दीजिए। हो गई दर्ज, हो गई अटेंडेंस लग गई आपकी, अटेंडेंस लग गई जी आपकी। और ये है राधे कुमार विद्यार्थी जी, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, किशोर कुमार, क्या बात है, आज गाने बड़े बड़े अच्छे जो है आप लोग चुन रहे हैं, एक के बाद एक लगातार बढ़िया गाने हैं। चलिए समय बचेगा तो जरूर सुनाऊंगा, एक घंटे का प्रोग्राम होता है, ऐसे गाने दे तो दो घंटे हो जाए पता ही ना चले, है ना। चलिए रामेश्वर साहब हॉटमेल कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, विजय जी नमस्कार, मेरे मेल पर भी नजर डालिए, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं मेल शामिल होने का, धन्यवाद आपको। वारिस अली खान साहब का मेल आ गया है, धन्यवाद उन्होंने कहा है, आकाशवाणी के अमिताभ बच्चन को धन्यवाद। रमेश यादव जी, प्लीज मेरा गाना बजा दीजिए, दोस्त की शादी है, मेरे यार की शादी बजा दें। अच्छा भैया बजा देंगे, अभी दोस्त की शादी है, जरूर बजा देंगे भैया, शिकायत नहीं करो, अभी बजाते हैं, ठीक है। पहले ये वाला गाना सुन लेते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: नहीं नहीं, नजराना जरूर याद रखा जाएगा भाई, आपकी फरमाइश पूरी हो रही तो ये भी याद रखा जाएगा। ओम बकरिया साहब का मेल आ गया है। सर जी नमस्कार, हम भी लाइव प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारी हाजिरी भी कबूल करें। कबूल कर ली साहब आपकी भी। राजकुमार डोडी जी गांव फ्रांसी हिसार से, राजकुमार डोडी, पुष्पेंद्र डोडी और साथ ही प्रमोद कुमार डोडी, ये लोग जो है मेल कर रहे हैं। और इसके अलावा शैलेश कुमार जी, नीलू शर्मा जी, ये कंटिन्यू एफएम माध्यम से अपनी बात बोल रही हूँ। नीलू शर्मा, मेरा सॉन्ग सुना दीजिए सारा के लिए, वो कंटिन्यू एफएम सुनती है। हाँ, आपने जो है, अरे नीलू शर्मा जी, आपने गाना लिख के दे दिया होता तो ठीक था, अब ढूंढू कहाँ। सर जी प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है, शिवम सिंह जी, और बहुत गर्मी है, गर्मी तो वाकई है दोस्त। अभी घनन घनन घिर आए, बदरा बजाया था, सोचा आ जाए लेकिन आए नहीं, है ना, वो अपनी टसन में है भैया, वो जब मन करेगा तभी आएंगे। और हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी जी कहते हैं, मैं नमस्ते जी, पिंकू सोनी टिकैत नगर से, और नंदलाल ब्रिज का उजाला है गाना सुनवा दिया। यार समय तो कुछ ही देर का बचा है। और मेहर अरोड़ा जी, मेहर अरोड़ा और श्री गंगानगर राजस्थान से, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, इन लोगों ने गीत की फरमाइश की है। और इसके अलावा अब पूजा पाल जी का मेल आया है। सर मैं मिर्ज़ापुर दक्षिणी पोस्ट मधुवापुर से, थाना सांदा सीतापुर से हूँ, मुझे गाना सुनवा दीजिए। ज़रूर आपको गाना सुनने को मिलेगा, आपका देखिए मेल शामिल कर लिया गया है। और इसके अलावा स्वर्ण सिंह जी, आपका भी मेल जो है शामिल कर लिया गया था, एक ही मेल को कई कई बार आप लोगों ने भेज दिया है, है ना। इशाक मोहम्मद, सतीश अनेजा जी तो 2 बजे से लगातार मेल ही कर रहे हैं, और मैंने जबकि शुरुआत में ही आपका मेल शामिल कर लिया था चंडीगढ़ से। खैर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। उदय भान पाल जी, आपका भी मेल शामिल हो गया है सभी का तकरीबन। जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, रमाकांत जी, निसार अली और प्रकाश बोरगांवकर, एम के राज जी, रोजी जी, महेंद्र देपन, साई गायकवाड, आपका भी मेल जो है वो शामिल कर लिया गया है। हॉटमेल बहुत बढ़िया चल रहा है सर जी। फूलों कांटे का, पहली बारिश में और तू, हाँ ये गाना भी आपने कहा, लेकिन यार क्या करें, 1 घंटे का प्रोग्राम, फरमाइश इतनी सारी, बहुत सही। रियायत हुसैन जी का देखिए मेल आया अब, जसपुर उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत सिद्दीकी, मौसम कैसा ये भी साथ में लिख देते तो कुछ ठंडक पहुंच जाती। अब बताइए, 1 मेल मैंने आपका पढ़ लिया, पीछे 4 आपके मेल और आ गए, बताइए वही मेल रिपीट हो गए। खैर कोई बात नहीं, 2:54 का वक्त है, एक आखिरी गीत के साथ आपको नमस्कार कहना चाहूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने जो है वो क्या कहते हैं उसे, मेल हमें किया। और इसके अलावा डियर आरजे नमस्कार, चलचित्र वो कौन थी, एडवोकेट वारिस अली, अरे साहब बहुत देर हो गए वारिस अली खान साहब, चलिए। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबने मेल किया, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना चाहूंगा इस गीत के साथ। फिर मुलाकात होगी अभी कुछ ही देर में सतरंगी दुनिया में, तो बस सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए आज के इस प्रोग्राम को।
1: अरे वही तो है।

0: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई। जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

गाइस नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त वृंदा और लेकर हाजिर हो चुकी हूं आपका फेवरेट प्रोग्राम म्यूजिकार। दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां जैसे पंख लगाकर उड़ गईं। कुछ दिन पहले तक नानी के घर की मस्ती रही, देर तक सोना, आम कुल्फी, घूमना फिरना और मोबाइल पर गेम्स, यही था दिन भर का क्रेज। और अब छुट्टियां होने वाली हैं खत्म और होने वाली है नई शुरुआत की तैयारी। तो आज के म्यूजिक आर में करेंगे बैक टू स्कूल की तैयारी, पिटारे में समेटेंगे कुछ पुरानी यादों को और जानेंगे कुछ खास ध्यान देने वाली बातों को, साथ ही होंगे कुछ मदमस्त गाने। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे वन आर, और आज के प्रोग्राम में वृंदा है आप सभी के साथ।

सो गाइस फाइनली आ गए हैं वो दिन जब स्कूल बैग अलमारी से बाहर निकलने लगे हैं, नई कॉपियों की खुशबू महसूस होने लगी है और यूनिफॉर्म की फिटिंग चेक होने लगी है, यानी कि छुट्टियों की मस्ती धीरे धीरे बदल रही है एक नई शुरुआत की तैयारी में। वैसे हमारे छोटे भाई बंधु नई उड़ान का एहसास लेने लगे हैं। टीचर्स और स्कूल एम्प्लॉयज अपनी छुट्टियों के बचे हुए दिन उंगलियों पे गिनने लगे हैं। वैसे दोस्तों आप कैसा महसूस कर रहे हैं, छुट्टियां खत्म होने लगी खुशी है आपके अंदर या फिर वापस जाने की कश्मकश? आपके घर या फिर आस पड़ोस में अगर है कोई इससे जुड़ी हुई कहानी तो आप हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com। वेल गाइज, जब तक आ रहा है आप सभी का जवाब तब तक एंजॉय कीजिए एक बढ़िया सा लाजवाब सा गाना।

भाई कहानियां तो कई तरह की सिमटी इन वेकेशंस में। किसी ने नई जगह घूमी, किसी ने नई किताब पढ़ी, तो किसी ने कोई नई स्किल सीखी। हर दिन छोड़ गई एक नई याद। वैसे दोस्तों, अब टाइम आ गया है इन सारे एक्सपीरियंसेस को कवर करने का, यानी कि सारे अनुभवों को इकट्ठा करने का, नई क्लास नई पारी में साथ लेकर जाने का, कुछ नया सीखने का और कुछ नई यादें बनाने का। वैसे हमने अभी आपसे इस सॉन्ग से पहले पूछा था कि आपकी सुनहरी यादों की कोई ऐसी कहानी है जो इन वेकेशंस के पीछे छुपी हुई है, तो एक बहुत ही बढ़िया सा हमारे पास एक मेल आया है, वो मैं पढ़ना चाहूँगी। यहाँ पर स्वयं लिखकर हमें भेज रहे हैं, ये क्लास 8 के स्टूडेंट हैं और इन्होंने लिखकर भेजा है कि इन छुट्टियों में मैंने पेंटिंग और डांस सीखा। भाई वाह क्या बात है। और साथ में ये लिख रहे हैं कि मैंने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया और गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने दादा दादी से मिलने उनके गांव भी जाता हूं और मेरे सभी चचेरे भाई बहन भी गर्मी की छुट्टियों में दादा दादी से मिलने आते हैं और हम सब मिलकर खूब मस्ती करते हैं। भाई ये जो पल होते हैं ना, उसको संजो कर रखना चाहिए और मुझे लगता है कि आजकल इन पलों को संजोने के लिए मोबाइल या फिर पिक क्लिक करने से अच्छा और कोई जो सपोर्ट है ना वो नहीं हो सकता है। बट हाँ, मोबाइल का आप यूज़ करिए, बट लिमिटेड वे में आप इसका यूज़ करिए और फिलहाल रेडियो का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए और अपने कानों को रिलैक्स फील करिए।

0: अच्छा दोस्तों, अगर आपकी छुट्टियों की कहानी पर फिल्म बने तो उसका नाम क्या होगा? चलिए ठीक है, मैं आपको तीन ऑप्शंस देती हूँ यहाँ पर। मिशन नानी हाउस, सेकंड ऑप्शन है आप सभी के लिए ऑपरेशन मैंगो, एंड द थर्ड ऑप्शन इज द ग्रेट समर एडवेंचर। तो जल्दी से अपने जवाब आप हमें मेल कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है aarkansomedia@gmail.com। हमें रहेगा आपके जवाब का इंतजार, और इस टाइम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, सुंदरी एफएम रेनबो कानपुर।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
5: Hi, this is Udit Narayan. You are

0: लिसनिंग 102.2 FM रेनबो शहर की म्यूजिकल हार्टबीट, दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।
1: शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर से इस टाइम आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिकार, और आज के इस सफर में विंदा है आप सभी के साथ।

वैसे दोस्तों हमारे नन्हे मुन्नों के बंधु उनके सखा से उनके मिलने का टाइम भी लौट आया है। स्कूल के दोस्तों से फिर से मिलना, अपने वेकेशंस एक्सपीरियंसेस उनसे शेयर करना और उनकी बातें सुनना एक अलग ही मज़ा है फ्रेंड्स।

के साथ टाइम बिताने का। वैसे हमारे शो का भी टाइम जो है वो बीतता चला जा रहा है और हमारे प्रोग्राम में हमारे दोस्त यानी कि हमारे जो लिसनर्स हैं ना वो हमें लगातार ईमेल कर रहे हैं और मैं देख पा रही हूँ मनोज बंसल हांसी हरियाणा से हमें ईमेल कर रहे हैं और ये लिखकर भेज रहे हैं, नमस्कार जी, जी आपको भी प्यार भरा नमस्कार। और ये लिखकर भेज रहे हैं कि गर्मी की छुट्टियों को हम कहेंगे एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। भाई वाह क्या बात है। और इसी के साथ दीप्ति जी का कानपुर से हमें ईमेल आया है और जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि तीन ऑप्शन दिए थे कि आप अपने वेकेशंस पर कोई मूवी बनाना चाहते हैं तो उसका नाम क्या होगा, तो दीप्ति जी लिखकर भेज रही हैं कि मिशन नानी हाउस। क्या बात है, मिशन नानी हाउस मुझे लगता है हर दूसरे बच्चे का ये जरूर मिशन रहता है अपनी नानी के घर जाने का। तो चलिए ये सारी बातें तो चलती रहेंगी और बातों बातों में हम लौट आते हैं उस दौर में यानी कि अपने डेली रूटीन में भी। जी हाँ, डेली रूटीन में लौटने का अब वक्त आ चुका है। अभी से बच्चे और पेरेंट्स स्टार्ट कर दें बैक टू वर्क को फॉलो करना, है ना, कितना ज़रूरी हो जाता है ये। तो आपको करना क्या होगा कि बच्चों का जो स्कूल बैग है आप अभी से उसको चेक कर लीजिए, कोई कमी हो उसको आप देख लीजिए और उसको पूरा कर लीजिए। साथ ही साथ बुक्स एंड नोटबुक्स अरेंज करके रखिए। हॉलीडे होमवर्क अगर बच्चों ने कंप्लीट नहीं किया है ना तो उनको बिठा कर अच्छे से आप कंप्लीट करवा दीजिए। और अपने बच्चों के यूनिफॉर्म और जूते तो तैयार रखने पड़ेंगे अभी से। साथ ही साथ स्कूल टाइम के अकॉर्डिंग सोने जागने की आदत तो अभी से ही शुरू कर दीजिए। होता है ना कई बार कि हम टीवी देखते हैं, लोगों के साथ बातें करने बैठ जाते हैं या मोबाइल पर कुछ टाइम हमारा चला जाता है, तो अपने डेली रूटीन को फॉलो करना यानी कि सोने का जागने का जो टाइम है ना उसको रेगुलर बेसिस पर फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड यू नो एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि स्कूल खुलने से 7 से 10 दिन पहले अगर बच्चों को रेगुलर रूटीन में लाना आसान होता है ना तो उसके लिए आप उसको अभी से रूटीन में फॉलो करते रहेंगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो परेशानी छोड़कर इस मोमेंट को आप फिलहाल के लिए इन्जॉय करिए वृंदा के साथ ओनली ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर।

आई थिंक हमारे पेरेंट्स ना ये गाना जरूर गुनगुनाते होंगे इन छुट्टियों में जब बच्चे मोबाइल पर लगे रहते होंगे। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि छुट्टियों में सबसे ज्यादा बिजी कौन रहा, और आंसर है हमारा सबका मोबाइल। वैसे दोस्तों अब टाइम है धीरे धीरे स्क्रीन टाइम को कम करने का, तो चलिए इन लास्ट डेज में खुद को चैलेंज देते हैं और अपने पेरेंट्स को खुश कर देते हैं। तो करना क्या होगा आपको, रोज़ 30 मिनट कम स्क्रीन यूज़ करिए। पुरानी कॉपीज़ जो आपने अब तक कहीं पर कोने में दबा के रखी है ना, उन कॉपीज़ को देखिए, यानी कि पुराने नोट्स को पढ़ना शुरू कीजिए। अब एक नया टाइम टेबल आप सेट कर लीजिए और उसे फॉलो करने की कोशिश कीजिए। स्कूल बैग तैयार करिए अर्ली टू बेड, ये नियम तो जरूर फॉलो करना चाहिए सभी को। वैसे रिमेम्बर, पढ़ाई का पहला दिन तभी अच्छा जाता है जब तैयारी आखिरी समय पर नहीं होती। म्यूजिक आर प्रोग्राम इस टाइम आप एंजॉय कर रहे हैं वृंदा के साथ ओनली ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर।

वैसे दोस्तों, आप भी बता सकते हैं अपने हॉलीडेज की खट्टी मीठी यादों से जुड़ी कहानी। और हमारी ईमेल आईडी है aarkansomedia@gmail.com। अगला ईमेल भी हम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और ये हमें राजस्थान से आया है दयाल जी का। और ये लिखकर भेज रहे हैं कि गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाने का और वो भी हिल स्टेशन जाने का एक अलग ही मज़ा है। क्या बात है, हिल स्टेशन में भी वैसे जनाब आजकल गर्मी ही रहती है, क्योंकि जिस तरह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचते हैं हिल स्टेशंस में, तो नेचर जो है ना वो कहीं ना कहीं अपने उस रूप में नहीं रहता है। तो कहीं भी जाएं लेकिन सफाई का खूब ख्याल रखें। वैसे फिलहाल ख्याल तो हमारे पेरेंट्स को अपने बच्चों की भावनाओं को अभी भरपूर रखना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और उन पर स्कूल खुलने से पहले ज़्यादा पढ़ाई करने का दबाव नहीं डालना चाहिए। इनफैक्ट उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा रहेगा कि अगर छुट्टियों में आप बच्चों की बातें सुने, उनके साथ बैठें, उनके साथ खेलें, उनको प्रॉपर टाइम दें, दूसरे बच्चों से कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। वो कहते हैं ना कि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, यानी कि अलग तरीके से कुछ सीखता है और उसकी तुलना करना, अप्रिसिएशन करने से आप उसको बढ़ावा देते हैं और तुलना करने से आप कहीं ना कहीं उनकी खुशियों को दबा देते हैं। तो ध्यान रखिए कि अप्रिसिएशन पहले है, तुलना नहीं। और फिलहाल हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए एंटरटेनमेंट हमारे प्रोग्राम्स में पहले है। तो चलिए, आप सभी के रेडियो सेट तक पहुंच रहा है ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक, आप सभी एंजॉय कीजिए। ओनली ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर।

0: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
0: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप, तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
0: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
2: सारे गा पदा निदा पगरे गा मगरे गा सागा।
3: नमस्कार, मैं हूँ अनूप जलोटा, यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो।

0: Bukan pul.
1: Panire ma pada pagare magare gare sanidare.
2: 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर आप हैं एफएम रेनबो कानपुर के साथ और इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक आवर।

यू नो, हम भी जानते हैं कि आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं भाई। नए सेशन की प्रॉपर क्लासेस आफ्टर वेकेशंस है, यानी कि नई उम्मीदें, नए गोल्स आप भी सेट करना चाहते हैं। क्यों ना छोटे छोटे गोल्स अभी से हम सेट करके रख ले, तो प्रॉपर टाइमिंग पर रेगुलरली हम उसे फॉलो भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, करना क्या होगा आपको, रोज़ 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम आप पढ़ाई को दीजिए और फ़ोन से दूरी बना लीजिए। हर महीने एक किताब ज़रूर पढ़िए, थोड़े थोड़े आप दो दो तीन तीन पेजेस करके डेली पढ़ेंगे ना, तो एक बुक आप ज़रूर पढ़ पाएंगे एक महीने में। एक नई स्किल सीखिए जो आपको और भी ज़्यादा बेहतर बना पाएगी। रोज़ एक अच्छा काम कीजिए, अच्छे काम में आ जाता है, जैसे आप अपनी मम्मी की हेल्प कर सकते हैं या फिर घर में किसी भी बड़े की आप हेल्प कीजिए, वो भी एक बहुत ही अच्छे काम में आता है। और साथ ही साथ एक एक्टिविटी ट्राई आप कर सकते हैं, जैसे आप एक कागज़ पर लिखिए इस साल क्या क्या नया सीखा आपने और उस पर क्या इम्प्लीमेंटेशन आप करना चाहते हैं, और अपनी स्टडी टेबल पर उसको लगा दीजिए। और स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए तो आपको क्या करना है, म्यूज़िकल थेरेपी यूज़ करनी है, यानी कि FM रेनबो कानपुर जो सुनना है।

दोबारा से रूटीन में आना बहुत बड़ा मुश्किल का काम है, पर नई शुरुआत, नई चुनौतियों, नए अवसर के लिए इसे अपनाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, छुट्टियों की खूबसूरत यादों को दिल में रखिए और नई एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। वो कहते हैं ना, सफलता की शुरुआत हमेशा एक अच्छी तैयारी से होती है, तो बस अभी से शुरू हो जाइए और आगे ही आगे बढ़ते जाइए। फिलहाल हम भी बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रैक की ओर, और जाते जाते आपको ये ट्रैक सुनवाएंगे म्यूजिक आर प्रोग्राम से। अब वृंदा को दीजिए इजाज़त, और थोड़ी ही देर में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी आपकी पसंद के नगमे।

म्यूजिकली कनेक्टेड हैं आप एफएम रेनबो कानपुर के साथ, और इस टाइम वक्त हो गया है आपके पसंदीदा नगमों को सुनवाने का। आपकी पसंद प्रोग्राम लेकर वृंदा है आज आप सभी के साथ, और बताना चाहेंगे कि पहला जो खूबसूरत नगमा हम प्ले करने वाले हैं वो है शराबी फिल्म से। तो चलिए आप सभी को एंजॉय कराते हैं ये ब्यूटीफुल सा नगमा।

और इसी खूबसूरत नगमे के साथ हम भी आ चुके हैं एफएम रेनबो कानपुर पर आपके पसंदीदा नगमे लेकर। और लगातार आपके ईमेल्स भी हम तक पहुंच रहे हैं और हम देख पा रहे हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये जो पहला मेल आया है और ये ईमेल फरमाइशी शराबी फिल्म से ही इन्होंने की थी। और बता दें कि ये नाम है मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर पन्नीलाल सागर आशीष कुमार सागर अमर सिंह हितेश सागर राजेश कुमार वर्मा रूबी भारती एकता भारती दिव्या भारती रचना भारती ओमवती भारती खनक शगुन सारांश आयांश अदिति वर्मा शिवांश और पृथक वर्मा। नई दिल्ली से हमें ईमेल भेजा है कमलेश मुकुल सचिन और दीपांशु ने। पुराना तालाब डुमराव से हैं वली उल्लाह अंसारी अस्मा नाज अंसारी और शबनम बानो। जेल रोड बक्सर से राज एसडी अंसारी और फातिमा नाज चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम डॉक्टर अदीबा डोंडी लोहारा छत्तीसगढ़ से प्रभा रानी चमोरिया। इंदिरा चौक दिल्ली से हैं अजीम वकार माहिरा अजीम और निशा अजीम। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू उमरखेड़ से श्वेता सोनी प्रमीला सोनी और सरिता सोनी। जालंधर से हैं रोशन जहां मन्नत जहां और सीमांत पार्क राजकोट से हेमा गुजराती और प्रमीला गुजराती। उमरखेड़ से सिराज खान और आमिर खान कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी। तो चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अजनबी फिल्म से आप सभी को एक खूबसूरत सा नगमा सुनवाते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में ये अगला नगमा जो है ना वो भी किशोर दा की ही आवाज़ में है। आरडी बर्मन का संगीत है और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने। तो एंजॉय कीजिए आपकी पसंद प्रोग्राम में आप सभी की पसंद में से एक खूबसूरत नगमा।

ये खूबसूरत नगमा आप सभी ने सुना। ये जो अभी आप इंजॉय कर रहे थे शराबी फिल्म से किशोर दा और आशा भोसले की आवाजों में, अनजान के लिखे गीत को बप्पी लहरी ने संगीत से सजाया।

हमारे श्रोताओं के, हमारे लिसनर्स के ईमेल्स लगातार हम तक पहुंच रहे हैं और ये अगला ईमेल आया है, ये हैं पूजा डॉली जमोरिया, ये डोंडी लोहारा से हमें ईमेल कर रही हैं, साथ ही प्रभा जमोरिया और अनुश्री जमोरिया भी हैं। सहारनपुर से हैं सोनाली और पथिक। झांसी से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव और कशिश जाटव। उमरखेड़ से वैशाली और शैलेश। सहारनपुर से एक और ईमेल हम तक पहुंचा है, ये है संदीप और सुरेश का, साथ ही जालंधर से दीपक और राजू। झांसी से आशा और प्रभा, और प्रभा राधिका मुखर्जी ये डुमराव से हमें ईमेल कर रही हैं। छत्तीसगढ़ से हैं शंकर देव जाधव और राधिका जाधव, और साथ ही साथ प्रभा जोशी, सुरेश और कौशल्या सहारनपुर से। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमरा रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सैयद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और समस्त अब्बासी परिवार। मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा श्री गंगानगर राजस्थान से। गांव फ्रांसी हिसार से हैं राजकुमार, प्रमोद और पुष्पेंद्र कुमार डॉडी।

और आइए आप सभी को अब अनोखी अदा फिल्म से किशोरदा की आवाज में खूबसूरत नगमा सुनवाते हैं। और ये जो मैं प्ले करने वाली हूँ, इसे संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत के बोल लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने।

एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल से 102.2 एफएम रेनबो कानपुर से इस टाइम आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पसंद के नगमे, आपकी पसंद प्रोग्राम में।

नमक हलाल फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने ये नगमा सुना। बप्पी लहरी का संगीत था और गीत के बोल लिखे थे अनजान ने। और साथियों, आपको हम बता दें कि लगातार आपके ईमेल्स हम तक पहुंच रहे हैं, और ये जो अगला ईमेल आया है मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रही हूं कि ये ईमेल आया है राजस्थान से, और ये हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, योगेश, दीपक और पूजा। जालौन से हमें ईमेल करा है सत्येंद्र कुमार चौरसिया, आदर्श, सार्थक, आलौकिक और समस्त परिवार ने।

अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री, ये हमें ईमेल आया है पांडर कवड़ा से। मुंबई से किशोर, सुजाता और प्रतीक। अमरावती महाराष्ट्र से हैं सिद्धार्थ, अर्चना, प्रणय और हीरामणि। गांधीनगर गुजरात से हैं सुरेश, मंजुला, विशाल और निशा। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से ये हैं नाना जी लामसे, मीना लामसे, तेजस, जय, हर्षिता और समस्त लामसे परिवार। कैथल हरियाणा से हैं जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा।

अगला खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए प्ले कर रही हूँ। मेरी प्लेलिस्ट में जो अगला गाना है ना वो है सौदागर फिल्म से। तो चलिए प्ले कर रहे हैं इस गाने को और आप भी एंजॉय कीजिए। आपकी पसंद प्रोग्राम में वृंदा है आज आप सभी के साथ।

सौदागर फिल्म से अभी आपने ये नगमा सुना। मनहर और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी साहब ने। आपकी पसंद प्रोग्राम में अगला जो ईमेल आया है ये है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिप्पा, कपिल छिप्पा, ईशान और पूजा परिहार। झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु, तासु, अर्पण, आनंद, सत्यम और समस्त परिवार। पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना और गुड्डी।

नांदेड़ से प्रभाकर और आरती, चंडीगढ़ सिटी से हैं सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, आजाद नगर लश्कर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू, और अगला गाना सुनवाने से पहले लास्ट जो ईमेल है वो हम बताना चाहेंगे। ये आया है नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, श्रीमती अंशु राघव गुप्ता का। तो चलिए अगला आपको गाना सुनवाते हैं और ये है यादों की बारात फिल्म से।

0: यादों की बारात फिल्म से आशा भोसले और किशोरदा की आवाजों में अभी आपने ये खूबसूरत नगमा सुना। आर डी बर्मन का संगीत था और गीत के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
2: हमारे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
3: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
2: तो अपनी फेवरेट

0: वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
1: हमारे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होंठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
2: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
1: तो अपनी फेवरेट

0: FM@gmail.com पर, यानी कि FM@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर, मेल मिलाप।
1: नमस्ते कानपुर, मैं हूँ मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।

कानपुर शहर के म्यूजिकल हार्टबीट से इस टाइम आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पसंद के नगमे। जी हाँ, आपकी पसंद प्रोग्राम ओनली ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में बरसात फिल्म से ये था एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक। नदीम श्रवण का संगीत था और गीत के बोल लिखे थे समीर ने। अगला ईमेल आया है, ये है जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, इंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। डॉक्टर सुरेश, अनीता, आरती, पूजा, प्रसाद, सोनल और सिया, ये ईमेल भेजा है हमें नेहरू चौक से। और साथ ही साथ जालना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाथव ने भी हम तक ईमेल पहुंचाया है। छत्तीसगढ़ से हैं गुनी राम राजपूत, संतोषी, प्रेम प्रभा, हेमा, पुष्पराज, सूरज और समस्त राजपूत परिवार। आशा सपकाल, किशन सपकाल, सोनिया, साईंराज और विशाल सपकाल शास्त्री नगर बीट शहर से। शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, टीडी मल्होत्रा, ये हैं कालका से। पीएस नावार, निर्मला और विशाल, ये नरवेल से।

आइए आपको सुनवाते हैं प्रोग्राम में ये लास्ट सॉन्ग हरिहरन और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में इतिहास फिल्म से, दिलीप सेन समीर सेन का संगीत और गीत के बोल लिखे समीर ने। आइए चलते चलते एंजॉय कीजिए ये गाना और इस गाने के उस पार आपको लेकर चलेंगे हमारे लखनऊ केंद्र। अब दीजिए वृंदा को इजाजत आपकी पसंद प्रोग्राम से।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गौतम बुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा क्षेत्र में अंबर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड तथा एसेंट के सर्टिकेट्स के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार की औद्योगोन्मुखी नीतियों, बेहतर आधारभूत अवसंरचना और निवेशक अनुकूल वातावरण के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश आज इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बन रहा है। यह निवेश, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति प्रदान करेगा। केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत पहले 40,000 करोड़ रुपए का पीसीबी आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में स्वीकृति बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली से लखनऊ, वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलेगी। जेवर से लखनऊ का सफर मात्र 1 घंटे 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर नोएडा पर आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चतुर्थ संस्करण की

टेन रेजर सेरेमनी और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की 105वीं जयंती के अवसर पर उनके विकास और विरासत में जुड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की कार्यवाही परिषद की अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में श्री नरसिम्हा राव के महत्वपूर्ण राजनीतिक सफर से जुड़े दुर्लभ चित्र, आधिकारिक दस्तावेज, भाषण, पत्राचार और अन्य सामग्री दिखाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण करेगी। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित होगा। आप सभी सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जी आरोसों, 5:03 का समय और ये वक्त चला है विशेष कार्यक्रम क्षेत्रीय समाचार की विशेष प्रस्तुति मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ। इसको सुनिए और इसके बाद में लौट करके आइए मेरे यानी उत्कर्ष के साथ। और इस कार्यक्रम में हम सभी आगे सुनेंगे टॉप 10 गानों के साथ में कुछ प्यारी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत सी बातें।
1: क्रम में आज आप सुनेंगे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2026 में पद्मश्री से सम्मानित मंगला कपूर से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी प्रतिनिधि मनीष सिंह।
2: नमस्कार, मैं मनीष सिंह। हमारे सामने हैं मंगला कपूर, जिनको पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। आइए जानते हैं इनकी जिंदगी के बारे में कुछ अंश हुए पर। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा और कैसा बीता ये बचपन, खासकर एसिड अटैक।
3: बचपन क्या होता है मैं जानती नहीं, क्योंकि 12 वर्ष की अवस्था थी तब मुझ पे एसिड अटैक किया गया। तो उसके बाद का जो जीवन है सारा हॉस्पिटल में ही बीता। तो बचपन नाम की जो चीज होती, जो खेलते कूदते बिताते हैं लोग, वैसा कुछ तो मेरे साथ गुजरा नहीं बहुत दिन तक। फिर लगातार हॉस्पिटल में थी, ऑपरेशन होते गए शरीर के जगह जगह के, यहाँ भी हुए कुछ, पटना में हुए, तो कुल 36-37 ऑपरेशन मेरे हुए हैं शरीर के।
2: किस तरीके से एसिड अटैक के बाद आपकी जिंदगी बदल?
3: ऐसा है, एसिड अटैक के बाद तो ऐसा ही नहीं था कि शायद जी पाऊंगी, लेकिन पहले तो जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जब जी गई थी तो फिर परिवार वालों की मेहनत, माता पिता का पूरा सहयोग, और ठीक होते होते ही मुझे बहुत समय लग गया। उसके बाद बाहर निकलना या समाज में उठना बैठना, सामाजिक शारीरिक आर्थिक मानसिक हर तरह से मैं तो टूट ही गई थी, पूरा परिवार डिस्टर्ब था। तो वो यात्रा बड़ी दुखद रही और बहुत संघर्ष भरी रही। उसको छोटे में बयान करना बड़ा मुश्किल है, ये थोड़े से मैं कुछ बता दूं। जी,
2: कौन सी ऐसी शक्ति थी, कौन सी ऐसी हिम्मत थी कि आपने फिर से सर्वाइव किया, कौन सी वो शक्ति थी?
3: देखिए, पारिवारिक जो परिवेश हमारा रहा है वो आध्यात्मिक रहा है ज्यादा, और शक्ति की बात तक देखिए, छोटी बच्ची में यंग हो रही थी उस समय तक इतनी कोई शक्ति तो अंदर आती नहीं है। पढ़ने लिखने की उम्र में तो मैं बेड पे पड़ गई, और जब बेड पे पड़ गई तो ये जरूर है कि मुझे बचाने का, उठ खड़ा करने का श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। तो जब मैं ठीक हुई, घर में बैठी, तो मेरे पिताजी को हमेशा ही चिंता रहती थी कि बच तो गई है लेकिन जीवन कैसे होगा, जीवन कैसे चलेगा, पढ़ना लिखना भी छूट ही गया था उसकी वजह से। तो वो बराबर प्रेरित करते रहे कि मतलब बेटा तुम्हें कुछ करना है, फिर से पढ़ाई चालू करो। और मेरा संगीत

0: संगीत में बचपन से बहुत रुचि रही, तो उनको ये लगा कि ना वो संगीत ही सिखाए ताकि इसका मन भी उसमें उलझा रहे और कुछ कर सके उसमें, तो उन्होंने म्यूजिक स्कूल में मुझे डलवा दिया था। फिर वहाँ मैंने संगीत सीखना शुरू किया। फिर बीएचयू में मेरा एडमिशन हुआ, तो वहाँ से भी मुझे न्यूयॉर्क पीएचडी तक की पढ़ाई मैंने बीएचयू से की और बराबर स्टेज प्रोग्राम फिर मैं करने लगी, जहाँ मुझे काफी मान सम्मान मिला। मुझे मेरी आवाज को लोगों ने हाथों हाथ लिया, मुझे काशी की लता का सम्मान भी मिला है। तो इस तरह करके वो यात्रा वैसे शुरू हुई और फिर बीएचयू में मुझे नौकरी मिल गई और फिर वहाँ अध्यापन का कार्य मैंने शुरू किया। फिर मैं लेक्चरर के पद पे हुई थी, फिर रीडर प्रोफेसर तक की जर्नी मैंने वहाँ प्रोफेसर बनी हेड
1: जर्नी की। तो क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव लगा बीएचयू में शिक्षक के दौरान आपको?
0: बीएचयू ने तो मुझे बहुत प्रेम दिया, मीन्स जब मैं सीख रही थी मेरे गुरुजनों का बहुत आशीर्वाद था, वो मुझे बराबर प्रेरित करते रहते थे आगे बढ़ने। उन लोगों से भी बहुत स्नेह मिला कि नहीं मंगला बहुत अच्छा गाती है, तो तुम्हें तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुँच ही जाओगी। तो बाकी आवाज अच्छी थी जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ती चली गई।
1: क्या है ये सीरत, इसमें कौन से आपके जीवन के पहलू आए हैं?
0: जो मैं आपको बता रही हूँ कि बचपन से जो कहानी मेरी शुरू हुई, उन संघर्षों को मैंने सीरत के अंतर्गत लिखा है ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले। जो थोड़ी सी नाकामयाबी से संघर्ष करने से चुराते हैं जी, आत्महत्या कर लेते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो उन लोगों को एक प्रेरणा मिले कि मैंने भी इस तरह, आप सोचिए मैं गलियों में रहती थी, लेकिन ये लगन थी, माँ बाप की प्रेरणा थी, नहीं तुम्हें कुछ करना है, किसी लक्ष्य पे पहुंचना है। तो वहां से पैदल तक आती थी मैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ आर्थिक शारीरिक मानसिक और सामाजिक हर तरह की यातनाएं सहनी पड़ी उस बीच। सीरत मैंने इसीलिए लिखी। तो फिर बॉम्बे तक जब उसकी वो पहुंची तो फिर वहां से डायरेक्टर आए थे, मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी, उसके बाद फिर पूरी फिल्म जो है मराठी में बॉम्बे में बनी और महाराष्ट्र में वो पूरे प्रदर्शित भी की गई और अब वही फिल्म हिंदी रूपांतर उसका हो रहा है।
1: आपको पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया, क्या खास मायने हैं इस सम्मान के आपकी जिंदगी में?
0: मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत मायने की मतलब सोच नहीं सकती। उसके पहले भी मुझे देखिए स्टेट लेवल के भी अवार्ड मिले हैं, अच्छे अच्छे अवार्ड काफी मिले हैं। योगी जी ने रोल मॉडल का पुरस्कार दिया, मोदी जी भी मिले हैं, राज्यपाल ने भी दिया है, सबने मेरा काम देख करके, मेरी लगन और मेरी निष्ठा। और अभी तक रिटायर हो गई हूँ लेकिन मैंने कर्म नहीं छोड़ा है, मैं अभी भी फील्ड वर्क करती हूँ, दिव्यांगों के साथ जुड़ के काम करती हूँ और भी संस्थाओं से जुड़ी हूँ, बैठी नहीं हूँ, कुछ न कुछ करती रहती हूँ। और छठी पुस्तक का लेखन अभी आधे से ज्यादा हो चुका है और फिर वो भी जल्दी ही आ जाएगी।
1: शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना करने वाले लोगों के लिए कौन सा संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए शरीर बहुत मायने नहीं रखता, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, एक उम्र के बाद एक विकृति सभी की चेहरे पर आ जाती है, फिर वो चार्म नहीं रह जाता है, तो जो उम्र के साथ साथ बढ़ना ही है ना, बाद में बहुत खूबसूरती नहीं रह जाती है। तो शरीर ये तो चमड़ा है ना, ये खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, लेकिन आपका कर्म जो है वो हमेशा जीवित रहेगा। लेकिन मेरे साथ विशेष इसलिए था कि मेरे ऊपर एसिड अटैक से मेरी नाक गल के निकल गई, कान खराब हो गया, चेहरा विकृत हो गया, तो ये विशेष रूप से जो विकृति आई जो कि बचपन से ही शुरू हो गई, तो समाज ने भी उसको पहले बताया, तो आपको मुझे संबोधन मिलते थे, नाक कटी जा रही है, देखो इसका मुंह कैसा है, और तो ये भी मुझे संबोधन सहना पड़ा। उस समय मैं नील थी, मेरे पास कुछ था नहीं, लेकिन इतनी उम्र बीतने के बाद ये समझ में आया कि आपके अंदर जो अंदर की जो खूबसूरती है, यानी आपके अंदर कोई विशेष बात है, आपने किसी फील्ड में कुछ विशेष अलग हटके किया है, तो उसको दुनिया सम्मान से देखती है और देखती रहेगी, क्यों नहीं देखेगी। कर्म लेकिन अच्छा करते रहे, तो बस यही कहना चाहूंगी कि देखिए अपनी जो इच्छा शक्ति है, अपना जो विल पावर है, क्षति हो गई कहीं से कोई बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर की जो प्रतिभा है उसको कोई नहीं जला सकता।
1: बिल्कुल,
0: आपके अंदर भी कोई ना कोई, हाँ कोई ना कोई प्रतिभा तो होगी किसी क्षेत्र में, अगर आप जिंदा हैं तो फिर से लड़िए समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये लड़ाई है भैया। और आज इतने ज्यादा कंपटीशन है, और हमारे समय तो उतना विकल्प नहीं था, आज तो बहुत सारे विकल्प हैं, आप इस क्षेत्र में कंप्यूटर के चले जाइए तो संगीत में म्यूजिक में भी इतने सारे, और परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, इतने रियलिटी शोज आते हैं, तो जिसमें जो भी प्रतिभा हो वो आगे बढ़ के उसको अपना संवारे और वही एक रास्ता पकड़ के हिम्मत नहीं हारे, उस पर चलता रहे जब तक जीवे, लोगों के लिए प्रेरणा बने, है ना।
1: क्या बाकी रह गया आप जिंदगी और कुछ करने के लिए, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में,
0: कोई भी क्षेत्र हो? मुझे ये नहीं लगता, कर्म के लिए कोई उम्र नहीं होती है, और आदमी जब तक जीता है तब तक कर्म करते रहना चाहिए। और मेरा तो ये अनुभव भी है कि अगर आप शरीर को चलाते रह रहे हैं तो उम्र कोई मायने नहीं रखती है, अंतिम समय तक लड़ना चाहिए, कर्म करते रहना, और जो भी मुझसे अच्छे से अच्छा हो पाए।

0: जाएगा वो करना चाहूंगी, अभी भी कर रही हूँ, आगे भी जब तक है जिंदगी, जब तक मैं सक्षम हूँ चलने फिरने में, मैं बिल्कुल करूंगी। ये तो अचीवमेंट, मैंने तो पद्मश्री मांगा नहीं था, ये मांगे नहीं थे, अपने आप आते गए मिलते गए। तो ये होता क्या है, उससे एक जो करने का उत्साह है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है कि नहीं चलो मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज समाज भी पूछ रहा है, जो समाज मुझे नागारा समझता था आज वो समाज भी मुझे पूछ रहा है, बुला के वो भी मुझे सम्मान देना चाहता है। तो आपका जो कर्म है वो आपको सब कुछ दिला सकता है, हाँ, इसलिए करते रहना।
1: बड़ी से बात लेके आपका बहुत बहुत आभार,
0: धन्यवाद।
2: विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2026 में पद्मश्री से सम्मानित मंगला कपूर से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी प्रतिनिधि मनीष सिंह।
3: स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो,
4: धड़कन लखनऊ की।
5: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
6: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
5: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
7: रियारसों 5:12 का समय, अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम लखनऊ से और चलिए अब आगाज करते हैं टॉप 10 गानों के इस सिलसिले का। तो इस टॉप 10 गाने के इस कार्यक्रम में भैया हम लोग 10 गाने सुनते हैं और उन 10 गानों को सेलेक्टिवली हम जो आरजेस हैं वो लेकर के आते हैं आपके लिए बहुत ही चुन चुन के ढूंढ ढूंढ करके। तो उन गानों को इंजॉय करिए क्योंकि आज के गाने जो हैं टॉप 10 में वो बहुत ही सूदिंग है, रिलैक्सिंग है। तो अपने आप अगर आप घर में हैं या कहीं पर जा रहे हैं बाहर, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सो मत जाइएगा, लेकिन अगर आप रिलैक्सिंग मोड में हैं तो और भी ज़्यादा रिलैक्स करने के लिए ये कार्यक्रम आपके लिए आ चुका है। इन गानों को एंजॉय करिए, इन गानों को सुनिए और मेरे यानी उत्कर्ष के साथ बने रहिए और 100.7 FM रेनबो की जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको ट्यून इन करके हमेशा रखे रहिएगा भैया।

जी दोस्तों, 5:22 का समय और मैं तेरे पास में हूँ और आप मेरे पास में हैं। हम सभी सुन रहे हैं टॉप 10 गानों के इस सिलसिले को। तो दोस्तों, हम इस टॉप 10 गाने के सिलसिले में 7वें गाने तक पहुँच चुके हैं। तो आइए 7वें गाने को प्ले करते हैं, इन्जॉय करते हैं, सूदिंग मूड को बरकरार रखते हैं, कम्फर्टेबल होते हैं और डूब जाते हैं उन यादों में, जिन यादों को हम अक्सर अपने दिमाग में अवॉइड करते रहते हैं।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें। चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, 5:36 का समय और इस टॉप 10 गानों के इस सीक्वेंस में हम सभी पहुंच चुके हैं छठे गाने की तरफ। और हम लोग इसके बाद जो गाना सुनेंगे वो होगा नंबर 5 का गाना। तो नंबर 5 का गाना सुनिए, उसको एंजॉय करिए और इस सूदिंग से मोड में जो आप हैं, क्योंकि क्या होता है कि भैया हमारे मोबाइल फ़ोन को तो हम लोग एयरप्लेन मोड पर रख देते हैं, लेकिन कभी कभी अपने दिमाग को भी एयरप्लेन मोड पर रखना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। इन सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कंफर्टेबल से मखमली गानों को सुनिए और मेरे यानी उत्कर्ष के साथ बने रहिए और 100.7 FM रेनबो ट्यून इन रखिए, क्योंकि भैया गाने यहीं पर बज रहे हैं ना। और टॉप 10 गानों के सिलसिले में 4 गाने अभी और बाकी हैं, सो मत जाइएगा बस।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जी हाँ दोस्तों, 5:46 का समय और आप सुन रहे हैं टॉप 10 गानों के सिलसिले को मेरे यानी उत्कर्ष के साथ और फ्रीक्वेंसी है 90.7 FM रेनबो। तो दोस्तों, धड़कन लखनऊ की तो यही है और मुझे लगता है कि इसमें जितने भी गाने आज आप सभी सुन रहे हैं आपकी धड़कन का हिस्सा बन रहे हैं, आपकी धड़कन को रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि ये गाने सूदिंग है। ये गाने इस तरीके से लिख करके मैं लेकर आके आया हूँ कि भैया 10 गाने मैं बजाऊँ तो 10 गाने आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करें, आपको सूदिंग करें और इन गानों को सुनते रहिए। तीसरे नंबर का गाना आपके रेडियो सेट्स पर आ चुका है, तीसरे नंबर के गाने को एंजॉय करिए। मेरे यानी उत्कर्ष के साथ बने रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

नंबर एक के गाने की तरफ आइए, उस नंबर एक के गाने की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे इजाजत दीजिए, मेरे यानी उत्कर्ष को इजाजत दीजिए, और मैं चलता हूँ आपके लिए दूसरा कार्यक्रम लाने की ओर, जिसका नाम है शामे अवध। शामे अवध कार्यक्रम में हम लोग मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं, लखनऊ के इवेंट्स के बारे में जानते हैं, ट्रैफिक अपडेट लेते हैं। तो इन सभी चीजों को अगर सुनना है आपको, तो आपकी कुर्सी की पेटी खुलनी नहीं चाहिए, आप वहीं पर बैठे रहिए, वहीं पर मौजूद रहिए, क्योंकि अगला कार्यक्रम जो है वो शामे अवध है, बहुत ही खास है, बहुत ही खूबसूरत से गाने भी उसमें मैं प्ले करूंगा आपके लिए। तो दोस्तों नंबर एक का गाना सुनिए, इस टॉप 10 गाने के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, उसके बाद में बढ़ते हैं अपने शामे अवध की ओर और आगाज करते हैं इस लखनऊ की खूबसूरत सी शाम का।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज अयोध्या में राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत धाम क्षेत्र के मोहल्ला दुराही कुआं में नवनिर्मित दो आंगनबाड़ी केंद्रों और स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने आंगनबाड़ी केंद्रों की बाल वाटिकाओं का अवलोकन किया और बच्चों से संवाद किया। इसके बाद राज्यपाल ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया

विश्वविद्यालय पहुंचकर विकास कार्यों और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गौतम बुद्ध नगर में अंबर एवं एसेंट के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यह स्थान इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट के हब के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो चीज दुनिया से आयातित होती है वह यहां बने और दुनिया में निर्यात हो। श्री योगी ने कहा कि कोरिया के सहयोग से इस इकाई को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि कोरिया का उत्तर प्रदेश के साथ काफी ऐतिहासिक संबंध है। ऐसी मान्यता है कि वहां की रानी क्वीन होक अयोध्या की राजकुमारी श्री रत्ना थी और जलमार्ग से वहां पहुंची थी। उन्होंने कहा कि उनकी स्मृति में अयोध्या एक पार्क का भी निर्माण कराया गया है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कल से होगी। प्रदेश के सभी जनपदों में कल बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इस क्रम में आज उन्नाव में सदन विधायक पंकज गुप्ता ने जिला अस्पताल से जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। अमरोहा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमाकांत सागर ने 4 प्रचार वाहनों को रवाना किया। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में फायर सेफ्टी की सघन चेकिंग जारी है। इसी क्रम में अलीगढ़ नगर निगम ने पूरे शहर में 100 नए फायर हाइड्रेट पॉइंट्स लगाने का फैसला किया है। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रोजेक्ट के तहत सभी हाइड्रेट पॉइंट्स नगर निगम की मुख्य पानी की सप्लाई लाइन से जोड़े जाएंगे। जरूरत पड़ने पर दमकल के वाहन इनसे पाइप जोड़कर सीधे पानी ले सकेंगे, जिससे रिस्पॉन्स टाइम में कमी आएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सभी सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, 6:03 का समय और मैं उत्कर्ष आपके साथ जुड़ चुका हूँ एक बार और, क्योंकि कार्यक्रम आ चुका है आप सभी के रेडियो सेट्स पर शाम में अवध का, जिस कार्यक्रम को आप सभी बहुत ज़रा प्यार करते हैं और बहुत ज़रा इन्जॉय भी करते हैं। तो दोस्तों इस कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। इस कार्यक्रम में जैसा कि आप सभी को पता है, ट्रैफिक अपडेट्स पता चलती हैं आपको, लखनऊ में ऐसे क्या हलचल चल रही है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है और कैसे कैसे इवेंट्स हो रहे हैं, करंट अफेयर्स क्या हैं भाई लखनऊ के, तो लखनऊ के बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि शाम हो चुकी है और शाम में अवध कार्यक्रम भी आपके रेडियो सेट्स पर ऑन हो चुका है। आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा करके रखिए, 100.7 पर रखिए और मेरे यानी उत्कर्ष के साथ बने रहिए, क्योंकि शाम में अवध का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: शरीर में हार्मोन कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
3: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
4: जी हाँ दोस्तों, 6:10 का समय और शाम अवध कार्यक्रम में मैं उत्कर्ष हूँ आपके साथ। और आप जिस फ्रीक्वेंसी पे हैं उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं 100.7 FM रेनबो, और वो हम सभी की धड़कन है और लखनऊ की धड़कन है। तो भैया जान लेते हैं आज लखनऊ के ट्रैफिक का हाल क्या है। तो वीकेंड का मौसम है, तो जाहिर सी बात है भैया कि लखनऊ

इस वक्त सड़कों पर पूरी तरीके से मौजूद होगा। 1090 चौराहा, मरीन ड्राइव और हजरतगंज की तरफ जाने वाले रास्ते जो हैं वो ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, तो अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो फ्रस्ट्रेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार के शीशे थोड़े से नीचे कीजिए। मैं जानता हूँ कि बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि एल नीनो जैसा एक पता नहीं क्या थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, जो ज्योग्राफी के मुझे कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, लेकिन एल नीनो की वजह से भैया मानसून में देरी हो रही है। इस समय पर अक्सर हम लोग देखते हैं कि जून के अंत में मानसून की झमाझम बारिश होती है, लेकिन अभी लखनऊ में बारिश नहीं पहुंची है, तो आशा है कि भैया बारिश जल्दी से पहुंचे और हम उसका लुत्फ उठाएं, आनंद लें। लेकिन बाहर अभी थोड़ी सी हवा हो सकता है कि अच्छी हो, तो शीशा थोड़ा सा डाउन करिए, फ्रीक्वेंसी ऑन रखिए 100.7 FM रेनबो की, और सुनते रहिए मेरे साथ यानी उत्कर्ष के साथ इस शाम वक्त के खूबसूरत से कार्यक्रम को।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
3: धड़कन लखनऊ की।

धड़कन लखनऊ की और सुनना शुरू कर चुके हैं। अगर आप 100.7 FM रेनबो तो रुकना भी आपको नहीं है, क्योंकि शाम अवध कार्यक्रम चल रहा है। और आइए बात कर लेते हैं हमारे लखनऊ के कुछ इवेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे अवध शिल्पग्राम में हमारा बहुप्रतीक्षित मैंगो फेस्टिवल चल रहा है। दशहरी से लेकर मलिहाबादी चौसा तक आम की सैकड़ों वेराइटीज़ वहाँ मौजूद हैं। अगर आप आज शाम या कल संडे को आपका कोई भी प्लान नहीं है और आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं, तो मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप यहां पर ज़रूर जाएं, अपने परिवार के साथ जाएं और फलों के राजा स्वागत करें, फलों के राजा का, और पूरे शानो शौकत के साथ में फलों के राजा का स्वागत करें और मीठे मीठे आमों का लुत्फ उठाएँ और इस फेस्टिवल का इन्जॉय करें। फिलहाल आप इन्जॉय करिए शाम अवध कार्यक्रम मेरे यानी उत्कर्ष के साथ, और बने रहिए 100.7 FM रेनबो पर।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
2: जी हाँ दोस्तों, 6:32 का समय और आप सभी सुन रहे हैं शाम अवध के इस खूबसूरत से कार्यक्रम को, मेरे यानी उत्कर्ष के साथ आपके फेवरेट रेडियो चैनल 90.7 FM रेनबो पर। तो दोस्तों आइए शहर की कुछ एक और हलचल के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप थिएटर से बहुत ज़रा प्यार करते हैं तो एक बहुत दिलचस्प खबर है आप सभी के लिए कि भैया आज भारतेंदु नाट अकेडमी में एक बहुत ही बेहतरीन नाटक का मंचन हो रहा है जो लखनऊ के इतिहास और यहाँ की बदलती तहजीब पर आधारित है। हमारे शहर का जो थिएटर कल्चर है वो देश भर में मशहूर है। अगर आप मॉल और फिल्मों से हटकर कुछ लाइव और रूहानी देखना चाहते हैं तो शहर के थिएटर्स का रुख ज़रूर कीजिए, B&A जाइए और वहाँ पर थिएटर का लुत्फ उठाइए। और जो कलाकार हैं हमारे, जो थिएटर करते हैं, जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, उनका हौसला अफजाई करिए। तो दोस्तों मैं उत्कर्ष हूँ आपके साथ, आप सुनते रहिए 90.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की शाम में। आपका कार्यक्रम थमा नहीं है, यूं ही चलता रहेगा और प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर एनर्जेटिक से एंथुसियास्टिक से गाने आपके रेडियो सेट्स पर आते रहेंगे।

जी हाँ दोस्तों, 6:43 का समय मैं उत्कर्ष हूँ आपके साथ और शाम अवध के कार्यक्रम में हम सभी चर्चा कर रहे हैं लखनऊ की गर्मी के बारे में। तो भैया लखनऊ की गर्मी बहुत ज़्यादा आजकल आसमान तक पहुंच चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है इस समय। अगर आप देखें तो जून के इस समय में मानसून हिट करता है और बारिश होती है झमाझम, लेकिन एल नीनो के कारण हमारे बादल जो हैं भैया, जो प्यारे प्यारे बादल हैं जो बारिश लेकर के आते हैं हमारे देश में, वो बादल अभी तक हमारे देश में आ नहीं पाए हैं। तो उनका थोड़ा और इंतज़ार हमको करना पड़ेगा, इस बारिश का थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि हमको इस गर्मी से थोड़ी सी राहत मिले। और शाम थोड़ी हो चुकी है, थोड़ी सी राहत मिलना शुरू हो चुका है। सभी घर से बाहर निकलने की कतार में लग चुके हैं, गाड़ियाँ अपनी निकाल चुके हैं और कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं। कोई रिवर फ्रंट जा रहा है, कोई हजरतगंज जा रहा है, कोई 1090 जा रहा है। लेकिन भैया एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ट्रैफिक उतना ही ज़्यादा है इन इलाकों में, तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लेकर के चलिए। 6:44 का समय है, शाम अवध कार्यक्रम चल रहा है, मैं उत्कर्ष हूँ आपके साथ और 100.7 FM रेनबो पर आप मौजूद हैं।

जी हाँ दोस्तों, 6:54 का समय और घड़ी की सुइयां बहुत तेज से मुझे इशारा कर रही हैं कि भैया इस शामे वर के कार्यक्रम को यहीं पर थामा जाए और अगले कार्यक्रम जिसका नाम है हेलो एफएम, इसमें आप सभी लाइन लगा करके अभी खड़े होंगे फोन का अपना डायलर अपने हाथ में लेकर के कि भैया फोन हमारा लगे और हम अपने पसंदीदा गाने को रेडियो में शेयर करें और अपना पसंदीदा गाना सुने। तो दोस्तों बिल्कुल आपका कॉल उठाया जाएगा, आपसे बात करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन एक आखिरी गाना सुनते हुए जाइए और जल्दी से लौट करके आइए मेरे यानी उत्कर्ष के साथ, क्योंकि हेलो एफएम कार्यक्रम में आपकी आवाज़ सुनने के लिए मैं बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, आप सुनिए प्रदेश की टॉप 10 न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गौतम बुद्ध नगर में अंबर एवं एसेंट के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यह स्थान इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के हब के रूप में विकसित हो रहा है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गौतम बुद्ध नगर में शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत पहले 40,000 करोड़ रुपए की पीसीबी आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दिल्ली से लखनऊ, वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जेवर से लखनऊ तक सफर मात्र 1 घंटे 40 मिनट में पूरा होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज अयोध्या में राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत 2 आंगनबाड़ी केंद्रों और स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में विकास कार्यों और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा

दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की परिकल्पना को साकार कर रही है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कल से होगी। प्रदेश के सभी जनपदों में कल बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके बाद 29 जून से 30 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। उन्नाव में सदर विधायक पंकज गुप्ता ने जिला अस्पताल से जागरूकता रैली को रवाना किया। रैली के माध्यम से पोलियो की खुराक पिलाने की अपील की गई। वहीं अमरोहा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमाकांत सागर ने 4 प्रचार वाहनों को रवाना किया। पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से आज वाराणसी में जनपद स्तरीय जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से CMO डॉक्टर मुकेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जौनपुर के प्रगतिशील किसान सूर्यभान यादव को उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। जिला उद्घाटन अधिकारी डॉक्टर सीमा सिंह राणा ने बताया कि सूर्यभान यादव ने 1 हेक्टेयर भूमि में आम की 140 प्रजातियों का मॉडल बाग विकसित किया है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में फायर सेफ्टी की सघन चेकिंग जारी है। इसी क्रम में अलीगढ़ नगर निगम ने पूरे शहर में 100 नए फायर हाइड्रेट पॉइंट्स लगाने का फैसला किया है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 8 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। 7:03 का समय और वक्त आ चला है हेलो एफएम के कार्यक्रम के लिए। और जिस कार्यक्रम का आप सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं वो कार्यक्रम आ चुका है। और मुझे पता है कि भैया बहुत देर से कॉल लगा रहे थे और एक पहले लिसनर का कॉल मैंने उठा भी लिया है। आइए चलिए उनसे बात करते हैं, उन जानते हैं कि वो कहाँ से हैं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं और हमसे क्या कहना चाहते हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं, अपना नाम बताइए सबसे पहले।
1: मोहम्मद आसिफ अंसारी, हैदराबाद तेलंगाना से सर जी बात कर रहे हैं। और बताइए उसका सर जी कैसे हैं।
0: मैं एकदम बढ़िया हूँ आसिफ जी, क्या बात है। सबसे पहला कॉल आपका लगा और बड़ा मजा आएगा आपसे बात करने में।
1: टाइम ही नहीं 2 महीने से मिल रहा कॉल लगाने का, ईमेल से ही काम चला रहे हैं।
0: चलिए कोई बात नहीं, आज आपको समय मिला और आपका कॉल भी लगा, बहुत बहुत बधाई आपको। बताइए सबसे पहले कौन सा आप गाना सुनेंगे।
1: गाना ये दिल आतिकाना का है, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में।
0: क्या बात है।
1: और बताइए साहब, मौसम बताइए लखनऊ का।
0: भाई साहब मौसम तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है और मॉनसून लेट हो चुका है जैसा कि आप सभी को पता है।
1: 1 वीक से बारिश हो रही है।
0: अच्छा, वहाँ पे बारिश हो रही है। चलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि तेलंगाना ही आया जाए अब, है ना।
1: आओ ना, घुमाते आप लोगों को।
0: चलिए मैं बिल्कुल आता हूँ, क्योंकि
1: खिलाते आपको यहाँ का।
0: हाँ बिल्कुल मैं आता हूँ, क्योंकि भाई बारिश वहाँ पे हो रही है तो मौसम थोड़ा सा
1: मौसम रहता है।
0: चलिए बहुत अच्छा है आपका गाना।
1: हवा भी अच्छी चलती है।
0: हाँ बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं आता हूँ तेलंगाना, आपको बताता हूँ और आपका गाना प्ले करते हैं, गाना सुनते
1: कुछ
0: हैं।
1: लोगों के नाम ले लें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, नाम लीजिए आप।
1: ये हमारे बड़े भाई हैं मोहम्मद तालिब और सादिया अंसारी, साहिबा अंसारी, बबीता राव दीदी और रोशनी रावत दीदी।
0: क्या बात है,
1: चंडीगढ़ से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है।
1: कोसाम्बी के मेरे दोस्त हैं मोहम्मद राशिद भाई।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, इन सभी को ये गाना सुनाते हैं,
1: जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी लोगों को।
0: चलिए सभी को ये गाने डेडिकेट करते हैं, इस गाने का एंजॉय करते हैं और बने रहते हैं 100.7 FM रेनबो पर। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: जी हाँ दोस्तों, 7:10 का समय और हेलो FM कार्यक्रम में मैं उत्कर्ष हूँ आपके साथ, और 100.7 FM रेनबो को आप ट्यून इन कर चुके हैं। तो आइए जल्दी से, हमारे लिसनर बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं हमसे बात करने के लिए, हमको अपना पसंदीदा गाना बताने के लिए, और उन्होंने बहुत दूर से भैया हमको कॉल किया है। तो आइए उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि भैया उनको कौन सा गाना सुनना है और हमसे क्या कहना चाहते हैं। हेलो,
3: दूर है आपसे मगर कोई गम नहीं,
2: वाह,
3: दूर है कर भी आपको बुलाने वाले हम नहीं।
2: क्या बात है,
3: मुलाकात हो चाहे ना हो तो क्या हुआ, आप दोस्तों की यादें मुलाकात से कम नहीं।
2: क्या बात है, बहुत बढ़िया जो आपका इंट्रोडक्शन है, आपने शेर के साथ में अपनी बात शुरू करी, क्या बात है, बहुत ही मजा आ गया। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए भाई साहब आप।
3: सर जी प्यार भरा नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: VPO कोटली थान सिंह डिस्ट्रिक्ट जालंधर से मिंटू चंदेल जी।
2: क्या बात है मिंटू जी, आप जालंधर से आपको हमने आपने हमको कॉल किया है।

0: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी शायरी सुन करके। सबसे पहले बताइए भाई साहब, आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: पहले तो यही है भी, मैं जो जो मेरी पसंद और मेरे एक बहुत ही प्यारे मित्र ने वो जिला हुशियारपुर से, और टेलरिंग का टेलर मास्टर ने, उनका नाम है पाली साहब। कभी कहो मैं उनको भी उनको भी कहा है, बताया भी, सुना करें एफएम रेनबो लखनऊ पर, और उन्होंने डाउनलोड किया है ऐप पर, ऐप पर बहुत सुनते हैं और मैं भी ऐप पर सुनता हूँ। और बहुत ही अच्छे प्रोग्राम लगते हैं आप लोग, आप तो जो भी प्रोग्राम पेश करते हैं, ज्यादा खास करके मैं यही प्रोग्राम सुनता हूँ, और जो रात को चलता है रजनीगंधा
0: जी मैं सुनता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सुनते हैं और इस कार्यक्रम को आप पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगा यह बात सुन करके। जी बताइए कौन सा आप गाना सुनेंगे, हमारे श्रोताओं को कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे?
1: हाँ जी आप सुना दीजिए, फिल्म है आसपास और लता जी की आवाज में, शहर में चर्चा है।
0: शहर में चर्चा है, क्या बात है। चलिए आपके इस गाने को प्ले करते हैं और आप सुनते रहिए एनेडोट 7 FM रेनबो। किसी का नाम अगर आप लेना चाहते हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
1: जी बस वही पाली साहब है, और जो भी सुनना इस टाइम 101.7 सुन रहे हैं, सभी को खास करके जो एक गुड़िया आती है ना, दो गुड़िया आती जो नाम होते हैं पिंकी रिंकी,
0: जी
1: उसका नाम बहुत है, मैं सुनता हूँ रेडियो पर, बहुत ही अच्छा लगता है, और उनको भी ये गाना पसंद आएगा, और खुश रहे आवाज रहे आप लोग सभी लोग।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मिंटू जी, जलंधर से आप हमको सुनते रहिए और इसी तरीके से हमको प्यार करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
1: शुक्रिया आपका, शुक्रिया।

0: जी सुन, 7:18 का समय और आप सुन रहे हैं हेलो एफएम कार्यक्रम मरियानी उत्कर्ष के साथ अपने फेवरेट रेडियो सेट 100.7 एफएम रेनबो पर। तो दोस्तों 7:18 का समय है, 7:20 से आप सभी सुनेंगे प्रादेशिक समाचार लखनऊ से और उसके ठीक बाद 2 मिनट तक आप सुनेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 की डेली अपडेट्स, वो भी अंग्रेजी में। तो दोस्तों प्रादेशिक समाचार सुनकर के और फीफा वर्ल्ड कप जो फुटबॉल के प्रेमी हैं वो अपनी इन सभी खबरों को सुनकर के वापस आइए, क्योंकि आपके कॉल का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं और आपसे बात करने के लिए, आपके पसंदीदा गाने सुनने के लिए मैं यहां पर इंतज़ार कर रहा हूं। दोस्तों मेरे यानी उत्कर्ष के साथ बने रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल FM रेनबो।
4: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो FM की।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गौतमबुद्ध नगर में 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रखी आधारशिला। 2,478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री एमएसएमई दिवस पर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो में सम्मिलित हुए, कहा विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में एमएसएमई उद्यमों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची अयोध्या। नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का किया उद्घाटन। अवध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यों की समीक्षा की। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के

0: साथ मैं मुक्ता शर्मा, समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गौतमबुद्ध नगर में 2,478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सेक्टर 96 में बने नोएडा प्राधिकरण के नए मुख्य प्रशासनिक भवन का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 2 बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला भी रखी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ केन्द्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में आज प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब बन रहा है। ये निवेश रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति प्रदान करेगा।
1: सेमीकंडक्टर यानी यह आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत का केंद्र बिंदु या क्षेत्र बने और आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नए हब के रूप में इस क्षेत्र को स्थापित करने के लिए जो चीज दुनिया से हम आयात करते हैं वह हमारे यहां बने।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीसीबी सर्किट के बारे में विस्तार से समझाते हुए कहा कि पहले इसे भारत आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी, जिन्होंने एक ऐसा विजन दिया कि प्रधानमंत्री जी के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को आज उत्तर प्रदेश में जेवर में ले आए, तो अब सेमीकंडक्टर के बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा सेंटर जेवर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि दिल्ली से लखनऊ, वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलेगी। लखनऊ से जेवर तक का सफर 1 घंटा 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम में अपने संबोधन में भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग की इकाइयां लगने से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे। एमएसएमई दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों और उद्यमियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर आज देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आज नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ग्रेट ट्रेड शो के चौथे संस्करण के कर्टन रेजर सेरेमनी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्य कर रही हैं, जिसमें 3 करोड़ से अधिक लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना तभी साकार होगी जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकाई मजबूत होगी।
3: कोई भी बड़ा उद्योग का आधार बनता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। बड़ा उद्यम तभी सफल हो सकता है जब हमारे पास आधार होगी, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। विकसित भारत की संकल्पना तब पूरी होगी जब खुशहाल किसान भी होगा, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर को भी उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें।
0: कार्यक्रम को प्रदेश औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी भी संबोधित किए कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मूल्यों, आदर्शों की राजनीति अपनाकर शून्य से शिखर तक की यात्रा की है। सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की यात्रा सत्ता प्राप्त की यात्रा नहीं है, बल्कि सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और समन्वय की बेहतरीन यात्रा है। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा आज सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास का प्रतीक बनी है।
4: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नयन का जो आधार है और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रखकर के बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। इस पूरे अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ते हुए इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य, आदर्श, ये संस्कार समाहित हो सके, इसको ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण महाअभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं।

0: और अब शेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज दो दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंची। राज्यपाल ने राज्य स्मार्ट सिटीज मिशन योजना के अंतर्गत अयोध्या धाम क्षेत्र में ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे के निकट नवनिर्मित दो आंगनबाड़ी केंद्रों और स्मार्ट क्लास रूम का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने इस दौरान बच्चों के साथ संवाद भी किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बच्चों के समुचित शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए प्रारंभिक अवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संतुलित पोषण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बच्चे की प्रथम शिक्षिका उसकी मां होती है, उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र व्यक्तित्व निर्माण की महत्वपूर्ण आधारशिला बनते हैं। इसके बाद उन्होंने डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पहुंचकर विकास कार्यों और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कल से होगी। प्रदेश के सभी जनपदों में कल बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसी क्रम में आज उन्नाव में सदर विधायक पंकज गुप्ता ने जिला अस्पताल से जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से अभिभावकों से आग्रह किया गया कि वे अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। अमरोहा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रमाकांत सागर ने 4 प्रचार वाहनों को रवाना किया। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में फायर सेफ्टी के सघन चेकिंग जारी हैं। इसी क्रम में अलीगढ़ नगर निगम ने पूरे शहर में 100 नए फायर हाइड्रेट पॉइंट्स लगाने का फैसला लिया है। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रोजेक्ट के तहत सभी हाइड्रेट पॉइंट्स नगर निगम की मुख्य पानी की सप्लाई लाइन से जोड़े जाएंगे। जरूरत पड़ने पर दमकल के वाहन इनसे पाइप जोड़कर सीधे पानी ले सकेंगे, जिससे रिस्पॉन्स टाइम में कमी आएगी। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कल प्रयागराज में ऊर्जा विभाग, नगर विकास विभाग एवं विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनहित से जुड़े सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने बिजली से संबंधित किसी भी समस्या अथवा शिकायत का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा है कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाकर उन्हें तय समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कर लिया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि वर्षा काल को देखते हुए सभी नालों के समयबद्ध सफाई कर जल भराव की समस्या से नागरिकों को राहत दिलाई जाए। जौनपुर के प्रगतिशील किसान सूर्यभान यादव को उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी डॉ सीमा सिंह राणा ने बताया कि सूर्यभान यादव ने 1 हेक्टेयर भूमि में आम की 140 प्रजातियों का मॉडल बाग विकसित किया है। इस बाग से प्रतिवर्ष 200 क्विंटल आम का उत्पादन होता है, जिससे उन्हें करीब 4 लाख रुपए का वार्षिक लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी 3, 4 और 5 जुलाई में आयोजित होने वाले आम महोत्सव में श्री यादव को यह सम्मान दिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गौतमबुद्ध नगर में 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रखी आधारशिला। 2,478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री एमएसएमई दिवस पर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो में हुए सम्मिलित। कहा, विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में एमएसएमई उद्यमों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दो दिवसीय दौरे पर पहुंची अयोध्या। नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का किया उद्घाटन। अवध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यों की समीक्षा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन अब समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: Through. Egypt's 1-1 draw with Iran also sees them progress. Iran will have to wait to see if they will qualify. They had a late goal ruled out and also hit the post in the final minute of stoppage time. Belgium finished top with a 5-1 win over New Zealand. Results elsewhere mean both England

0: जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हेलो एफएम कार्यक्रम में। मैं उत्कर्ष हूँ आपके साथ और 7:32 का समय हो चुका है। आप सभी ने 7:20 से 7:30 तक का प्रादेशिक समाचार सुने, उन्हें सभी समाचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आपने फीफा वर्ल्ड कप 2026 की लाइव अपडेट्स भी सुनी, वो भी प्योर अंग्रेजी में। तो दोस्तों आइए इस हेलो एफएम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे जो श्रोता हमारे साथ में बहुत देर से जुड़े हुए हैं उनसे बात करते हैं, उनका पसंदीदा गाना बजाते हैं और एंजॉय करते हैं। भाई साहब हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं भाई?
1: रिंकू बोल रहा हूँ, नारायणपुर से।
0: जी
1: नारायणपुर से रिंकू।
0: थोड़ा सा तेज बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है।
1: नारायणपुर से रिंकू बोल रहे हैं।
0: रिंकू जी क्या बात है, रिंकू जी कैसे हैं आप?
1: बाराबंकी जिले।
0: अरे वाह, बाराबंकी से बात कर रहे हैं आप रिंकू जी?
1: पड़ता है।
0: अच्छा, चलिए मैं आऊंगा किसी दिन। और ये बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: गाना वो सुना दीजिए।
0: नाम
1: नहीं याद लेकिन गाने के बोल है, आपकी दुश्मनी कबूल, मुझे आपकी दोस्ती से डरता।
0: आपकी दुश्मनी कबूल,
1: दोस्ती से डरता।
0: क्या बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप मेरी दोस्ती। चलिए लेकिन हम लोगों की दोस्ती होगी कि नहीं रिंकू जी? चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप मुझे अपना दोस्त मानते हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा, मेरी भी तमन्ना थी कि मैं रिंकू जी से बात करूं।
1: इस चैनल पर दूसरी बार आज बात हुई, एक बार सर्विस सर्विस बात हुई।
0: अच्छा चलिए,
1: म्यूजिक आर्टिस्ट हूं।
0: क्या है आप?
1: म्यूजिक बजाते हैं।
0: अरे वाह क्या बात है, तो चलिए किसी दिन समय होगा तो आपके बिल्कुल सुनेंगे, है ना? और चलिए मैं मेले में आता हूँ और आपसे मिलता हूँ, आप वहाँ पे मुझे सुनाइएगा, है ना? और चलिए आपके गाने को उसको प्ले करते हैं और किसी को डेडिकेट कर रहे हैं, कुछ और बोलना चाहते हैं, किसी का नाम लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते
1: हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, इनको ये
1: ओमकार है सीतापुर से।
0: जी
1: विनीत है सीतापुर से।
0: चलिए
1: और रोहिणी मोहिनी हरदई से।
0: वाह,
1: और रिंकी पिंकी रायबरेली से।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, इन सभी को ये
1: समस्त सुनने वालों को और आप इस चैनल टीम को और आपको।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे भी डेडिकेट किया, हमारी पूरी टीम को डेडिकेट किया और जितने भी नाम आपने लिए हैं उनको ये गाना सुनाते हैं। और आप भी सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। चलिए बहुत अच्छा लगा, और इस प्यार को बरकरार रखिएगा और बने रहिए आप 100.7 FM। चलिए बिल्कुल, किसी दिन जब भगवान चाहेंगे तब जरूर मिलेंगे हम लोग, है ना? बिल्कुल आइए, ठीक है, मिलते हैं हम लोग। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपका। नमस्ते नमस्ते।

0: जी हाँ दोस्तों, 7:54 का समय और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि भैया ऐसे कार्यक्रम को यहीं पर वाइंड अप किया जाए। लेकिन लेकिन लेकिन हमारे साथ में एक आखिरी लिसनर जो हमसे बात करेंगे वो जुड़े हुए हैं और वो उनका पसंदीदा गाना लेकर के बैठे हैं, उनके पसंदीदा गानों को जानते हैं, उसको प्ले करते हैं और इजाज़त लेते हैं कि भैया ऐसे कार्यक्रम को यहीं पर थामा जाए। मैं उत्कर्ष आप सभी से इजाज़त लेना चाहता हूँ और अगली बार फिर से मिलेंगे इसी ऐसे ही खूबसूरत से कार्यक्रम के साथ। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए।
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, एमपी।
0: क्या बात है मोहम्मद हारून जी, आप अकबरपुर से बात कर रहे हैं, तो बताइए वहाँ पे मौसम कैसा है भाई अभी इस समय?
1: मौसम अच्छा है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, गर्मी की उमस है।
0: बारिश तो नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है और सभी इंतजार कर रहे हैं कि भैया जल्दी से बारिश हो तो थोड़ी सी राहत मिले।
1: बारिश बादल अब हो जाते हैं, चले जाते हैं, जाती है चली जाती है।
0: चलिए अरुण जी बताइए कौन सा आप गाना सुनना चाहते हैं और हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे?
1: बारिश का इंतजार कर रहे हैं, भोनी हो जाए लेकिन बारिश नहीं हो रही। और आपके घर?
0: यहाँ पे तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है और लखनऊ का तो आप मिजाज जानते हैं कि भैया बहुत ज्यादा गर्मी है, कंक्रीट की सड़कें हैं और जब आप बाहर निकलते हैं।
1: बहुत दिनों में आज बात हो रही है, कम से कम 4-5 महीने में।
0: हाँ चलिए हरुण जी, थोड़ा सा कम वक्त है हमारे पास में, तो जल्दी से अपना गाना बताइए, कौन सा आप गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाने तो अपन सुनते रहते हैं, बातचीत तो अपनी पहली बात होती नहीं, वो ही नहीं पाती।
0: चलिए बातचीत होती रहेगी, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, है ना?
1: गाने तो अपन होते चलते रहते हैं लेकिन बात तो अपन चल रहे तो बहुत अच्छी बात है। फिल्म का नाम है हम बेमिसाल, तुझसे क्या चोरी है,
0: तुझसे क्या चोरी है, क्या बात है। चलिए गाना आपका प्ले करते हैं। अरुण जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपसे बात करते रहेंगे, आपकी बात सुनते रहेंगे, थोड़ा सा आज कम समय है लेकिन आपसे बात जरूर करेंगे अरुण जी एक दिन, है ना, इत्मीनान से बैठ के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आज विश्व एक विश्वसनीय लोकतांत्रिक और सक्षम मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर का तलाश में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज उसी विश्वास का केंद्र बनकर उभरा है। गौतम बुद्ध नगर जेवर में दो बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट के शिलान्यास के दौरान श्री यादव ने कहा कि हमारी राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शी नीतियां, कुशल युवा शक्ति और तेजी से विकसित हो रहा बुनियादी ढांचा भारत को वैश्विक सप्लाई चेन का स्वाभाविक केंद्र बना रहे हैं। आज की यह परियोजना उसी परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की परिकल्पना को साकार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को उनके मूल्यों और आदर्शों को समाहित करने का प्रयास कर रही है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार भी उन्हीं आदर्शों पर अमल करते हुए ऐसी नीतियों को लागू कर रही है जिनका लाभ अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण करेगी। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में फायर सेफ्टी की सघन चेकिंग जारी है। इसी क्रम में अलीगढ़ नगर निगम ने पूरे शहर में 100 नए फायर हाइड्रेट पॉइंट्स लगाने का फैसला किया। जौनपुर के प्रगतिशील किसान सूर्यभान यादव को उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर सीमा सिंह राणा ने बताया कि सूर्यभान यादव ने एक हेक्टेयर भूमि में आम की 140 प्रजातियों का मॉडल बाग विकसित किया है। इस बाग में प्रतिवर्ष 200 क्विंटल आम का उत्पादन होता है, जिससे उन्हें करीब 4 लाख रुपए का वार्षिक लाभ भी मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी 3, 4 और 5 जुलाई को आयोजित होने वाले आम महोत्सव में श्री यादव को यह सम्मान दिया जाएगा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM

ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM रिंद।

0: कर समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक

0: मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
1: इस अवसर पर MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
3: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, MSME के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी MSME को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में MSME को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं

0: के लागू होने की समीक्षा की। गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृह मंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन ना करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम ना बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेक

0: पाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल दो व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने दो दो सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।

तो भाई वक्त हो गया 9:26 और कुछ सेकंड्स, और इस वक्त के साथ ही शामिल करते हैं ईमेल। और ईमेल में सबसे पहला जो मेल अब मैं शामिल करने वाली हूँ वो है सुल्तान रजा जी का, और लिखते हैं कि प्रीति मैम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? प्रीति मैम उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी होंगी। बिल्कुल, आप लोग के मेल पढ़कर जितनी भी तबीयत खराब हो यहाँ पे बिल्कुल चंगी हो जाती है। और आगे लिखते हैं कि क्योंकि जब आप अपना म्यूजिक बजाते हैं, अच्छा ये वाली, इससे पता चल जाता है कि आज हम आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। और आगे लिखते हैं, आज हमारे सुपरस्टार आरजी प्रीति मैम नाम है में है स्टूडियो में, आपकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। जी, आप जितना भी लिखते हैं वो हमारे लिए काफी है। और

लिखते हैं आगे कि इंद्रधनुष को आज नहीं सुन पाए किसी रीजन की वजह से, और जैसे ही रात को 9 बजे उन्होंने ट्यून किया एफएम रेनबो को, तो फिर इस आवाज को सुनकर, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनकर समझ गए कि आज स्टूडियो में कौन है। और ये मेल हमें किया है सुल्तान रजा ने, कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से। सुल्तान रजा, इकबाल रजा, जिशान रजा, अफजल रजा, मोनिश रजा, सादिक रजा और मम्मी पापा के साथ, और साथ में प्यारी सी जो है प्लेट भेजी है जिसमें नाश्ता है और बिस्किट है, नमकीन है और एक कड़क वाली चाय है, और चाय के लिए भी उन्होंने कुछ लिखा, चाय का नाम सुनते ही मुस्कुराने लगते हो, मेरी तरह तुम भी चाय के दीवाने लगते हो, क्यों ना इसको रजनीगंधा में शामिल कर लिया जाए। सुल्तान रजा, क्या ख्याल है आपका। महेंद्र जी का भी मेल आया है, लिखते हैं महेंद्र दीपेन गांव रूड़ और जिला नागौर राजस्थान से मेल कर रहे हैं, प्रोग्राम को सुन रहे हैं ऐप पर, जोधपुर में है और हमारे प्रोग्राम की बहुत तारीफ की है, शुक्रिया। और अच्छा आगे लिखते हैं कि आवाज़ अच्छी लग रही, अलग है, और मतलब हर राजेश की आवाज़ ऐसी होनी चाहिए भाई, हर किसी की अपनी आइडेंटिटी होती है और हर किसी की आवाज़ अलग होती है, वैरायटी तो होनी चाहिए, क्यों महेंद्र जी। और आगे लिखते हैं, नागौर से सूरत का सफ़र और आकाशवाणी का ये साथ है। आरजे प्रीति मैम, आपकी मीठी आवाज़ में कोई अलग ही बात है, जोधपुर की राहों में गूंज रही है आपके रेनबो शो की ये तान है। महेंद्र देपेन की तरफ से आपको दिल से ये छोटा सा पैगाम है, क्या बात है, बहुत खूब लिखा है महेंद्र जी, बहुत अच्छा लिखा है। नजीम जी का भी मेल आया, लिख रहे हैं प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, हम लोग मिलकर सुन रहे हैं। साबुद्दीन खैफ कैफ लिखा आगे, लेकिन ये कौन है ये नहीं बताया आपने। वारिस अली जी का भी मेल आ गया है, लिखते हैं कि प्रीति जी आदाब, बात पते की, भूखे को रोटी देते वक्त, बीमार को खून देते वक्त और इंसाफ करते वक्त मजहब मत पूछना, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, अगर आपके सॉन्ग्स प्लेइंग लिस्ट में बाबा सहगल का कोई सॉन्ग हो तो प्ले कर दें। जी बिल्कुल, अभी हम अपनी सॉन्ग लिस्ट को जो पोटली है ना हमारी उसमें से खंगालते हैं, अगर बाबा सहगल जी होंगे तो हम जरूर प्ले करेंगे वारिस जी। और ये हमें मेल किया संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। कमल पांडे जी का मेल आया है, लिखते मैम जी नमस्कार, मैं कमल शंकर पांडे मोहलिया कला चौराहा पोस्ट नसीरपुर जिला सीतापुर से मेल कर रहा हूँ, कार्यक्रम रेनबो कैफे के साथ जुड़ चुका हूँ, कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है, सॉन्ग सिलेक्शन पसंद आ रही है और मेल शामिल। अच्छा पहले ही आपने धन्यवाद लिख दिया, मतलब कि आपको पता है कि मेल जरूर शामिल होगी। और वकील अहमद जी का भी मेल आया, अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है पॉप टाइम, यानी कि आज है सैटरडे और आज का वक्त है रेनबो कैफे के लिए, और प्रोग्राम के गाने अच्छे लग रहे हैं, खेत में है गन्ने की सिंचाई कर रहे हैं, गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी रेनबो कैफे के साथ जुड़े हुए हैं। और अहमद मंसूरी कटका हथूरी, आए हाय क्या नाम है जगह का आपका, मजा आ जाता है पढ़ के। सीतापुर साहिबा अंसारी, साजे अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दीकी, अहमद नवाब और सभी के लिए इन्होंने जो है अस्सलाम वालेकुम भेजा है, हमने अपने आप से ऐड कर लिया है। और एक मेल और पढ़ लेते हैं फिर गाना सुना देते हैं। डॉक्टर सुमित कुमार का भाई बहुत ही लंबा चौड़ा मेल आया है, इसको हम पढ़ते हैं आराम से, फिर इसको हम समराइज करके आपको जरूर सुनाएंगे, क्योंकि इन्होंने बड़ी पते की बात लिखी है। और ये मेल हमें किया है हिमानी चौहान जसपुर उत्तराखंड से, कभी पढ़ ही लेते हैं, कभी कभी गर्मी ज़्यादा लगे तो कुदरत के नज़ारे से प्यास तो उसको भी गल लगती है जो दरिया के किनारे होता है। मैं हमेशा प्रोग्राम को सुनता हूँ और प्रोग्राम सुनकर हैप्पी हो जाता हूँ, गिफ्ट मिला है मुझे, ऐसा लगता है कि आपको अच्छा गिफ्ट मिला है। अच्छा मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, हम सब परिवार के साथ प्रोग्राम को सुन रहे हैं और शरीर को ठंडा करने के लिए। अच्छा आगे आपने एक अच्छी सी रेसिपी भी लिखी है किस तरीके से खुद को हाइड्रेट रखें, यानी कि कहना चाह रहे हैं कि फ्रूट्स आप खाएं, दही खाएं, मतलब अपने आप को स्पाइसी फूड से दूर रखें, है ना डॉक्टर सुमित जी, मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ ना। और बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाएं, तली भुनी और बाहर की जो बासी चीज़ें होती हैं ना एक टाइम पुरानी वाली, उनसे भी बचें, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए अपना ख्याल रखें। डॉक्टर सुमित ने सबकी चिंता करते हुए ये खूबसूरत सा मेल हमें भेजा है, तो आप लोग इसे समझिए और इस खूबसूरत से ट्रैक को एंजॉय करिए। आप सुन रहे हैं रेनबो कैफे ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो पर, और इस वक्त माइक के इस पार है आरजे प्रीति आपके साथ।

आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

हाँ जी दोस्तों, अभी तो आपने एंजॉय किए बैक टू बैक, भोजपुरी गाना भी मैंने प्ले कर दिया आपके लिए, पंजाबी तड़का भी लगा दिया, उसके साथ हरियाणवी गाने को भी मैंने प्ले कर दिया। यानी कि कहीं भी हम शिकवा शिकायत की कोई भी गुंजाइश नहीं रखते हैं, इसलिए मुझे लगता है कोई भी शिकायतों वाला मेल मुझे नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ खुशियों वाले मेल आते हैं, अच्छे अच्छे मेल आते हैं। जैसे कि मुझे मेल किया है आकाश यादव ने और ये लिखते हैं, हेलो मैम, माय नेम इज आकाश यादव एंड आई रियली लाइक द शो और रायबरेली से प्रोग्राम को एंजॉय I have come to Raibareli after my end sem exams. Okay, यानी कि semester exams आपके खत्म हो चुके हैं, तो आप अपने होम टाउन आए हुए हैं, प्रोग्राम को enjoy कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और आकाश के साथ ही राजवीर का भी मेल आया है। राजवीर जी लिखते हैं कि गांव खौरी अव्वल से चौधरी, अच्छा राजवीर सिंह और चौधरी अव्याना का कंचन फिल्म, अच्छा आपने जिस गाने की रिक्वेस्ट की है साजन फिल्म की, वो तो आई एम सो सॉरी, इस सेगमेंट में वो गाना नहीं जा सकता। रॉयल अमित यादव का भी मेल आया, आई एम श्रेया यदुवंशी और गंगागंज रोड भानमऊ विलेज नकटौआ बाराबंकी से मेल किया है और ये एक गुजारिश की है इन्होंने कि आप जल्दी जल्दी आया करो। जी बिल्कुल, आपकी जो गुजारिश है ना वो सर आंखों पर, कल फिर से आएंगे। अब आपने कहा है तो बिल्कुल अमित यादव जी, कल हम फिर से आने वाले हैं आपसे रूबरू होने के लिए मेल के थ्रू। और गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसे ही सॉन्ग प्ले किया करिए। जी ये सारे के सारे गाने आप ही लोगों के लिए तो होते हैं। और नजीम का भी मेल आया है, लिख रहे हैं डेली इंद्रलोक से प्रोग्राम को सुन रहा हूँ, प्रोग्राम इंजॉय कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में इनके हैं सैबुद्दीन कैसे कैफ कैफ, अपने मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि आप थोड़ा सा और डिटेल में लिखिए तब हमें समझ में आए। लीजिए भाई, हमारी प्यारी प्यारी अमन नवाब का भी मेल आ गया है, वही खूबसूरत अंदाज में, और लिखती हैं, हेलो डियर प्रीति दी, गुड इवनिंग, ये बताओ ये चश्मा कब तक लगा रहेगा, इस चश्मे को उतारो और इनको चश्मा की जगह अब इनको टोपी पहना दो। ये जो गुड इवनिंग में डबल ओ में ये जो चश्मे लगा के दोनों लोग आ जाते हैं ना रात के 9 बजे के बाद के वक्त में, तो अब इनका चश्मा उतारो, अब इन्हें टोपी पहनाओ और एक हाथ में इनके हाथ भी लगा दो, इन्हें फूल भी दे दो ना हाथ में। अमन नवाब तुम तो कुछ भी कर सकती हो, अब ये भी करके एक इवनिंग भेजना जरूर। और आगे लिख दी, हमारी बात मानी आपने और जल्दी आई, उसका दिल से शुक्रिया, आपका दिल से शुक्रिया।

सारे इमोजीज भेजने के लिए। आपकी आवाज जैसे फिजा में घुलती कोई सरगम है, आपको रेनबो कैफे पर सुनना हर उदास दिल का मरहम है, क्या बात है। आपको भी बुला लेंगे हम इधर ही रजनीगंधा में बैठाएंगे और आधे घंटे का प्रोग्राम तो जरूर करवा लेंगे अमन नवाब हम आपसे। और ये मेल हमें किया है संडीला से। इसके साथ ही मेल पढ़ते हैं। अगला सौरभ प्रजापति का मेल आया है अमेठी से। लिखते हैं कि कैसी हैं आप, आशा है आप अच्छी होंगी। बिल्कुल हम अच्छे हैं, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। कुछ अधूरे लाइनें हैं पढ़ दो। बिल्कुल अधूरी क्यों है भाई, आपने पूरी करी है। नई हवाओं को रहबत बिगाड़ देती है, अक्सर कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। बचा के रखना मोहब्बत के फेरों से खुद को, ये अच्छे अच्छों की हालत बिगाड़ देती है। बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है सौरभ प्रजापति जी आपकी भी हालत कुछ बिगड़ी हुई है, क्योंकि इतने सारे इमोजीज हैं और कहीं ना कहीं आपके दिल में बेइंतहा मोहब्बत जरूर है। दिलीप रामझाई का भी मेल आया, भोजपुरी सॉन्ग बजाइए, एक घंटा हो चुका है, कान तरस गईल बानी। भाई हम तो आपके दिल की आवाज को यहाँ पे बैठे बैठे सुन गए थे, इसलिए बैक टू बैक दो गाने लगा दिए थे और एक गाना जरूर हम प्ले करेंगे जाने से पहले, कहीं जाने से पहले नहीं यानी कि 10 बजे से पहले, और बजाएंगे तो हम तार तार हो जाएंगे। अब बताइए, दो गाने प्ले कर दिए, अब आप तार तार हो गए हैं कि हर तार हो गए हैं, बताइएगा जरूर। रेनबो कैफे सुन रहे हैं, भोजपुरी सॉन्ग, भोजपुरी सॉन्ग, धन्यवाद, शुक्रिया। अगर कोई बात तो अच्छी, ऐसा कैसे हो सकता है दिलीप राम जाही जी, आप लोगों की बात अच्छी ना लगे, बिल्कुल भी नहीं। और फैजल का भी मेल आया है, लिखते हैं सादर नमस्कार, मेरा आज का विचार, समय रहते की गई तैयारी ही भविष्य की समस्याओं का सबसे प्रभावी समाधान है। आगामी मानसून को देखते हुए जिला जल निकासी व्यवस्था की समय पर साफ सफाई एवं रख रखाव जनहित में अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, ये तो बड़ी ही अच्छी बात लिखी है आपने भाई, सुन लीजिए, ये हम सबके लिए है। और मॉनसून को ध्यान में रखते हुए लखनऊ के कई सारे शहर जगह पर निकासी अभी तक मतलब समुचित साफ सफाई नहीं हुई है, ये मुद्दा हम ज़रूर आगे बढ़ाएंगे आपका, और इतने ज़रूरी बात लिखने के लिए जी शुक्रिया। और मेरी बात संबंधित जिम्मेदारों तक पहुंच रही है, बिल्कुल हम ये मेल आपका आगे फॉरवर्ड अपने अधिकारियों को जरूर करेंगे, जिससे आपकी बात आगे तक जाए और कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाए। वेद प्रकाश का मेल आया, आई एम रिया सिंह, अच्छा नाम है वेद प्रकाश, और फिर आगे लिख दिए हैं, हेलो आई एम रिया सिंह फ्रॉम निगाशान लखीमपुर खीरी से, पॉप टाइम प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है माई डियर, दिस इज रेनबो कैफे, और बारिश वाला कोई गीत भजवा दीजिए भाई, बाहर बारिश होने तो फिर हम इधर झमाझम बारिश वाले गीत प्ले करेंगे। अब हम इधर बारिश वाले गीत प्ले कर दें और उधर तुम्हारे उधर भयंकर गर्मी हो रही है, तो बताओ कैसे अच्छा नहीं लगेगा, है ना। चलिए मेल के पढ़ने के सिलसिले को देते हैं थोड़ा सा विश्राम, क्योंकि एक गाना कर रहा है आपका बड़ी ही बेसब्री से इंतजार, बरेली में बैठा हुआ है और लखनऊ में प्ले होने वाला है। इस गाने को सुनिए, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेनबो कैफे। वक्त हुआ 9:50 और ये लीजिए 50 सेकंड्स, और आरजी प्रीति है आज आपके साथ, सुनते रहिए।

तो भाई वक्त हो गया 9:54 और कुछ सेकंड्स, और ये वक्त कहता है कि प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले जो बहुत सारी मेल हमारे सामने फ्लैश हो रही हैं उनको क्यों ना पढ़ लिया जाए, क्योंकि हम किसी भी शिकायत के साथ प्रोग्राम को वाइंड अप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। अरविंद कुमार दुबे का भी मेल आया है, लिखते हैं, नमस्कार, FM रेनबो धड़कन लखनऊ की है, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, मंगलवार और शनिवार को रेनबो कैफे में क्षेत्रीय वाली अच्छा प्राथमिकता दी जाए तो बेहतर होगा। देखिए दी गई बिल्कुल, और हमने गाने भी प्ले कर दिए हैं, अरविंद दुबे, गोविंद दुबे, प्रतिमा प्रतिष्ठा, तन्वी, दीपा, श्याम कुमारी, धर्मदेवा, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हमें ये मेल किया है। आंचल सेज का मेल आया है, प्रोग्राम एकदम जला हुआ चलता बस, और बस गर्मी से बड़ी किचकिच चल रही है। भाई ये किचकिच क्यों चल रही है? ये किचकिच तो बारिश के टाइम में होती है जब किचिर पिचिर होती है इधर उधर। आनंद तिवारी का भी मेल आया है, बातें चुप जाती हैं, बातें कभी लहजे मार जाते हैं, या जिंदगी है जनाब, यहाँ हम सपनों से हार जाते हैं। हरदोई से हमें ये मेल किया है। सोनू परवाना का मेल आया है, और शुभी वर्मा का भी मेल आया, हमारे हालचाल पूछें, जी हम बिल्कुल ठीक हैं, और ये आदर्श वर्मा, बिग डील ब्रदर, सभी की तरफ से आपको हाउ आर यू मैम, काफी अच्छी लगती है आवाज, जी शुक्रिया, और गाने की रिक्वेस्ट की है, जरूर कभी प्ले करेंगे। विजय सिंह का भी मेल आया है बहराइच से, शुभ रात्रि आपने भेजी है, शुभ रात्रि अभी हम नहीं बिल्कुल भी स्वीकार करेंगे, रात 12 बजे आपका स्वीकार होगा। शुभी वर्मा का मेल आया है, और देखिए आपने रिपीट कर दिया है, और MK राज का भी मेल आया है, गुड इवनिंग भेजा लखीमपुर खीरी से, प्रोग्राम को अच्छा प्रोग्राम आपको बेमिसाल लग रहा है, आवाज में जादू खुला, सुनते ही हो गए कई साल, पर सुनने का मन आज भी उतना ही होता है, भोजपुरी सॉन्ग बजते ही मन थिरक उठता है, तो लीजिए इसीलिए तो प्ले कर रहे हैं। आकाश यादव ने भी एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है, माफी चाहेंगे हम, रायबरेली से हमें ये मेल किया है। जावेद अख्तर ने भी मेल किया है, लिख रहे हैं, कार्यक्रम पॉप टाइम नहीं रेनबो कैफे है माय डियर, और कार्यक्रम के गाने को बहुत ही पसंद कर रहे हैं, कार्यक्रम की जान हुआ करता है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। रेशमी नगर मुबारकपुर आजमगढ़ से मेल किया है, बेगम रुखसार, शमा परवीन अंसारी, और ज्ञान प्रकाश का भी मेल आया है, मोनू सेठ, अजय कुमार पाटिल, सौरभ, आनंद तिवारी, जय, जितेंद्र, मुकेश कुमार। तो भाई माफी चाहेंगे अगर किसी का मेल मैं पूरा पढ़ नहीं पाई हूं, तो कल जरूर हम आपके मेल को पूरा शामिल करेंगे, लेकिन कहीं मत जाइए, बस सुनते रहिए, रात 12 बजे तक हमारे साथ जरूर रहिएगा, इस गाने को एंजॉय करिए। इस गाने के बाद न्यूज, न्यूज के उस पार रजनीगंधा कर रहा है आपका बेसब्री से इंतजार, बस सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, RJ प्रीति है आज आपके साथ।

नमस्कार, रात्रि के 10 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार परक कौशल से जोड़ने की मुहिम तेज हो गई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रोजेक्ट प्रवीण के अंतर्गत अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण STT के लिए लक्ष्य आवंटित कर दिए गए हैं। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि योगी सरकार का मुख्य ध्येय है कि प्रदेश का कोई भी युवा हुनर से वंचित ना रहे। प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर परिवहन विभाग 1 जुलाई से 31 जुलाई तक स्कूली बसों के फिटनेस संबंधी जांच के लिए अभियान चलाएगा। अभियान का लक्ष्य न केवल नियम लागू करना है बल्कि स्कूल परिवहन को एक सुरक्षित, जवाबदेह और पारदर्शी सेवा बनाना है। अभियान के तहत बसों की तकनीकी खराबी, फिटनेस सुरक्षा मानकों की जाँच की जाएगी, साथ ही चालकों का भी भौतिक सत्यापन, जाँच इत्यादि की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। सहारनपुर जनपद निवासी 7 वर्षीय अनुषी सिरोही ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए सहारनपुर और देश का नाम रोशन किया है। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में अनुषी ने अंडर 7 वर्ग की 800 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। अंडर 7 वर्ग की 800 मीटर स्पर्धा में अनुषी सिरोही ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ दिया। बेहतरीन गति और संतुलन के दम पर उन्होंने पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
0: कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी, कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर।

एक बार फिर नमस्कार दोस्तों। वक्त हुआ है रात के ठीक 10:05 और 42 सेकेंड्स और इस वक्त के साथ ही रात के इस खामोश पहर में, जब शहर की रफ्तार थम चुकी है और घड़ी की सुइयां 10 से 12 के बीच एक सुकून भरा सफर तय करने के लिए तैयार हो रही है, उस वक्त में आप सुन रहे होते हैं रजनीगंधा। मैं हूं आपके साथ आरजी प्रीति। दोस्तों, ये वही वक्त होता है जब पुराने गीत अपनी असली जगह ढूंढ लेते हैं। ये मैंने हमेशा कहा है, वो गीत जो किसी दौर की आवाज थे, जिनमें लफ्ज कम थे लेकिन एहसास ज्यादा हुआ करते थे, जहां मोहब्बत इशारों में कही जाती थी और दर्द भी बड़ी नफासत से पेश किया जाता था। तो इस रात हम उन्हीं पुराने नगमों को फिर से याद करने जा रहे हैं, जिनकी धुनों में तन्हाई का सुकून आज भी है। इश्क की मासूमियत भी तो देखिए कि हम आज भी इश्क के हर लम्हे को सुरों में तलाशते रहते हैं, है ना, गीतों में ढूंढते हैं। जब बेइंतहा खुश होते हैं तो वैसा गीत बजाते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो दुखी वाला गीत बजाते हैं। मतलब इश्क के जो अलग अलग मोड़ होते हैं किसी भी इंसान के जीवन में, हर उस पल को हम लोग गीतों में ढूंढते हैं, और वो हर पल, इश्क का हर पल, यकीन मानिए, हमारे पुराने गीतों में आज भी महफूज है, है ना। कभी किशोर कुमार की आवाज सुनते हैं, कभी मोहम्मद रफी की, और जब दिल टूटता है, बेइंतहा उदास होते हैं, तो कभी मुकेश के भी गाने सुनते हैं। ऐसा नहीं कि मुकेश जी के गीत दर्द भरे होते हैं, हर किसी की अपनी आवाज होती है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब

हमारा दिल दुखी होता है, मेरा, तो वो दर्द मुकेश जी के गीतों को सुनकर मरहम का काम करते हैं, है ना। तो भाई इश्क की मासूमियत भी तो देखिए, जिंदगी के हर अधूरे किस्से को हम लोग गीतों में तलाशते हैं। तो आइए इस रात को थोड़ा पीछे और ले चलते हैं, उस वक्त में जहां एहसास हुआ करते थे और हर गीत दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचा करते थे, कुछ इस गीत की तरह। सुनते रहिए रात 12 बजे तक, बने रहिएगा हमारे साथ।

जिंदगी में आया और उसके आने से आपके हर ख्वाब को जैसे पंख मिल गए हो, हर सुबह खूबसूरत लगने लगी हो और हर शाम का इंतजार होने लगा हो, और फिर एक दिन वही शख्स जाने कहाँ खो गया हो, पीछे रह गई हो उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी खुशबू और एक सवाल जो आज भी दिल से निकलता है कि अगर तुम साथ होते तो शायद जिंदगी कुछ और ही होती। दोस्तों, मोहब्बत हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होती। कभी कभी मोहब्बत उस एहसास का नाम होती है जो दूरियों के बाद भी कम नहीं होती। कोई लाख दूर चला जाए लेकिन उसकी यादें कभी पता बदल कर नहीं जाती। वो हर रात चांद की रोशनी में, हर ठंडी हवा में और हर धड़कन के बीच चुपचाप अपना नाम लिख जाती है। शायद इसलिए कुछ लोग कभी लौट कर नहीं आते, लेकिन उनका इंतजार कभी खत्म नहीं होता। दिल आज भी उसी मासूमियत से पूछता है, तुम जहां भी हो क्या कभी मेरी याद तुम्हें भी छूकर गुजरती है? क्या कभी किसी खामोश रात में तुम्हारा दिल भी मेरा नाम लेता है? तो अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जिसने आपके अरमानों को उड़ना सिखाया हो और फिर उन्हीं अरमानों को अपनी यादों के आसमान में अकेला छोड़ दिया हो, तो दोस्तों आज की ये रात, ये एहसास और ये पल सिर्फ आपके नाम है। आंखें बंद कीजिए, उस चेहरे को याद कीजिए जो आज भी आपकी मुस्कान की वजह है, और उस एहसास को अपने दिल के सबसे करीब महसूस कीजिए।

दोस्तों कहते हैं कि कुछ रातें सिर्फ रातें नहीं होती, वो दो दिलों के बीच की खामोश बातचीत बन जाती है जब शब्द कम पड़ जाते हैं और एहसास ज्यादा बोलने लगते हैं। ऐसे में लगता है जैसे दुनिया की सारी भागदौड़ कहीं पीछे छूट गई हो और बस ये पल, ये साथ और ये मुस्कुराहट ही सबसे खास हो। जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत शायद यही है कि कोई ऐसा हो जिसके साथ खामोशी भी अधूरी ना लगे, जिसके पास बैठकर वक्त का पता ही ना चले, जहां कोई दिखावा ना हो, कोई जल्दबाजी ना हो, बस अपनापन हो और दिल का सुकून हो। आज की यह हसीन रात भी कुछ ऐसा ही एहसास लेकर आई है। चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा है, हवाएं धीमे धीमे कोई धुन गुनगुना रही है और दिल कह रहा है कि कुछ लम्हों को बस महसूस किया जाए, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें यादों में नहीं, दिल की धड़कनों में संभाल कर रखा जाता है। तो अगर इस वक्त आपके साथ कोई अपना है तो मुस्कुरा दीजिए। कोई बड़ी वजह नहीं चाहिए इसके लिए, बस कभी कभी साथ होना ही सबसे बड़ी वजह होती है। और जब दिलों की दूरियां मिट जाती हैं तब हर रात सचमुच इस गीत की तरह होती है। सुनते रहिए रजनीगंधा, आरजे प्रीति है आज आपके साथ, रात 12 बजे तक रहिएगा जरूर हमारे साथ।

अभी आपने सुना मुकेश की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना। दोस्तों, वो प्रेम ही क्या जिसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आपको हर पल कोशिश करते रहना पड़े। कहते हैं प्रेम तो एफर्टलेस होना चाहिए, प्रेम में कोशिश नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, कभी साथी रूठ जाए तो उसे मनाने की कोशिश अक्सर हम करते रहते हैं, कभी साथी उदास हो तो उसे हंसाने की कोशिश, कभी अपनी बात या इच्छा मनवाने की कोशिश, कभी आपसे कोई गलती हो जाए तो सॉरी सॉरी कहकर बिगड़ी बात बनाने की कोशिश, और तो और कभी जो वो बेवजह ही चुप्पी ओढ़ ले, बात बात पर चढ़ने लगे तो ये जानने की कोशिश कि इतना सब ध्यान में रखते हुए भी, इतना ध्यान रखते रखते भी आखिर आपसे चूक कहां हो गई, तो ये कैसा प्रेम हुआ? हाँ, ये कैसा प्रेम हुआ जो आपके एफर्ट्स के वेंटिलेटर पर जिंदा है, और जिस दिन ये एफर्ट्स ना रहे प्रेम भी ना रहेगा। ये प्रेम नहीं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट भर है जिसमें आपको केवल इजाजत भर है किसी को प्रेम करते रहने की, वो भी इस शर्त पर कि कोशिशें आपकी तरफ से जारी रहनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जिस दिन आपकी तरफ से कोशिश खत्म, उस दिन प्रेम भी खत्म। तो अगर आपका भी रिश्ता इस तरीके की कोशिशों के साथ गुजर रहा है तो एक बार गौर जरूर करिएगा, एक बार कोशिश करिएगा कि सामने वाला भी आपके लिए कोशिश करे, तभी तो प्रेम जिंदा रहेगा। क्योंकि मैंने कहा ना कि जब तक आप कोशिश करते रहेंगे तब तक प्रेम जिंदा रहेगा, और जिस दिन आप थक जाएंगे उस दिन आपकी कोशिशें भी खत्म हो जाएंगी, और जिस दिन आपकी ये कोशिशें खत्म उस दिन वो प्यार भी खत्म। तो भाई, उस मोड़ पर आने से पहले खुद को टटोलिए, खुद को एक बार फिर से पढ़िए। हम होते क्या है, एक किताब ही तो है। तो भाई, इस किताब के पन्ने को हर पल हर दिन पलटने की कोशिश जरूर किया करिए। और दोस्तों, 10 से 12 का ये जो वक्त होता है ना, ये आपकी जिंदगी के उन्हीं अनपढ़े हुए, अनपलटे हुए, जिनको आपने कभी पलटा ही नहीं है, उन पन्नों को पढ़ने का वक्त देता है रजनीगंधा। और कई बार हम उन पन्नों को पढ़ भी लेते हैं यहां बैठे बैठे, बस आप उसे नजरअंदाज करते हैं। तो चलिए, वो हैं जरा खफा खफा, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, शागिर्द फिल्म से। अगला गाना ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो पर, सुनते रहिए।

कहते हैं नाराजगी के बाद ही नाराज होने का हक होता है, वही मनाने की चाहत भी होती है। और जिस रिश्ते में मनाने की जिद बची हो, समझ लीजिए वहां मोहब्बत अभी भी सांसें ले रही है। प्यार कभी हार पर, हर बात पर हां कह देने का नाम नहीं होता। प्यार तो वो है जहां दो लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, रूठते भी हैं, लेकिन एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ते और ये ख्याल भी कभी आने नहीं देते। कभी एक चुप हो जाता है तो कभी दूसरा मुस्कुराकर सारी शिकायतें मिटा देता है। कितना खूबसूरत होता है वो पल ना, जब लंबी खामोशी के बाद अचानक एक मुस्कान लौट आती है, जब आंखें बिना कुछ कहे सॉरी बोल देती हैं और आई मिस यू भी बोल जाती हैं। जब दिल ये समझ जाता है कि जीत किसी की नहीं हुई है, बस रिश्ता जीत गया। शायद मोहब्बत की सबसे प्यारी बात भी यही है, इसमें हारने वाला कोई नहीं होता। जो पहले झुक जाता है वही सबसे ज्यादा प्यार करता है, और जो गले लगाकर सारी शिकायतें भूल जाए वही रिश्ता सबसे खूबसूरत बन जाता है। सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

दोस्तों कहते हैं कि कुछ नज़रों की ताकत भी अजीब होती है। वो कुछ कहती नहीं लेकिन सब कुछ बदल जरूर देती है। इंसान वहीं का वहीं होता है लेकिन अंदर कुछ ऐसा टूटता बनता है जिसे समझाने के लिए लफ्ज कम पड़ जाते हैं। अच्छा, कभी आपने महसूस किया है कि एक ही पल में कोई अजनबी आपके अंदर अपनी जगह बना लेता है? ना कोई पहचान होती है ना कोई रिश्ता, फिर भी दिल उसे ऐसे देखने लगता है जैसे वो हमेशा से उसी का हिस्सा रहा हो। और अजीब बात तो ये है कि उस एहसास को रोकना भी मुमकिन नहीं होता। कई बार हम रोक भी सकते होते हैं, हम नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन ये कमबख्त दिल बार बार उसी को देखना चाहता है नजरों के जरिए। इस दिल के आगे हर कोई मशहूर हो जाता है, नजरें उससे हमारी नजर फेर लेते हैं, कई बार सोचते हैं उसकी तरफ ना देखें, और फिर चोरी से जब उसकी तरफ देखते हैं और उसकी नजरों से हमारी नजरें जब टकरा जाती हैं तो बड़ी ही शर्म आती है कि हाय उसने मुझे देख लिया उसको देखते हुए। लेकिन दिल को एक सुकून भी मिलता है कि चलो उसे पता तो चला कि हम उसको ही देख रहे हैं। और उस एक नजर के बाद हालात बदलते नहीं हैं, लेकिन दिल का रुख जरूर बदल जाता है। हर चीज उसी तरफ खींचने लगती है जहां वो चेहरा हो। भीड़ में भी तलाश उसी की रहती है और खामोशी में भी नाम उसी का गूंजता है। ये मोहब्बत की शुरुआत नहीं है तो और क्या है? ये वो मोड़ होता है जहां इंसान को पहली बार एहसास होता है कि दिल अब पूरी तरह उसका नहीं रहा, किसी और का हो चुका है। और यही एहसास धीरे धीरे हर सोच, हर मुस्कान और हर धड़कन पर अपना असर छोड़ देती है। सुनते हैं जितना भी कुछ कहा है, इस सब कुछ इस गाने में समेट कर लता मंगेशकर की आवाज में आपके लिए ये गीत। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। दोस्तों वक्त हो गया है 10:53 और कुछ सेकंड्स, और ये वक्त कह रहा है कि शायद रजनीगंधा में यही वाला भी गाना होगा। गाने के बाद न्यूज़ के उस पार फिर से रजनीगंधा आपके दिल के कुछ पन्नों को फिर से टटोलेगा और उन शब्दों को जरूर पढ़ेगा जिन शब्दों को आप दिन में पढ़ना ही नहीं चाहते और या फिर कहें सुनना ही नहीं चाहते। तो सुनिएगा जरूर, रात 12 बजे तक रहिएगा। आरजे प्रीति है आज आपके साथ, सुनते रहिए 100.7 FM।

0: रात की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ।

नमस्कार, रात्रि के 11 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी ने उनका हार्दिक स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा विकास प्राधिकरण के 7 मंजिला नए भवन का लोकार्पण किया। नोएडा विकास प्राधिकरण को करीब 50 वर्ष बाद अपना नया कार्यालय मिला है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की सरकारों द्वारा किए गए पाप के गड्ढे को भरने में भाजपा सरकार को समय लगा, लेकिन हमने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है और अब विकास की गति तेज हो गई है। फ्लैट बायर्स की समस्याओं को प्राथमिकता दी गई तथा उसका हल निकाला और करीब 3 लाख से ज्यादा फ्लैटों की रजिस्ट्री अब तक हो चुकी है। निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं गो आश्रय स्थलों की प्रभावी संचालन के संबंध में बस्ती के मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में गौ संरक्षण कार्यों की समीक्षा करते हुए नामित नोडल अधिकारियों को शासन के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सभी नामित नोडल अधिकारी अपने आवंटित गो आश्रय स्थलों का निरीक्षण करें तथा वहां चारा, स्वच्छ पेयजल, पशुओं का उपचार, साफ सफाई एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की सतत निगरानी करें। लखनऊ सैन्य स्टेशन में आयोजित बास्केटबॉल प्रतियोगिता का समापन उत्साह, रोमांच और उत्कृष्ट खेल भावना के वातावरण में हुआ। प्रतियोगिता में स्टेशन के विभिन्न सैन्य संस्थाओं के अधिकारियों एवं सैनिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा पूरे टूर्नामेंट के दौरान उच्च स्तरीय खेल कौशल, अनुशासन और टीम भावना का शानदार प्रदर्शन किया गया। प्रतियोगिता के दौरान खेले गए मुकाबले अत्यंत रोमांचक एवं प्रतिस्पर्धात्मक रहे। फाइनल मुकाबले में मुख्यालय मध्य उत्तर प्रदेश सब एरिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप अपने नाम की, जबकि कमांड ट्रूप्स यूनिट उप विजेता रही। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: राष्ट्रीय आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
0: 8700001-4242।
2: कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।